0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

उनेरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनीरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, इस एपिसोड में हम संत कबीर जी के दोहों की चर्चा करेंगे। संत कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। संत कबीर जी कहते हैं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। संत कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। संत कबीर जी कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। अर्थात जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। संत कबीर जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। अर्थात लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। संत कबीर जी कहते हैं, पांचे दिन पांचे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात सब कबीर जी कहते हैं, बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया, अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार का मैपन था, तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो मैपन का अहंकार नहीं है। जब से मैंने सद्गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं,

0: पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी अपने दोहों में कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली से बदबू आती है। संत कबीर जी कहते हैं, प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। अर्थात जिसको ईश्वर प्रेम पाना है उसे अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा तो त्याग नहीं सकता लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोई पी रहे जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सोका पीर में पीर। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं, जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। संत कबीर जी कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। अर्थात शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीतलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। संत कबीर जी कहते हैं, कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होत न चार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान है। संत कबीर जी कहते हैं, रात गवाई सोये के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, रात को सोते हुए गवा दिया और दिन खाते खाते गवा दिया, आपका जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियों में बदला जा रहा है। जो जीवन प्रभु प्रेम के बिना हो वो जीवन निरर्थक है, कौड़ियों के बराबर है। संत कबीर जी कहते हैं, कागा काको धन हरे कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जगह अपना कर ले। अर्थात कौवा किसी का धन नहीं चुराता लेकिन फिर भी कौवे की आवाज लोगों को पसंद नहीं आती, वही कोयल किसी को धन नहीं देती लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का, कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। संत कबीर जी

0: देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर

गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात माया धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। संत कबीर जी कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। अर्थात मांगना तो मृत्यु के समान है, कभी किसी से भीख मत मांगो। मांगने से मरना भला, यही सदगुरु की शिक्षा है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसे करने कर चलो, हम हंसे जग रोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब हम पैदा हुए तो उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। अर्थात हंसते हंसते इस दुनिया से विदा हो जाए और ऐसा कर्म करे जो दुनिया हमें हमेशा याद रखे। संत कबीर जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ न कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ न कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। संत कबीर जी कहते हैं, दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थात इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर नहीं जाती, जिसका ना कोई आदि है न अंत। संत कबीर जी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ना ही ज्यादा चुप रहना भी अच्छा है। जैसे ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। संत कबीर जी कहते हैं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। हिये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। अर्थात जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है, वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है। इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोल कर ही मुख से बाहर आने दे। संत कबीर जी कहते हैं, संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तउ शीतलता न तजंत। अर्थात सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों न घिरे हो। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ते। श्रोतियों, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश रहो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन जोहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जिसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। संत कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए, वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानी हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थात कबीर जी कहते हैं, समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका भावार्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। संत कबीर जी कहते हैं, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। अर्थात जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। संत

कबीर जी कहते हैं, कबीर सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखिया कोई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए, सर पर धन की गठड़ी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा है। संत कबीर जी कहते हैं, यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, डबका लागा फुटिगा कछु न आया हाथ। अर्थात यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता रहता है, जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया माटे की घड़े की तरह और कुछ भी हाथ नहीं आया। संत कबीर जी कहते हैं, करता था क्यों रहया जब करी क्यों पचिताए, बोए पेड़ बबूल का अंब कहाँ ते खाए। अर्थात यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहाँ से मिलेगा। अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। संत कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की परतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं, यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। श्रोतेओ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टेकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टेकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती है। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत से हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है, क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? लोगों
1: का हैज बीन वंडरफुल बिकॉज जहां जहां भी आप, जितने भी लोगों से मिलते, तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि परिवार वो ही होता है जहां हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहने, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन

0: पीपल आर नॉट एबल टू टेक,
1: और वो एकदम से क्या होता है सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन सीप इन करता है ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है।
0: तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
1: लंबा, हाँ
0: लंबा प्रोसेस है। तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर, इन सभी परिस्थितियों में, अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है?
1: मैं
0: नहीं, मैं तो कॉमन है। क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में जो कॉमन है हर परिस्थिति में है? वो
1: चेंज,
0: चेंज। See, that's all. That's all. Parivartan. Parivartan. And like you said, we are not ready for change. Kyunki hamara
1: ek comfort zone
0: hai. Har paristhiti, ek situation, ek problem nahi, lekin ek change hai. You know, now the minute I just look at it like that, change chahe change in relationship, change chahe, for me it could be ki you have changed as a person. Main aapko jo janti thi itne itne saal, you know, many people will say ab to aap waise rahe hain, to change. Ya aap mere sath itne saal the, aaj suddenly aap mere sath nahi hain, change. Mera ek jeevan jeene ki ek shaili thi, ek lifestyle tha, suddenly mujhe wo crash ho gaya, change. Suddenly mujhe ek jagah se dusre jagah jana pada, change. So every step जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज, एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी आर समहाउ, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा था,
1: हम एडजस्ट
0: कर चुके थे, हम एडजस्ट कर चुके थे और हमें उसके साथ जीने की एक आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, लेट्स लुक एट योर सेल्फ, यूर स्टैंडिंग दैट साइड.
1: लेकिन चेंज के लिए एक और चीज, जो अगर आप चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड, यू नो, लाइक इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड.
0: चेंज इज चेंज, हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट.
1: या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: जो यहां से चेंज आया, सी चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना, चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी पोजिशन, चेंज बाहर से आ रहा है. गुड और बैड किस पे डिपेंड करता?
1: मुझ पे.
0: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट वन मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग माई कंट्रोल?
1: नहीं.
0: वॉट इज इन माई कंट्रोल? चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं,
1: उसको हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है.
0: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, कहना आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने, जब तक बने तब तक वी आर स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल? Not in your control. What is in my control in every case? Kya control mein hai aur kya control mein nahi hai?
1: Even my thought process, see, I would have said,
0: yes.
1: Lekin wo bhi to control mein nahi hota.
0: हाँ.
1: क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा, आई नो समबडी जिसको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा. उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था. वो डिप्रेशन सीपिन ऐसे करता है.
0: एग्जैक्टली वही हुआ ना, ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया. लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ?

0: चेंज कम्स फ्रॉम यू
1: रिएक्शन। अच्छा एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था आपके लोगों के लिए, तो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना चाहेंगे।
0: चेंज व्हेन विल इट बी फॉर गुड, जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो, कि इस क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा। अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ। नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, आई से ऐसे कैसे हो सकता कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी, मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं। लेकिन जहां ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है, गो एनीवेयर इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड, लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा,
1: कोई नहीं कर पा रहा है।
0: इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा, तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम न लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है। वी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है। लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माय लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस?
1: पेन एंड फियर आल्सो, कंटिन्यूस डर। सुधा शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं न कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है। आगे हम जरूर अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है। सुधा शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: बिल्कुल, आज जहां शुरुआत हमने की थी, सचिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर करें। आज ही से, कल का भी क्यों इंतजार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहां ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले। गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड जो है उसमें हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पांस क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे। लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं। अगर आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09993445, 09993446, 09873666555, 09997445। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है। इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: की जान अब की शान, अब निवासियों की है पहचान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस विषय को लेकर बात करते हैं, जहां पर हमारी यूथ को खास हमने टारगेट किया है कि वो अपने जीवन में, जैसे कि सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन शुरू हो जाता है, तो उनका करियर के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। कई बच्चे जो हैं टेंथ के बाद या फिर ट्वेल्थ के बाद सोचना शुरू करते हैं और कई लोग पहले से सोचना शुरू कर देते हैं। ये हर एक की अपनी पालना और माता पिता का जो संस्कार है उस अनुसार वो चीजें होती हैं, या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उस अनुसार फिर आप अपने बारे में उस तरह का सोच निर्माण करते हैं। तो आइए, आपके सोच में एक नया परिवर्तन लाने के लिए, एक नई सोच देने के लिए, अपने करियर को अच्छी बनाने के लिए आपको आज विशेष बातचीत करने वाले हैं हम लोग। आज के हमारे खास मेहमान राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं, जो बहुत ही अच्छे भारत के कवि हैं और साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष अहम भूमिका निभाया है। एज ए एजुकेशनिस्ट ये अपना प्रोफेशन संभालते हुए पूरी तरह से उसमें अपने जीवन भर उन्होंने सेवा दी है शिक्षा के क्षेत्र में, और वहां से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब भीलवाड़ा में अपना घर पर ही रह रहे हैं और साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी से जुड़कर आध्यात्मिक अनुभूतियों का जो है गहराई से चिंतन मनन कर उसकी अनुभूति करते हैं और दूसरों को अपनी अनुभूति का जो आनंद है देते रहते हैं। काव्य के माध्यम से, अनुभूति के शब्दों के माध्यम से हमेशा सभी लोगों को जो है खुशी बांटते हैं आध्यात्मिक जीवन का। तो आइए आज हम लोग उनके जीवन की यात्रा में एजुकेशन ये जो क्षेत्र है उसमें उनका कैसे आना हुआ, कैसे जाना हुआ, उसके बारे में उनसे जानेंगे और साथ ही साथ उनके बचपन की कुछ बातें और कुछ और जीवन के अनुभव भी सुनने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से सम्माननीय आदरणीय राजेंद्र गोपाल व्यास सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में।
5: धन्यवाद सर, मैं धन्य हुआ आपने मुझे याद किया।
4: जी जी जी जी, राजेंद्र गोपाल व्यास सर बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी बचपन की कुछ बातें हमारे साथ साझा कीजिए कि आपका बचपन कहाँ बीता और किस तरह से आपकी एजुकेशन हुई। जी
5: बहुत अच्छा, मैं प्रभु को स्मरित करते हुए
4: जी
5: मेरे जीवन के बारे में यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि मेरा जन्म 31 जुलाई 1951 को, 51 में भीलवाड़ा में मेरा जन्म हुआ।
4: अच्छा,
5: एक पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था आयुर्वेद का, उसमें मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ बताती है। और जन्म के तुरंत बाद ही यहाँ एक महात्मा गांधी अस्पताल बना था भीलवाड़ा में, नया जो अभी वर्तमान में है। उसमें जहाँ से, जिस हॉस्पिटल से मेरा जन्म हुआ, वहां से सारे माताओं को और नवजात शिशुओं को उसमें शिफ्ट किया, उस नए हॉस्पिटल में। मेरी माँ बताती है उन्हें सफेद बॉर्डर की साड़ी कर से स्वतंत्र भारत में ये एक नया हॉस्पिटल बना, तो मैं एमजी हॉस्पिटल में थोड़े दिनों के लिए इधर शिफ्ट किया गया। और मेरा मूल गांव है हमीरगढ़, यहाँ से 22 किलोमीटर भीलवाड़ा से।
4: अच्छा।
5: जहाँ मेरा जन्मस्थली है, जहाँ मेरा बचपन बीता है। मेरे पिता श्री जमनालाल जी व्यास और मेरी माँ का नाम कमला देवी है। मेरी परवरिश दो तीन माताओं से हुई, आपको सुन के आश्चर्य होगा। मेरी एक मौसी है जो बचपन में 13 साल में ही बाल विधवा हो गई, 13 साल में।
4: अच्छा अच्छा अच्छा
5: वो मेरे उसी गांव में उनका भी विवाह हुआ।

0: वो मेरी मेरी माँ से बड़ी थी, उसका नाम था दुर्गा देवी। मेरे मौसा जी का एक तरह से एक मर्डर हुआ, यूं कह दीजिएगा, कुएं में उनकी लाश मिली और 13 साल की उम्र में पता नहीं उनके देवर और ससुर से मेरी मौसी का नहीं संबंध बेटा, तो उस दिन सारी प्रॉपर्टी छोड़ के उसी गांव में वो मेरी माँ के घर आ गई। रमेश जी आप आश्चर्य करेंगे, 75 वर्ष उस मेरे घर में ही उसने मेरी पालना करी। वो दोबारा अपने ससुराल गई नहीं। बीच बीच में उनके देवर बहुत बार मिलने आते थे, कहते थे भाभी आप अपना घर ज्वाइन करो, आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं, वो वहां से उसके जो कुछ गहने थे वो लेके आ गई। जीवन भर उसने मेरे पिताश्री और मेरी माँ के पास, यूं समझिए कि उसने हमारे घर का अन्न नहीं खाया, उसके पास जो गोल्ड था वो लेके आ गई, बाकी सारी वसीयत। तो एक जीजी हम उसको घर में कहते थे, उसने मेरा निर्माण किया, उसने मेरा निर्माण किया। और उसके देवर को वहाँ बापू नाम से संबोधित करते थे, वो बड़े रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी से रिटायर हुए और इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे, मेयो कॉलेज में, और बंदूक रखना, बाग बगीचे संपन्न, इतना ईगो था। तो मेरी मौसी ने कहा कि मैं एक नया बापू पैदा कर दिखाऊंगी तुम्हें। और आज जिससे आप बात कर रहे हैं उसको घर में, मेरे घर में मुझे बापू नाम से संबोधित किया जाता है। और घर परिवार हमीरगढ़ ये कहते हैं कि मैं उस बापू से तो 1000 गुना ऊंचाई पे अपनी जीवन शैली को जी रहा हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा इंस्पिरेशन कि मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश करी, मेरे बड़े भाई साहब मनोहर जी व्यास और नर्मदा देवी, ये मेरे भैया भाभी थे जिनको एक तरह से मेरे पिताश्री ने मुझे गोद रख दिया। यानी मेरी पढ़ाई की सारी परवरिश मेरे भैया भाभी ने करी। मेरे पिता संपन्न होते भी उन्होंने दूरदर्शिता रखी कि अगर मैं मेरी पालना भैया भाभी से होगी तो जीवन भर मैं इनसे बहुत अच्छा रहूंगा। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई का जो सिस्टम मेरे पिताश्री ने दिया, उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोला, वन मैन आर्मी कह सकते, 8वीं क्लास तक 300 बच्चों को अकेले मेरे फादर पढ़ाते थे। सर आप आश्चर्य करें,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: 8वीं तक। और वहां का बच्चा गवर्नमेंट का एग्जाम देके और गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं से 6वीं से 7वीं में फिट हो जाता था। तो मेरे पिताश्री बहुत बड़े, वो पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनका ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल मेरे घर ही खोल लिया। ये मेरे हमीरगढ़ की एक छोटी सी प्रारंभिक, इसलिए 1967 तक 1वीं से 10वीं क्लास तक मेरी परवरिश हमीरगढ़ के एक माध्यमिक विद्यालय में हुई। सर वहाँ मेरा बचपन स्काउट, म्यूजिक, फुटबॉल, गेम्स, पढ़ाई में थोड़ा सा अगर आप मुझे पूछे तो मेरी रुचि कम थी, इसलिए मैं 2nd डिवीजन ही पास होता था। मैं कभी MA तक फर्स्ट नहीं आया, लेकिन या मैं सप्लीमेंट कर दूं मैं भूल जाऊंगा। उसके बाद मुझे पीड़ा थी कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो जब मैं प्रताप नगर हायर सेकेंडरी स्कूल में आया तो मैंने कहा मैं पढ़ने में फर्स्ट नहीं आया पर मैं पढ़ाने में फर्स्ट आना चाहता हूँ, गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। तो आपको आश्चर्य होगा 1980 में यहाँ एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक शिक्षण प्रतियोगिता होती थी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें मैंने सर ज्योग्राफी में गोल्ड मेडल लिया। यानी मैं पढ़ने में फर्स्ट नहीं आ सका तो उसकी क्षतिपूर्ति मैंने अपने पुरुषार्थ से, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीष से, मैं पढ़ाने में सर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ज्योग्राफी में मैंने गोल्ड मेडल लिया है। वो 3री प्रतियोगिता थी राजस्थान की, अभी भी कंटिन्यू 8 साल होती। तो ये एक वैक्यूम को मैंने इस तरह से पूरा किया। ये तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा का दौर रहा। इस आगे की यात्रा पर आपका जो प्रश्न है मैं स्लोली स्लोली आगे बढ़ूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं कि आपने स्कूली जीवन, तो आपने बताया कि किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई, तो 10वीं या फिर सेकेंडरी उस समय कैसा था, 10th था कि 12th डायरेक्ट हो जाता था या कैसे था, वो थोड़ा सा बताइए। और फिर कॉलेज
0: क्या होगा? जी आ जाऊंगा इसी क्रम में, दो भागों में बात कर लेता हूँ मैं। स्कूल एजुकेशन को पूरा करके फिर कॉलेज एजुकेशन पे जंप करूंगा। 1967 में मैंने हमीरगढ़ से 10th पास कर लिया। उसके बाद भीलवाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल होता था। तो मैं 68 में सर यहाँ भीलवाड़ा आ गया 11th में। और यहाँ क्या होता था कि मेरा मन था कि मैं वैद्य बनना चाहता हूँ, पता नहीं कि उस समय आयुर्वेदा

0: जी और भीष्माचार्य जो उदयपुर में मदन मानवीय कॉलेज होता था उसमें आर्ट्स के बच्चे भी एक टेस्ट देकर के और आयुर्वेद में जा सकते थे, उनके लिए बायोलॉजी का होना जरूरी नहीं होता था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: फिर भी मैंने इस स्कूल में आर्ट्स में एडमिशन लेने के बाद मैंने बायोलॉजी के एक पीडी गुप्ता मेरे लेक्चरर हुआ करते थे, उनके पास मैंने कहा कि मैं तो आयुर्वेद में जाऊंगा, मैंने बायोलॉजी नहीं ली पर मैं तो डिसेक्शन सीखना चाहता हूँ, आपके पास मेंढकों को प्रयोगात्मक तौर पे सर्जरी सीखना चाहता हूँ। तो मेरा प्यार इतना था कि उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी।
1: अच्छा।
0: कि जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो चलो तुम फ्रॉक को इस तरह से। तो सर मैंने पहली बार एक मोम की प्लेट में चार आलपिने लगा के और क्लोरोफॉर्म देके एक मेंढक को मूर्छित किया।
1: क्या बात है।
0: फिर तो हाथ कांपने लगे और गलती कांपने से उस मेंढक की एक वेन कट गई।
1: ओहो।
0: और सर मैं मूर्छित नहीं हुआ, यूं समझिएगा मैं ब्राह्मण संस्कृति का संस्कारों का, मैं वो हिंसा देख नहीं सका और मुझे घृणा हो गई, मैं तो भूल के भी वेद भी नहीं बनूंगा। उस दिन के बाद मेरा डाइवर्जन आश्रम ही रहा। मैंने हायर सेकेंडरी प्रताप नगर में करी, वहाँ एक ऐसे टीचर थे सर जो मुझे हिंदी ढंग से नहीं पढ़ाते थे, पता नहीं मेरा मन क्यों होता था कि क्यों नहीं मेहनत करते। तो मैंने 68 में संकल्प किया कि मैं इसी स्कूल में किसी दिन हिंदी का टीचर बन के आऊंगा और भगवान करे तो मैं बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाई जाती। ये संकल्प मेरा पूरा हुआ सर। मेरी कॉलेज एजुकेशन के बाद एमए बीएड करने के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में एक गांव आमली में पोस्टेड हुआ और एक प्रिंसिपल थे शिव शंकर जी श्रोत्री। उस जमाने में इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल को बड़े पावर होते थे सर ट्रांसफर को।
1: बिल्कुल।
0: एक रेलवे क्रॉसिंग पार करते मुझे शिव शंकर जी श्रोत्री मिले, तब मैं म्यूजिक में मैंने प्राइवेट में बड़ी हिंदी प्रभाकर और म्यूजिक प्रभाकर और तबले में ये काम कर लिया। तो वो जानते थे कि मैं म्यूजिक का टीचर भी बन सकता हूँ। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पे मुझे पूछा क्यों रे तू कहाँ पोस्टेड है। मैंने कहा मैं तो गांवड़े में हूँ, 8 महीने हो गए। बोले तुझे मैं बड़े स्कूल में ले आऊं तो तू म्यूजिक में प्रार्थना वगैरह ये कर लेगा। मैंने कहा बिल्कुल कर लूंगा।
1: तो ये और उन्होंने सर सीखा, आपने कैसे सीखा
0: ये। जब मैं कॉलेज में क्या हुआ सर फर्स्ट ईयर में जब आया तो वहाँ एक हमारे यूथ फेस्टिवल में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन राजस्थान का लाइट म्यूजिक का हुआ प्रतियोगिता।
1: अच्छा,
0: सारे
1: अच्छा।
0: राजस्थान के सारे महाविद्यालयों के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए। मैं गांव से आया था लेकिन मैंने सुगम संगीत में मेरे गुरु थे अमीरगढ़ में बालचंद जी शर्मा, उन्होंने मुझे बहुत म्यूजिक, तो मैंने स्कूल लेवल पे भी स्टेट में म्यूजिक में सेकंड आया था मैं स्टेट।
1: अच्छा।
0: अगर मैं फर्स्ट आता तो जयपुर आकाशवाणी पर मेरा ऑडिशन होता, लेकिन मैं सेकंड आया तो मेरा चयन नहीं हुआ। तो म्यूजिक फिर मैंने वहाँ फर्स्ट ईयर में जब मैंने लाइट म्यूजिक में उस कंपटीशन में टॉप किया फर्स्ट, तो वहाँ जो जज आए थे वो उनका नाम था लक्ष्मण दास वैष्णव, वे बिरजू महाराज के शिष्य थे। और यहाँ एक संगीत कला केंद्र एस्टेब्लिश हो गया था कॉलेज भीलवाड़ा में प्राइवेट।
1: अच्छा,
0: वहाँ उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो तुम म्यूजिक सीखो। बस मैंने दूसरे दिन उस पुरस्कार के बाद मैंने फर्स्ट ईयर में ही ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया सर, और यहीं से मैंने एक तरह से बी म्यूज किया है वोकल में। मैं 7-8 साल बहुत कॉलेज के जमाने में ही मैं रात को रियाज करता था और एमए किया, और इधर मैंने म्यूजिक के डिप्लोमा भी लिए। बाद में म्यूजिक में मेरा पोस्टिंग हो गया पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये मेरी म्यूजिक की यात्रा भी रही।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो म्यूजिक यात्रा के बाद फिर जैसे कि आपका वहां सिलेक्शन हुआ तो संगीत आप सिखाने लगे, तो फिर एजुकेशन में बच्चों को जो पढ़ाने का वो जो सपना था आपका वो कैसे पूरा हुआ उसके बारे में?
0: वो ऐसा हुआ सर कि ये जो स्कूल जहाँ मैं ट्रांसफर होके आया हूँ ना अगस्त में 26 अगस्त 75 को, तो ये स्कूल सर 9th से शुरू होता था। हाँ, या 9th 10th 11th और 12th, चार मतलब क्लासेस होती थी। तो मैं तो बीएड करके निकला और पहले तो मेरी पोस्टिंग फर्स्ट 8वीं तक के स्कूल में हुई और सीधा मुझे बड़े स्कूल में इन्होंने, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया सर। और मुझे पढ़ाने के लिए इन्होंने प्रार्थना के अलावा सीधी 11th में हिंदी पढ़ाने के लिए दे दी, जबकि लेक्चरर वहां थे। लेकिन मेरा टीचिंग इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा नहीं सीधा 11वीं पढ़ाओगे तुम, और आप आश्चर्य करेंगे मैंने 14 वर्ष तक पीजी मैंने पॉलिटिकल साइंस में था मैं सर, लेकिन मैंने हिंदी पढ़ाई। और आप अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ, 100% 14 साल मैंने और मेरिट में और मतलब डिस्टिंक्शन मार्क

0: वाले बच्चे हिंदी में तैयार किए, मैं ऐसी हिंदी पढ़ाता था वहाँ, ऐसी हिंदी।
1: क्या बात, क्या बात।
0: और वही 14 साल के बाद में मेरा शिक्षण, वहाँ एक प्रोजेक्ट आया सर, मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा, मानव संसाधन मंत्रालय का संस्कृति विभाग, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था सर, ये शायद ये है 77-78 की बात है
1: जी, जी, जी।
0: तो यहाँ एक उदयपुर में सीसीआरटी में हमारा एक सिलेक्शन हुआ जिले की तरफ से, या फर्स्ट ग्रेड के लोग ही इसमें भाग ले सकते थे, पर मेरे प्रिंसिपल ने नियमों को तोड़ के मुझे उस शिविर में भेजा। 29 दिन के शिविर में मैंने विद्यालयों में भारतीय संस्कृति प्रसार परियोजना का प्रशिक्षण लिया था, और उसमें मैं 44 लोगों में फर्स्ट आया, 44 में।
1: कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया।
0: और वहां मुझे राजस्थान की तरफ से किट मिला सर, लाखों रुपए का। उस समय दिल्ली गया मैं सीसीआरटी में, और 12 वर्ष की मैंने ये जो प्रोजेक्ट किया उससे मुझे सीधा नेशनल अवार्ड मिला, शायद पहले भी कभी कहीं जिक्र हुआ हो। 3 अप्रैल 1989 को राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुझे, और ये वो सम्मान है रमेश जी जो आवेदन नहीं किया जाता। ये पहला वर्ल्ड का पहला अवार्ड है जहाँ सरकार रिक्वेस्ट करती कि आप इसको स्वीकार करो, और मैंने किसी कारण मना किया, मुझे नहीं आना। तो ये एक बच्चों का मेरा टीचिंग, और आज भी मैं विद्यालय में उस भारतीय संस्कृति के प्रसार की, और यही सोच के मेरे पिताश्री ने कहा कि मेरे सारे ही घर के लोग एजुकेशन में हैं, इसलिए मैंने अपने बेटे को हायर एजुकेशन के बाद बाहर नहीं भेजा। 21 साल पहले इसकी मम्मी ने, हमारी युगल ने एक स्कूल स्थापित किया 21 वर्ष से, उसका नाम इंडियन एकेडमी है। इंग्लिश मीडियम का होते हुए भारतीय संस्कृति के मूल्यों के आधार पे वो बच्चा स्कूल को संभाल रहा है, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे हिंदू भारतीय होने का और दूसरा शिक्षक होने का बहुत बड़ा गर्व। एक अध्यापक होना, और उसके बाद में म्यूजिक के बाद पोइट्री में आ गया, तो जो नीरज जी कहते हैं कि कवि होना भी सौभाग्य है, तो मैं फक्र से कह सकता हूं कि मैं कवि बना। और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद 21 वर्ष में तो सर मैं कवि की भूमिका को भी समाप्त करके एक ऋषि की श्रेणी में अपने आप को महसूस करता हूं कि जहां काव्य के जरिए, मौन के जरिए, मुरलियों के जरिए, हिंदी भारतीय मंचों पर मैं 35 वर्ष रहा सर रमेश जी का, बहुत एक सम्मानित कवि के रूप में। बाद में जब ज्ञान में आया तो मुझे बाबा के ज्ञान की मूल्य से ये लगा कि नहीं, संगीत और कविता ही जीवन की डेस्टिनी नहीं है, पवित्रता जीवन की डेस्टिनी है, इसलिए मेरा डाइवर्जन हुआ, और मैं एक अच्छे राजयोगी के रूप में अपने आप को रेखांकित कर सकता हूँ। लोग मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से, मेरे ग्लो से ये महसूस करते हैं कि व्यास जी कुछ लाखों में अलग तो दिखते ही हैं, हालांकि हूँ मैं इतना सामान्य।
1: राजेंद्र गोपाल व्यास जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर आपकी यात्रा के बारे में सुनाया, मैं बहुत खुशी हुई। एक तो आप संगीतज्ञ हो गए, फिर उसके बाद आप शिक्षक बने, और फिर उसके बाद आप एक कवि बने, तो ये त्रिवेणी जो आपने करियर एक साथ अपने अंदर समा के रखा, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आपको सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक जो है लगन, पढ़ाई और मेहनत, ये सारी चीजें अगर आप जोड़ लेते अपने अंदर, और एक अच्छे इंसान बनके जो भी चीजें आपके सामने आती है उसको अगर वेलकम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने करियर को सजाते होंगे, संवारते भी होंगे। तो मैं चाहूंगा कि जब करियर की, क्या उस समय जब आप एजुकेशन में एज ए म्यूजिक टीचर आप जब काम कर रहे थे, तो उस समय क्या आप सोचते थे कि कुछ और करना है, या उसके पहले भी आप क्या बनना चाहते? एक तो आपने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, उसको
0: बहुत अच्छा शिक्षक। हाँ
1: जी जी,
0: मैं अच्छा शिक्षक बनना चाहता था, वहाँ मैं पढ़ाता भी था बहुत मन से, 8-8 पीरियड पढ़ाता था सर मैं, 8-8 पीरियड, और सेकंड शिफ्ट की प्रेयर करने के बाद मैं घर आता था। मेरे दोनों हाथ, आप समझिए जहाँ घड़ी बांधते हैं वहां तक मेरे हाथ चौक से भर जाते थे। उस समय मेरा विवाह हुआ ही था, तो मैं सूट पहन के भी कभी कभी बच्चों के क्लास में जाता था, तो मेरे सूट पर पूरी सफेद चौक जो है वो रेखांकित हो जाती थी। मैं ये पसंद, वो नहीं परवाह करता कि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे क्या इस सफेदी से मेरा, लेकिन ये। और एक इसमें और निवेदन कर दूं कि मेरा इस ससुराल में जहाँ मेरा विवाह सर, वो बहुत बड़े लीडिंग एडवोकेट है मेरे ससुर साहब, फिर उनके बेटे, उस समय आज की डेट में उस परिवार में 17 एडवोकेट है सर, 17। तो जब मेरा विवाह

जानी हो जाए कोई बात रूहानी हो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारी बातचीत हो रही है राजेंद्र गोपाल व्यास जी से। और एक मल्टी टैलेंट व्यक्ति है, जो कवि भी है, एजुकेशनिस्ट भी है, एडवोकेट भी है और बहुत ही अच्छे पॉपुलर मेडिटेशन करने वाले योगी भी है, ऋषि भी है। तो निश्चित तौर पर जब आप इनको एक देखते होंगे कि कैसे इन चीजों को उन्होंने ग्रैप किया होगा, कैसे उन चीजों को अपने अंदर समाया होगा उन्होंने, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति एवरीथिंग इज पॉसिबल ऐसा कहा जा सकता है जब व्यास जी को सुनेंगे। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अपनी जिज्ञासा, हमारे विद्यार्थी मित्र जो हमें सुन रहे हैं, युवा साथी सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ईश्वर ने आपको वो सारी शक्तियां दी है, बस उसका उपयोग करना आना चाहिए आपको। अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो वो शक्ति आपकी व्यर्थ जाएगी। लेकिन राजेंद्र गोपाल सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने पूरी शक्तियों का जो ईश्वर ने दिया है उन्हें, उसका पूरा उपयोग किया उन्होंने, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि एक संगीत जो विधा है, अगर उसको आप समझ लेते हैं, उसको अगर पकड़ लेते हैं, तो बाकी सारी विधाएं अपने आप शायद उसके आगोश में या उसके गोद में आ जाती हैं। क्योंकि संगीत में जो है व्यक्ति निखरता है और आगे बढ़ता है और वो एक कला ऐसी है कि जहां पर आपका मन जो है खुल जाता है, आपका बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है और आपको खुशी भी मिलती है ना। और जब आप दूसरों को भी कुछ सुनाते हैं तो उनकी खुशी भी देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कोई भी कला हो वो आपको जो है आगे बढ़ाता है और आपको निखारता है। तो बिल्कुल शायद गोपाल व्यास जी ने जब संगीत को अपनाया तो उसके बाद उनको लगा कि बस उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ पाया और फिर उसके बाद एक अच्छा शिक्षक बने, उसके बाद एक अच्छे कवि बने और फिर आखिरी में उन्होंने एक ये भी सोचा कि ससुराल में इतने सारे एडवोकेट है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो उन्होंने वो भी बाजी मारी और एडवोकेट भी बने। तो निश्चित तौर पर आप के अंदर इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता है, बस उसका उपयोग करने की जरूरत है। मुझे ये आज एहसास हो रहा है कि हम अपनी क्षमताओं का शायद ही अनुमान लगा पा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी शक्ति आपके अंदर है, बस जरूरत है उन्हें जगाने की। तो आइए फिर से मैं सम्माननीय आदरणीय जो हमारे राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं उनसे वापस जोड़ना चाहूंगा। अब जैसे कि जो आपने यात्राएं एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते काव्य की तरफ कैसे झुका हुआ और कैसे आपने लिखना शुरू कर दिया पहले, और उसके बाद मंचों पर कैसे आपको आना हुआ, वो थोड़ा इतिहास बताइए।
1: जी सर, देखिए जब आज आप मुझे खोल रहे हैं तो मैं इनर वर्ल्ड में इतना गोता लगाता जा रहा हूँ कि बाबा ने मुझे कितनी विधाओं में मेरे को ट्रेंड किया। यहाँ सप्लीमेंट करूँ, आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि मैं कविता से पहले देश के बहुत अच्छे केमिस्ट्री में और एस्ट्रोलॉजी का भी विद्यार्थी रहा। मैंने जम करके सर ज्योतिष को किया और उस समय पैसा भी कमाया। अच्छा। मुझे कवि सम्मेलन ज्योतिष की वजह से मिलने लगे। मैं किसी का हाथ देख के कुछ प्रिडिक्ट करता था, वो बातें बाबा की कृपा कहिएगा वो लागू हो जाती थी, तो मुझे अच्छा, आयोजन अच्छा, मिलने अच्छा। लगे। अब स्टेज पे मसनद के पास छुप छुप के मैं कविता भी बोलता था और कवियों के हाथ भी देख लेता था। और दूसरे दिन कुछ जातक मुझे घर ले जाते, वहां से एक अतिरिक्त लिफाफा मुझे कवि सम्मेलन के अलावा और मिल जाता था। तो फिर जब एक जगह मैंने मेरे मन में

0: परमात्मा ने मुझे कहा कि कहीं दूसरों का भविष्य देखने में तुम अपना वर्तमान तो नहीं बिगाड़ दोगे बेटा। ऐसे अंदर से गूंज आने के बाद सर मैंने इस विधा को एक तरह से वेस्ट फाइल में रख दिया। और अब यदा कदा कभी कहीं कोई अटक जाता है तो बिना पारिश्रमिक के मैं उनकी सेवा कर लेता हूँ, क्योंकि ज्योतिष भी छठा जो वेद है ये भी, और उसमें भी हॉरोस्कोप के बजाय मैं पॉमिस्ट्री में ज्यादा, मेरे कीरो मेथड से भी मैंने हाथ देखने की हस्त रेखाओं पर मेरा एक तरह से बहुत अच्छा कमांड रहा सर।
1: जी जी,
0: क्योंकि 7.5 साल में ये एक ऑटोमेटिक ईसीजी मशीन है कि हम जो सोचते वो रेखाओं में प्रिंट हो जाता और हम रेखाओं के बारे में काफी अंदाजा, लेकिन जब बाद में रेखा का अर्थ समझ में आया कि अनंत बिंदुओं से मिलने पर एक रेखा बनती है, अनंत रेखाओं से एक पेज बनता है, एक पेज से कॉपी बनती है, तो फिर मैंने कहा यार रेखा के चक्कर में नहीं पड़े अपन तो बिंदु के चक्कर में पड़ जाए। तो मैं ज्ञान में जब आत्मा के रूप में बिंदु स्वरूप हो गया तो मेरा एक शेर है जो मैं आपको निवेदन करूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि हम खुदा तो नहीं पर जमाने से जुदा है। हम खुदा तो नहीं पर जमाने से जुदा है, हम किसी पे नहीं पर कोई हम पे फिदा है।
1: क्या
0: तो ईश्वर मुझसे सीधा हुआ और मेरे लिए तो अभी रमेश बाबू रेडियो मधुबन मेरे लिए तो ईश्वर ही है जो मुझ पर फिदा होकर गांव के सुदूर बच्चे को इस तरह से इंटरव्यू में उपस्थित कर रहे हैं। तो मेरी काव्य यात्रा का मैं आपको बताऊं कि मैंने 35 वर्ष हमारे हमीरगंज में एक बंसीलाल जी बेकारी बहुत अच्छे कवि और उसके बाद मेरे भाई साहब स्वयं बड़े पंडित मनोहर व्यास सरस्वती, ये दो महान हस्तियां हमीरगढ़ में और हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि सम्मेलन 35 वर्षों तक हमीरगढ़ में हुए। इंडिया का कोई ऐसा कवि नहीं जो मेरे गांव में नहीं आया हो, ये श्रेय जाता बंसीलाल जी बेकारी को। लेकिन मेरी प्रतिभा से वे शुरू में ये महसूस किया कि अगर ये बच्चा मंच पे आया तो मेरे लिए खतरा उपस्थित हो सकता, तो उन्होंने मुझे कभी मंचीय सहयोग नहीं दिया।
1: अच्छा,
0: तब जिसका मैंने जिक्र किया कि मेरी मौसी जो है, जब वो एक बार उन्होंने कहा कि तुमको मैं भारत के बड़े मंच पे आज प्रस्तुत करेंगे, मैंने कविता की तैयारी की, लेकिन वहां जाने के बाद जानबूझ के उन्होंने मुझे कट लगाया और मैं बहुत पीड़ित लौटा मेरी मौसी के पास। तो मौसी ने कहा कि जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया ना वो तो श्रोता के रूप में भी तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो पाएगा। और ये मेरी मौसी की प्रिडिक्शन बहुत सही हुई कि माउंट आबू में 21 वर्ष वर्ल्ड लेवल के इस बड़े रंगमंच से काव्य पाठ करने के लिए मैं बराबर तैयार हुआ, लेकिन बंसीलाल जी बेकारी कभी माउंट आबू नहीं आ सके। ये मेरी मौसी की घोषणा बिल्कुल सही हुई। तो मैं पोइट्री के 35 वर्ष कवियों को सुनने के बाद फर्स्ट ईयर में जब मैं सर 1969 में कॉलेज में आ गया, बस वहीं से मैंने छोटे मोटे काव्य लिखना शुरू किया। एक बार मैंने पहले भी कहा कि मैंने एक छोटी सी क्षणिका लिखी थी, मेरी माँ गांव के आंगन में वो अल्पना मांगती थी, मैं गांव में रहता था ना सर कच्चे घर से, तो वो पीली मिट्टी पे सफेद खड़िया से वो कुछ अल्पना मांग रही थी। तो मेरी सबसे पहली रचना उस दिन बनी जो रचना क्षणिका के रूप में है, मेरी किताब मैं मुझे मिल गया मैं भी उसको मैंने छापा है। और वो क्षणिका मैंने सर एक लेटर लिख करके हरिवंश राय बच्चन को बिना पूछे मैंने उनको वो क्षणिका भेजने के बाद उन्होंने एक आप देखे पूरा परिशिष्ट उन्होंने मेरे लिए लिखा जवाब में। लोगों को भरोसा नहीं आया कि हरिवंश राय बच्चन गांव में राजेंद्र गोपाल व्यास को चिट्ठी लिखेंगे, और उसमें उन्होंने मेरी क्षणिका की तारीफ करके कहा कि तुम्हारे बीज में वो सारे तत्व मिलते हैं जो एक दिन तुम महान वृक्ष के रूप में उजागर होंगे, इसलिए ये नियम है। काशी रागरी प्रचारणी सभा को पूरा पढ़े, हिंदी साहित्य पढ़े आदिकाल से लगा करके आधुनिक हिंदी भारतीय भारत हिंदू युग और द्विवेदी युग और सबको मैंने खूब गहन अध्ययन किया, क्योंकि मैं हिंदी ही पढ़ाता रहा 14 साल तक।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं खूब किताबें पढ़ने का मुझे शौक रहा। फिर फर्स्ट ईयर से मैंने लिखना शुरू किया। आप देखिए 35 वर्ष इंडिया के सारे कवियों को सुनने के बाद और म्यूजिक मेरा अपना विषय रहा, तो सर मैं लिरिक्स भी लिखता था और मेरी कंपोजिंग भी
1: थी,
0: इसलिए मेरा एक गीत आप आशय करेंगे एक धुन का गीत कभी दूसरे उस गीत पे नहीं आया। मैंने हर बार नई धुन में अपने गीत लिखे, तो ये मेरी पोइट्री का। फिर मुझे कभी समय मिलने लग गए सर, फिर तो भगवान के दिया। लेकिन ये एक रहा कि मैं मोबाइल नहीं रखता था, अभी भी नहीं रखता हूँ, जिसके कारण मेरा अन्य कवियों से और फेसबुक पर ये मेरा कम रहा। लेकिन मैं आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ कि मुझे किसी के माध्यम से कवि सम्मेलन मिल जाते हैं, मैं अपनी बात कह देता हूं और अब तो

0: नेशनल प्रोग्राम, मैंने सबसे पहले मेरा एक नाइट में मैं हीरो बना 1984 में, जब इंदिरा गांधी की डेथ पर मेरा एक गीत बना, कैसे निकला होगा दम लेखनी कहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कलम कह रही है कि उसने अपना प्राण देश पर कैसे न्यौछावर किया। इस गीत ने सर मुझे एक नाइट में हीरो बना दिया। इस गीत के बाद मैं सीधा भारतीय मंचों पे आ गया। आश्चर्य करेंगे, जैसे कोई यूपीएससी से डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड में आ जाए ना, ऐसे मुझे कवि के रूप में मान्यता मिली। तो मेरी काव्य यात्रा एक बिहार रिखिया मुंगेर के स्वामी जी हैं, निरंजनानंद जी, आपने नाम सुना था, योग का पहला विश्वविद्यालय। वो किसी कार्यक्रम में, जब यहाँ एक मुंगेर विश्वविद्यालय की का एक शाखा यहाँ वेदांत दर्शन नाम से स्थापित हुई, तो उनसे मेरा पहला परिचय हुआ। किसी दंपति के घर, प्रकाश नवाल वंदना है, उनके घर वो विराजे, वहां मैंने गीत सुनाए। तो गीत सुनने के बाद उन्होंने मुझसे रमेश जी एक प्रश्न पूछा कि आपका कोई काव्य संकलन छपा है? तो मैंने कहा सर इसमें व्याकरण का एक सिस्टम है कि मैं अभी तक छपा हुआ नहीं हूँ, छिपा हुआ हूँ। ये सुनते ही उन्होंने कहा आप मुझे 15 दिन में अपने गीतों की पांडुलिपि दीजिएगा, मैं आपकी किताब छपाऊंगा। और मैंने इतना खुश हुआ कि मैंने तो 15 दिन में क्या, मैंने तो 10 दिन में ही मेरे बहुत अच्छे शिष्य मेधावी चंद्र त्रिपाठी नाम है उनका, उन्होंने मेरी पांडुलिपि तैयार करके और सर इनको प्रस्तुत कर दी। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 2003 में उस पुस्तक का प्रकाशन भी हो चुका है। मैं मुझे मिल गया नाम से, उसमें कुछ 3 भागों में वो है, और क्राउन प्रेस कोलकाता से करीब उसकी 50,000 प्रतियां छपी है, जो मैं आपको पता है माउंट में मैं उन जीनियस लोगों को वो गिफ्ट देता हूँ, वो स्वीकारते हैं, और आज भी वो किताब मेरी पहचान बन गई उसमें। उसके बाद तो काव्य रचनाएं और हो गई, अब दूसरा संकलन निकले नहीं। किसी ने मुझे पूछा कि आपका और कोई संकलन है, मैंने कहा शेर नहीं के एक ही बहुत होता, अगर दूसरा नहीं भी चपे तो क्या।
1: चलिए रंजन गोपाल व्यास जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, और आशा करूंगा हमारे युवा साथी आपकी इस यात्रा में जहां पर आप अपने भावनाओं को, अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उन सभी को मोटिवेशन मिल रहा है। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही बोलना शुरू करता है तो उसकी जो है जीवन के सारे जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मोटिवेशन देता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर राजेंद्र गोपाल जी से बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और राजेंद्र गोपाल व्यास जी की कहानी आपने सुना, किस तरह से वो संगीत से जुड़े, उसके बाद शिक्षक बने, उसके बाद कवि बने, उसके बाद एडवोकेट बने और उस बीच में एस्ट्रोलॉजर भी बन के निकले और अभी राज ऋषि बनकर हम सभी से बातें कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति और व्यक्तित्व अनेक, ऐसे व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए, मैं आखिरी में मैं जोड़ना चाहूंगा आप को फिर से राजेंद्र गोपाल व्यास जी सर से, और मैं चाहूंगा कि एक बात जरूर बताइए कि हमारे जो युवा साथी आज के समय में, पहले आपके टाइम पर तो शायद ऑप्शंस बहुत कम थे, है ना, या तो शिक्षक बनो, या तो इंजीनियर बनो, या तो डॉक्टर बनो, है ना, तो बाकी चीजें ऐसे जैसे आईटी ये सब चीजें नहीं थी। आज मल्टीपल चीजें हैं, हर सेक्टर में बहुत सारे विभाग आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं उसमें, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आज के युवा को आप एक मैसेज और अपने करियर को चूज करने के लिए क्या बताना चाहेंगे।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे रमेश बाबू उस नई पीढ़ी पर बहुत नाज है, तो बुजुर्गों का तो बहुत कदर करता ही हूँ, लेकिन 1947 के बाद इंडिया के इस गणतंत्र ने और प्रजातंत्र ने जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो बताया मैंने आपको, जो भी मैं किसी चीज से नेगेटिव कमेंट कभी नहीं करता, मैं ईश्वर और कुदरत पर भरोसा करता हूं कि कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। हमारी नजरों में जो गलत हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कल्याण छिपा रहता है, ये मैंने ज्ञान में आने के बाद महसूस किया। तो एक तो मेरा शिकायती चित्त सर कभी नहीं रहा, मैं परिस्थितियों से कभी नहीं घबराया। अगर वातावरण अनुकूल नहीं है तो हम टीचिंग में कहते थे कि हमें क्लासरूम क्लाइमेट क्रिएट करनी पड़ती। मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए सर पर, आज एक अलग किस्म का इंटरव्यू एक घटित हो रहा है, क्योंकि ये एक क्रिया नहीं है, ये एक लीला है। एक मैं अकस्मात योग से उठा, आपका फोन आया, तो मैंने कहा नहीं, इतनी बड़ी उपलब्धि को मैं सारे काम अपॉइंटमेंट छोड़ के मैं यहाँ प्रस्तुत हो गया कि मेरा सौभाग्य है कि मधुबन रेडियो से आज संपूर्ण विश्व में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मेरा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं बच्चों को एक बात कहूंगा, मेरा एक डायलॉग है जो रेडियो मधुबन से भी बजता है कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए गए। देखिएगा, मैं बच्चों को ये कहूंगा कि गांधी जी के जमाने में बुनियादी शिक्षा आई थी सर हमारे यहाँ, वो 4H एजुकेशन कहलाती थी। उसमें 4H होते थे, हैंड, हेड, हार्ट और हारमोनी। तो वो एक पेंसिल भी हुआ करती थी रमेश जी, शायद आप एक 4H पेंसिल आया करते थे। हाँ, तो पहले क्या हार्मोनियस डेवलपमेंट होता था सर्व।

0: सर्वांगीण विकास।
1: बुनियादी
0: शिक्षा में फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, गेम्स खेलते थे हम, क्राफ्ट करते थे हम, हॉबीज करते थे, पढ़ाई करते थे, स्कूलों में हमारा एक हार्मोनियस डेवलपमेंट होता था। आज मैं ये नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, पर जब से साइंस को हमने प्राण आधार मान लिया है, जब से ये साइंस आई, मोबाइल आए, लैपटॉप आए, इसमें बच्चों का बचपन तो खा गए ये लोग, बिल्कुल खा गए। अब तो गेम भी बच्चे हमारे इस मोबाइल पे ही खेल रहे, फील्ड भूल गए, पेड़ों पे चढ़ना भूल गए, तैराकियां भूल गए, फुटबॉल भूल गए हैं, फुटबॉल भी ये मोबाइल पे ही खेल रहे हैं। और बड़े शहरों में स्विमिंग पूल के नाम पे 2 फीट पानी के गड्ढे में बड़ा महंगा तैराकी वो सीख भी लेगा, हम तो गांवों के तालाबों में सर गंठे चमकी और कमल लाना ऐसी ऐसे खतरों से के खिलाड़ी हुआ करते थे हम तो। तो मैं तो ये बच्चों को यही कहूंगा कि बदलते युग में आप पिछले युग पे मत जाइएगा। हम तो एक कपड़े की दड़ी से खेल के भी सर गांव में बहुत प्यार से आपस में फिजिकल और मेंटल और हार्टली जीवन जीते थे। आज बच्चे, आपको एक सुन के आश्चर्य होगा कि 2 जुड़वा ट्विंस बच्चे भी एक माँ के सामने एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आज जो वैल्यू क्राइसिस आया ना, जो मूल्यहीनता आई है, उस पर मुझे पीड़ा है कि हम बच्चों को क्या कह रहे, संस्कार तो हम दे ही नहीं। यानी 2 जुड़वा बच्चे अगर एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते तो रमेश बाबू बताए उनकी प्रॉपर्टी के विभाजन के वक्त उनकी हालत क्या होगी।
1: जी जी,
0: एक पीड़ादायक प्रश्न है। तो मैं नए बच्चों को कहूंगा कि सबसे पहले तो बुक्स के प्रति भी वापस, इंटरनेट पर आप जाइएगा लेकिन किताबों से अपना प्रेम वापस लाइएगा। हो सकता आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाए, नहीं चले, तो कम से कम बुक जो है वो तो आपको जीवन में बहुत आना। इसलिए मैं एक जगह एक फंक्शन में बार बार कहता हूँ कि हम बड़े लोग आजकल किसी अतिथि के वेलकम पर बुके देते हैं, एक बुके 400 रूपये का आता है रमेश बाबू, ये नए बच्चे सुन रहे हो मेरी बात।
1: बिल्कुल,
0: आप इतने बड़े 400 रूपये के बुके का 10 मिनट बाद कोई महत्व तो नहीं रहता। अगर आप 400 रूपये के बजाय 100 रूपये की एक बुक भी आप किसी को दें तो जिंदगी भर उस परिवार में सुगंध, आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकती। एक मैसेज तो मैं ये दे रहा हूँ बच्चों को कि वे बुक के प्रति ज्यादा रुझान लाए, बुके के प्रति थोड़ी उदासीनता लाए, ज्यादा फूलों को तोड़े नहीं, वो सृष्टि में उसी डाली पे लगे हुए हैं यार, परमात्मा हवा के जरिए। आप देखे अपना नाखून तोड़ के बताओ ना, जगदीश चंद्र बसु जब मेरी बॉडी में उतरते तो मैं यही कहूंगा कि अनायास आप टहनिया नहीं तोड़े, फूल नहीं तोड़े, वो वहाँ लगे हुए हैं, उनकी सुगंध अनंत तक पहुँचती है। दूसरा बच्चों को कहूंगा कि अपनी फैकल्टी को निर्धारित करें, अपने इनर वर्ल्ड में पेरेंट्स और गुरु के माध्यम से देखें कि आप बनना क्या चाहते हैं। अगर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है तो सर उसको आर्टिस्ट के ही फील्ड में डाला जाए, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर, लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो अपना दबाव डालते, जो बाप चाहता वो बनाना चाहता। इस पर बहुत सारी फिल्में भी आई, मैं उनका चित्र यहाँ नहीं करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे को 9th के बाद अपने इनर वर्ल्ड में खुद भी अपनी समझ और अच्छे गुरुओं की गाइडेंस से अपनी फैकल्टी चयन करे, अपना कैरियर चेंज करे, और जिस कैरियर के ट्रैक में वो आ जाए उसमें हड्डी तोड़ मेहनत करे, फिर साइड सीन नहीं देखे सर। और अर्जुन की वो व्याख्या मैं करूंगा कि अर्जुन जैसे धनुर्धारी को न पेड़ दिखता है, न टहनिया दिखती है, न चिड़िया दिखती है, न आंख दिखती है, केवल पुतली दिखती है। तो 12वीं के बाद में, 12th के बाद में, या किसी कोचिंग के बाद वो अपना चाहे MBA करे, MCA करे, लॉ करे, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, अपनी क्वालिटीज को इनर वर्ल्ड में चेक कर ले कि आल्दो वो बनना क्या चाहता। अगर वो सही क्वालिटीज में वो जाकर के बनता है तो मैं सोचता हूँ इन बच्चों को जो मैं एक राय दे रहा हूँ अपनेपन के कारण, कि वे निश्चित रूप से एक ऊंचाई पर अपने जीवन को बनाएंगे। और मुझे फक्र है कि आज युवान, वृद्ध और प्रौढ़ मुझे सुन रहे हैं। मेरी इसमें कहीं कोई अहम की भूमिका आपको लगे कि व्यास जी कुछ घमंड की का छोंक लगा रहे हैं तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। कतई किसी अंतिम अनकॉन्शियस में भी मुझे ये ईगो नहीं है कि मैं कुछ काबिले तारीफ व्यक्ति हूँ, पर हाँ परमात्मा ने मुझे, अनंत गुरुओं ने धार रख करके मेरे को इस हीरे को तराशा है कि आज जहाँ मौका मिलता है मैं चूकता नहीं हूँ और फालतू में कहीं बोलता नहीं हूँ। रमेश बाबू, आपने मेरे इनर वर्ल्ड में जो इंडोस्कोपी कैमरा डाल के आज मुझे जो मैसेज किया है, मैं आपके प्रति, रेडियो मधुबन के प्रति और बाबा के प्रति थैंक्स चाहूंगा कि अनंत गुरुओं ने मुझे, ठीक है, इसलिए मैं लाइफ

0: हम सीख लें प्रति क्षण में। और दूसरा मैं निवेदन कर दूं कि मैं प्रेजेंट में रहने में बिलीव करता हूं, मैं पास्ट और फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं करता। और दो लाइनें आप कहो तो मैं गीत की भी सुना दूं ताकि सबको लगे कि मैं म्यूजिक और पोएट्री का विद्यार्थी रहा। तो एक एक प्यारी सी पंक्ति सुन लीजिएगा।
1: बिल्कुल।
0: लोग मुझे पूछते हैं स्वामी जी के मैं इतना अच्छा कैसे लिख लेता हूँ, है ना? तो उनके आंसर पर दो लाइन सुनिएगा। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात, मेरी कविता लिखने में मेरी योग्यता नहीं है, ये प्रभु प्रसाद है, एफर्ट नहीं है, ग्रेस है। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात, मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है कितनी औकात,
1: क्या बात
0: है कितनी औकात। एक अंतिम बंद देखेगा बहुत अच्छा
1: जी,
0: भर भर अंतिम है इसका, भर भर खाली होना है, ज्यादा चीजों को संग्रह नहीं करें सर, आत्मा बोझिल हो जाएगी। हमारा मनुष्य जीवन देने के लिए मिला। मैं भी पहले सर बहुत लोभी था, आपको बताऊं, हर चीज प्राप्त करता था। अब मैंने बटोर करके बांटना शुरू किया जब से मैं बाबा के पास आया। भर भर खाली होना है और खाली होके भरना, कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना, विहत करे ना रहन बसेरा, सुने डाली पा। जब मैं मधुबन में आता हूँ और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी को देखता हूँ मधुबन में सर, लगता है वैकुंठ धरती का यही है। तो ये घर घर परिवार बच्चों से बुजुर्गों से ही बहुत सुंदर लगता है। आपने मुझे सुना और सराहा, मैं सभी दर्शकों को श्रोताओं को बहुत बहुत मेरी हार्दिक बधाई देता हूँ कि मेरे जीवन की ये आज की तारीख मुझे याद रहेगी कि
1: जी,
0: आज
1: जी।
0: एक छोटे से इस व्यक्तित्व को उजागर होने का मौका मिला है रेडियो मधुबन के माध्यम से।
1: और जी, जी, जी।
0: वो तो मधुबन तो मेरा प्राण है ही है। और उसमें भी जसंत भाई, कृष्णा बहन, आप, रोहित, बहुत सारे ऋषि, अनंत लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और सीनियर्स में भी मैं नाम लूंगा, हमारे तुलसी भाई जी हैं, राम श्लोक भाई जी हैं, हमारे जसवंत भाई हैं, हमारे सतीश भाई जी हैं। इन महारथियों के बीच मेरी पालना रही है और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सबने मुझे सराहा, सुना, सुने, आप सबको सुना।
1: शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र गोपाल व्यास सर, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। मैं भी इस आपकी रूहानी यात्रा के साथ जुड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और आशा करूंगा कि हमारे जो श्रोता मित्र हैं उन सभी को भी आनंद आया होगा आपकी बातें सुनकर, आपकी जीवन यात्रा में जो पड़ाव आए, जो छोटे बड़े अलग अलग मुकाम आपने हासिल किए, लेकिन हर जगह जो है एक जो रस है, प्रेम का रस बहता हुआ दिखता है। और निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि प्रभु प्रेम के इस प्रभु प्रेम के इस रंग में हमेशा आप रंगे रहें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सभी हमारे युवा साथी जो हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगा कि जीवन में आप चाहे जो बनना चाहे बिल्कुल बन सकते हैं, बस उसके लिए जी तोड़ मेहनत, जो हमारे व्यास जी ने कहा, बिल्कुल आप हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप बिल्कुल हार्डवर्क करें, आपको अपनी जो है सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अच्छे बने, करियर बनाएं, परिवार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, नमस्कार, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आज फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। जिंदगी को जीते हुए कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिन्हें हम सच माने बैठे थे और कहीं न कहीं दर्द में थे, पेन में थे, पीड़ा में थे, खुश नहीं थे। जब हमने ये बातें समझी, उन्हें जीवन में उतारा और मेडिटेशन का साथ लेके, वो ताकत लेकर जब नई तरह से जिंदगी को देखना शुरू किया, एक नया नजरिया लिया, तो सारी पीड़ा फुर हो गई, दूर हो गई, एक नई जिंदगी सामने थी। इस जिंदगी पर चलते हुए या जिंदगी में चलते हुए कई बार आपके हमारे साथ ऐसा होता है, हमें लगता है कि कोई एक सिचुएशन, कोई एक व्यक्ति या मेरा ही कोई ऐसा संस्कार ऑब्स्टिकल बन रहा है, रोड़ा अटक रहा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या करें? आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, इतने सारे लोगों के हमारे पास मेल्स आप तक भी पहुंच रहे हैं, कॉल्स आते हैं और हर बार यही बात होती है कि सब कुछ अब बेटर हो गया है। अवेयरनेस आई, देखने का तरीका बदला, देखने का तरीका बदलते ही पूरा सिनेरियो बदल गया। अब क्योंकि दिख रहा है सब कुछ, तो ये भी दिखने लगा कि रास्ते में चलते हुए बहुत से ऐसी चीजें हैं जो रोक देती हैं, उस रास्ते पर चलने नहीं देती, और फिर हम कई बार या तो रोक के बैठ जाते हैं या फिर हम रास्ता मोड़ लेते हैं या फिर हम उसी से लड़ते हुए अपना वक्त गुजार लेते हैं। सो हाउ टू एक्चुअली यू नो, सबसे पहली बात कैसे पहचाने कि ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल है, कहीं हम रुक गए हैं।
1: उसके लिए ऑब्स्टिकल है ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि ये मेरे रास्ते में ऑब्स्टिकल है, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को, कई बार वो दूसरे लोग होते हैं, कई बार कोई परिस्थिति, कई बार जैसे आपने कहा अपना ही कोई संस्कार, कभी अपनी कोई फिजिकल हेल्थ, यू नो, कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। यू नो, व्हेन डू वी से कि दिस इज एन ऑब्स्टिकल, जब हमें लगता है मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक, मैं हर चीज कर सकती हूँ, आई एम केपेबल, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वो नहीं अचीव कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स विच इज इन द वे, राइट। तो हमें लगता है कि वो निमित्त है मेरे आगे नहीं बढ़ पाने का, तो हम किसी न किसी को वो ऑब्स्टिकल समझ लेते हैं कि जिसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए। कई बार वो ऑब्स्टिकल कारण है जिसकी वजह से मेरे को सेटिस्फेक्शन जो होनी चाहिए अपने कार्य में या अपने जीवन में, वो नहीं हो पा रही। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम इस पुरुषार्थ में चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम हर एस्पेक्ट पे कर लेते हैं सारा कुछ, यू नो, इट्स लाइक आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई एम गेटिंग अलोंग विद एवरीबडी, लेकिन कोई ना कोई एक इंसान ऐसा मिल जाता है कि आई जस्ट, मतलब सबके सामने आई विन ओवर माई सेल्फ, लेकिन उनके सामने जाके मैं हार जाती हूँ। तो जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जो मुझे पहुंचना है जहां तक, कहीं ना कहीं मैं समझने लगती हूँ कि ये व्यक्ति उस लक्ष्य में मेरा बाधा बन जाती है। तो और ये एक बहुत जो फीलिंग आ जाती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन अब ये मेरे रास्ते के बीच में आकर खड़े हो गए, ये या ये बात, तो उस समय जो हमारी हालत होती है हम बहुत पावरलेस फील करते हैं, क्योंकि
0: हेल्पलेसनेस
1: बड़ी उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, होपलेसनेस की जो फीलिंग है ना कि अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है जब तक ये पत्थर हिलेगा नहीं। तो ये जो ऑब्स्टिकल देखने की हमारी आदत पड़ जाती है, तो उसके हम, जैसे आपने बताया कि अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज हैं, एक है कि हम रुक जाते हैं कि मैं तो अब रुक गया, अब ये पत्थर हटे तो मैं हटूं, तो हम पत्थर के सामने आकर ऐसे रुक जाते हैं कि ये हटेगा, और चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए हम वेट करेंगे कि पत्थर हटेगा। दूसरा है कि हम उसके अगेंस्ट, सबके सामने right, बोलना, सबके उसके बारे में बताना, एक यू नो, हर जगह वही विक्टिम वाली फीलिंग कि उनकी वजह से मेरा नहीं हो रहा। एक है कि मैं उस ऑब्स्टिकल के साथ लड़ना शुरू कर देती हूँ कि ये है क्या चीज, इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, यू नो, आई स्टार्ट फाइटिंग विद द ऑब्स्टिकल, इट्स लाइक पत्थर के साथ
0: सर फोड़ना
1: शुरू हो जाता है। और हम ये नहीं रियलाइज करते कि वो फाइटिंग के प्रोसेस में हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और हमारा संस्कार बनता जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा ऑब्स्टिकल हमारे रास्ते में आएगा, आई विल फाइट विद इट। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज ये पत्थर क्रॉस करने के बाद
0: बाकी पत्थर आएंगे
1: और है।
0: तो ऑब्स्टिकल क्या आता है, कौन से ऑब्स्टिकल क्यों हम यहाँ?
1: ऑब्स्टिकल छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे मैं समझूं कि अगर मेरे ऑफिस में कोई है जो जान पूछ कर मेरी तरक्की के रास्ते में, अ लॉट ऑफ पीपल फील कि कोई ना कोई मेरे प्रोग्रेस
0: अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं,
1: चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली भी, लेकिन ये मेरे तरक्की के रास्ते में, तो मैं हमेशा उनको क्या समझते रहूंगे, ये मेरे रास्ते में है, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट इज नॉट अंडरस्टूड, ये मेरे रास्ते में, जब तक ये यहां से नहीं हटेंगे नथिंग कैन हैपन। सो परमात्मा जो हमें सबसे सिंपल और इजी बात इस केस में बताते कि समस्या के साथ नहीं टक्कर मारो, समस्या का चिंतन, समस्या की चर्चा, इट्स ऑलवेज समस्या समस्या समस्या, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो परमात्मा हमेशा सिखाते कि समस्या

0: स्वरूप नहीं बनो. वी बिकम एन एम्बोडीमेंट ऑफ प्रॉब्लम
1: बिकॉज वी टॉक सो मच, वी लिव विद इट. यस, यू नो.
0: सो शिव बाबा सेज, डोंट बिकम एन एम्बोडीमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकम एन एम्बोडीमेंट ऑफ द सोल्यूशन. तो समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो. लेकिन हमारी सारी एनर्जी समस्या पे हिट करते हुए चली जाती है. तो ऑब्स्टिकल अगर हम किसी चीज को समझते हैं रास्ते में, तो सिर्फ क्या चाहिए, परसेप्शन में एक थोड़ा सा शिफ्ट. अभी हम समझते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वी नीड टू गो थ्रू फोर स्टेजेस. कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई लग रही है, हमें अपने आप को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है उसके लिए. और जैसे ही हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे, तो एक नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी. और जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, साथ में डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी. व्हाट विल हैपन, राइट नाउ माय परसेप्शन इज दिस इज इन माय वे, ये मेरे रास्ते में खड़ा है. अभी मैं उसको थोड़ा सा एक थॉट से अगर शिफ्ट करूं, दिस इज नॉट इन माय वे, दिस इज द वे. ठीक है, दिस सीन और दिस पर्सन हैज कम टू टीच मी समथिंग एल्स. This is the way in my progress, not that this is in the way of my progress. So, जैसे ही मैंने mind को ये instruction दिया कि this is not in the way,
1: I have to go through this. That is why this is the way.
0: This is the way.
1: I have to go through this.
0: I have to go. जैसे एक hurdle race करते हैं, तो hurdle race में पता होता है ना, this is not in the way, this is the way. ये race ही ये है कि इस race के अंदर hurdles आने वाली है. अगर हम रेस वो स्मूथ वाली समझते हैं जिसमें कोई हर्डल्स नहीं है, तो वो जो स्ट्रेट ट्रैक रेस होती है, उस पर अगर रास्ते में कुछ भी पड़ा होगा तो हम कहेंगे दिस इज इन द वे, इसको रास्ते से हटाओ. लेकिन जब हर्डल रेस है, तो हमें पता है कि हर थोड़ी दूर के बाद जो ये डंडा लगा हुआ है, ये इस रेस का ही हिस्सा है.
1: तो
0: दोनों चीज में कितना फर्क हो जाएगा. अब उस डंडे के सामने जब हम जाकर खड़े हो जाएंगे, हम कोई ऐसे खड़े थोड़ी हो जाएंगे. Everyone else is going to move. Forget everyone else. What about me? तो हम दो ऑप्शन है ना, या तो खड़े हो जाए, डंडा हिले तो मैं हिलूं,
1: तो वो डंडा तो हिलने वाला है, तो पार्ट ऑफ द गेम.
0: या फिर डंडे के साथ फाइट करते रहे, बट अदरवाइज दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम. सो सिमिलरली आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ, दिस जर्नी इज अ हर्डल रेस. मैं ये समझू हर्डल्स नहीं होने वाले हैं, ये होने नहीं वाले.
1: ये तो हम हर बार मानते ही आ रहे हैं कि जिंदगी में सिचुएशंस प्रॉब्लम आएंगे हैं,
0: आने वाले हैं. बट आई हैव टू जस्ट लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस. तब ये समझ में आता, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस टू रिमेम्बर, कि इट्स नॉट इन द वे, दिस इज द वे. उस हर्डल को देखें, दिस इज द वे, दिस हैज कम टू टीच मी हाउ टू जम्प. तो जैसे ये नया इंस्ट्रक्शन माइंड को दिया कि ये समस्या नहीं है, ये मुझे एक नया रास्ता, ये एक नया पाठ पढ़ाने के लिए ये समस्या आई है. तो जैसे ये नया इंस्ट्रक्शन दिया, तो एक नए परसेप्शन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया. बिकॉज मैं उसी व्यक्ति को, उसी सिचुएशन को एक बिल्कुल डिफरेंट स्वरूप में देखूंगी. तो नया परसेप्शन जैसे ही क्रिएट होना शुरू हो गया, पुराना वाला परसेप्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है. क्योंकि दो एक टाइम पर दोनों में से
1: एक ही रहे,
0: एक ही हो सकता है. तो जैसे एक पौधा है, अगर हम उसको कुछ समय तक पानी नहीं देते, हमें उखेड़ के फेंकने की भी जरूरत नहीं है, बस उसकी तरफ कुछ समय तक ध्यान नहीं देना. सिमिलरली दिस परसेप्शन, ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना. इंस्टेड ये मुझे क्या सिखाने के लिए आया, तो वो परसेप्शन बिल्डअप हो जाएगा और पुराना वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. ये बहुत ईजी है. ये अगर सुनने में भी लगे कि नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल, आई जस्ट हैव टू लुक एट द सिचुएशन ओनली विद दिस थॉट, ये मुझे क्या सिखाना है.
1: आई थिंक वी शुड बी मोर क्लियर, मतलब मेरे लिए और क्लैरिटी हो जाएगी कि परसेप्शन खत्म होगा, हर्डल खत्म नहीं होगा.
0: हर्डल तो खत्म ही नहीं होने वाला, लेकिन हर्डल है क्या चीज?
1: हर्डल मेरे रास्ते की एक
0: हर्डल है क्या चीज?
1: मेरा रास्ता,
0: हर्डल तो यहाँ है ना. हर्डल तो सारा यहाँ है, क्रॉस तो मैंने करना है. लेकिन जैसे ही परसेप्शन चेंज हो जाएगा, क्रॉस करने का तरीका
1: बदल जाएगा,
0: चेंज हो जाएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगेन द सेम एग्जांपल, कि ऑफिस में कोई मेरे अगेंस्ट कुछ चल रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो हाथ धोकर पीछे पड़ा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, इनकी प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए. वन, फाइट अगेंस्ट हिम इंटरनली. एक्सटर्नली तो शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते, इंटरनली फाइट. दूसरा, गिव अप.

0: सबके साथ बन जाती है, लेकिन इधर आके मैं हार जाती हूँ। तो मेरे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में ये व्यक्ति ऑब्स्टिकल है, या मेरी कंपनी में मेरी टीम की प्रोग्रेस में ये व्यक्ति ऑब्स्टिकल है। अब क्या करें? आई हैव टू लर्न दैट दिस पर्सन हैज कम टू इंक्रीज माई टॉलरेंस पावर, कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, जितना मैं एक्सेप्ट कर लूंगी उतनी मेरी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। जितना मैं उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखूंगी, अंडरस्टैंडिंग जो हम दोनों के बीच में होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आई एम नॉट रेजिस्टिंग दैट पर्सन। वेरी ऑफन वी से दिस पर्सन इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। थोड़ा सा परसेप्शन, दिस पर्सन इज नॉट डिफिकल्ट, दिस पर्सन इज जस्ट डिफरेंट। जैसे ही मैंने डिफिकल्ट कहा कि बहुत डिफिकल्ट है, ये व्यक्ति कहो हाँ ये व्यक्ति थोड़े से डिफरेंट है,
1: एक चैलेंज है इनको हैंडल करना।
0: तो चैलेंज मतलब कि इनके साथ अगर मैंने डील कर लिया,
1: सबके साथ कर सकते।
0: एक मैच के अंदर भी क्या होगा, जो सबसे मुश्किल टीम है उसको अगर हरा दिया तो फिर आपके चांसेस ऑफ विनिंग एवरी अदर मैच ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। बट नाउ आई हैव टू जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, इट कीप्स चेंजिंग। ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स है वो मेरी इनर पावर को बढ़ाने के लिए आई है, है ना। तो इसको बढ़ाने का साधन इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जब तक हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी, हमारी शक्तियां
1: हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि हम कहां पर हैं,
0: और पता भी नहीं चल पाएगा कि हमारे पास कितना है। जब आता है कुछ रास्ते में, तभी तो समझ में आता है कि दिस इज व्हाट आई नीड, और दिस इज व्हाट आई हैव, और दिस इज व्हाट आई हैव टू इंक्रीज। एंड सिर्फ पता नहीं चलता, वो परिस्थिति ही कारण बन जाती है उस शक्ति को मेरे अंदर
1: जनरेट करने।
0: सो इट्स सच अ बिग थिंग। एंड इसको फिर मैं ऑब्स्टिकल क्यों समझू? जो पावर सारी दुनिया समझती है कि सहन शक्ति मेरे अंदर कहाँ से आए, सहन शक्ति कैसे आए, क्या करूं जिससे मेरे अंदर सहन शक्ति आ जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे मुझे सहन शक्ति अपने आप मेरे अंदर क्रिएट होने वाली है, ओनली इफ आई लुक एट इट लाइक दैट, इज देयर एनीथिंग बेटर देन दैट, देन आई विल से ऑटोमेटिकली कि ड्रामा में ये भी जो सीन हुई, ये सीन भी कल्याणकारी। क्योंकि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। दिस वन थॉट हेल्प्स मी ऑल्सो टू लुक फॉर द लेसन, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सीन कल्याणकारी है।
1: वो लेसन मुझे कहाँ से समझ में आएगा कि क्या क्यों आया है?
0: क्योंकि मुझे ये तो पता ही होता, क्यों आया है वो मुझे नहीं देखना है। ये जो आया है इसको, इसमें से मुझे क्या सीखना है? क्योंकि हर सिचुएशन या हर व्यक्ति जो आता है वो मेरे अंदर की किसी चीज को प्रिक करता है ना। लेट्स से कि जैसे वो स्वभाव संस्कार मैच नहीं कर रहा, तो वो तो अब उनका स्वभाव संस्कार है, मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है। तो वो जहां मुझे तकलीफ हो रही है, हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, या गुस्सा आ रहा है मुझे उनकी उस बात पर बार बार, तो वो तो मुझे सिग्नल मिल जाता है कि कौन सा वाला संस्कार है जिस पर वर्क करना। कभी कभी हमारे अपने स्वभाव संस्कार भी बिगड़ बन जाते
1: हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद भी जो जो जिस तरह की जिंदगी जी है हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं।
0: कई बार ऐसे हो जाता कि पुरुषार्थ की इस यात्रा में जब हम चल रहे हैं तो ऐसा लगता ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, लेकिन ये कोई एक आदत है जो छूटती नहीं। तो ऐसा लगने लगता कि मेरा ही स्वभाव संस्कार मेरे ही पुरुषार्थ में एक ब्लॉकेज बन रहा है। तो उसमें भी बाबा हमेशा ये सिखाते कि सबसे पहले तो मेरा संस्कार है कौन सा,
1: ओरिजिनल है,
0: जो ओरिजिनल है। तो जो संस्कार ओरिजिनल नहीं है उस संस्कार को मेरा संस्कार तो कहना ही नहीं, उसको मेरी नेचर तो कहना ही नहीं, क्योंकि मेरी नेचर कहते ही वो
1: कितनी बार लोग बोलते हैं ना कि आई एम लाइक दिस,
0: सो दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी राइट नाउ, बट हु एम आई एक्चुअली, वो याद करते ही मेरा लेसन चेंज हो जाता है। तो बाबा हमेशा यही बताते हमें कि कभी भी गुस्सा, ईर्ष्या, ये सारी जो कमजोरियां हैं इसको कभी भी मेरा संस्कार नहीं कहना, क्योंकि जैसे ही आप उसको मेरा संस्कार कहते हो वो संस्कार भी आकर बैठ जाता है कि इन्होंने तो मुझे मेरा कहा, तो उस संस्कार को भी आपसे बड़े अपनेपन की फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी इन संस्कारों को मेरा संस्कार नहीं कहना, और हमेशा अपने आप को वही लेसन याद दिलाना कि मेरा संस्कार कौन सा है।
1: एंड आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स, यू नो, मूविंग अवे फ्रॉम दी संस्कार।

0: तो मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो हम अभी एक मिनट के लिए उसको ट्राई करते ताकि फिर हर एक घंटे के बाद हम एक मिनट के लिए वो अभ्यास कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए परिस्थिति को भूलकर, जो व्यक्ति ऐसा लगता वर्तमान समय के जीवन में एक विघ्न रूप बनकर आया है, उस व्यक्ति को भी भूलकर, सब बातों से बुद्धि को परे हटाते हुए अपने आप को देखें कि इन सब परिस्थितियों के बीच मैं कौन हूं। अपने आप को देखें, मैं इस प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मास्टर ऑफ दिस बॉडी एंड मास्टर ऑफ ऑल सिचुएशंस। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मेरी स्थिति से मैं हर परिस्थिति को पार कर सकती हूं। मैं आत्मा इस नाटक रंगमंच से परे जाकर चांद सितारों की भी दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आकर पहुंच जाती हूं। परम धाम मुझ आत्मा का घर, जहां मेरे पिता सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा भी कहते, शिव बाबा के समीप मैं आत्मा आकर बैठी हूं। सारी दुनिया जिसको याद करती, वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। शक्तियों की किरणें उनसे चारों तरफ जैसे फैल रहे हैं, तो मुझ आत्मा में भी समाते जाते। शक्तियों से भरपूर होती हुई मैं आत्मा पुनः इस कर्म क्षेत्र पर आ जाती हूं। और ये याद रखू, सर्वशक्तिवान पिता की मैं संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और इस स्थिति से मैं हर परिस्थिति को पार कर सकती हूं। ओम शांति।
1: ओम शांति। कहीं ना कहीं देखा ये है सचिवानी की मेडिटेशन, जब भी हम बैठते हैं यूं बैठ के पल भर के लिए भी, चाहे परमात्मा के पास जाते हैं, वो इतना एक मिनट का जो लम्हा है, एक मिनट का जो वक्त है, वक्फा है, कहीं ना कहीं इतना एम्पावर कर देता है कि फिर सचमुच में वो ताकत जो है वो हमें मिल जाती है। तो आज उन सभी ऑब्स्टिकल्स के बारे में, एक तो हमें अवेयर कराने के लिए कि यस दे आर ऑब्स्टिकल्स, एट टाइम्स वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वो ऑब्स्टिकल्स और उनसे पार पाने का एक तरीका है वो हम कर सकते हैं, ताकि ये जर्नी हमारी कहीं रुके ना। और इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ऑब्स्टिकल जिंदगी में आते हैं, लेकिन हर बार हमारा जब मन था कि हम हर्डल रेस जीतेंगे, हर्डल रेस से गुजरेंगे, तो आज सिर्फ इस तरह के अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जब भी लगे कि कहीं मैं रुक गया हूं, कहीं कुछ है जहां मैं हेल्पलेसनेस की फीलिंग हो रही है, तो उस हेल्पलेसनेस को कन्वर्ट करके एक चैलेंज के रूप में एनर्जी का जो ट्रांस

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
1: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार ना.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन. खुश रहो, खुशियां बांटो.
5: रेडियो पुणेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो. नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा. ज्ञान चिंतन.
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अभय और आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ. विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय होता है. ये वो दौर होता है जब व्यक्ति न केवल शिक्षा प्राप्त करता है बल्कि नैतिक मूल्यों, अनुशासन और समाज में रहने के आवश्यक गुणों को भी सीखता है. विद्यार्थी जीवन केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करता है, जैसे कि मित्रता, संस्कार, मेहनत, आत्मनिर्भरता और जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा. आइए जानते हैं विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है. विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के संपूर्ण विकास का आधार होता है. इस दौरान अर्जित ज्ञान और अनुभव व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करते हैं. यह वह समय होता है जब व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सके. इस दौरान शिक्षा के साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास आवश्यक होता है. तो निष्कर्ष यही है कि विद्यार्थी जीवन एक बीज की तरह होता है.

0: जिसे यदि सही प्रकार से पोषित किया जाए तो वह एक विशाल और फलदायी वृक्ष में परिवर्तित हो सकता है। यह जीवन का वो समय होता है जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। अनुशासन, परिश्रम, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों का समावेश विद्यार्थी जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने इस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने इस विद्यार्थी जीवन को सदा बनाए रखेंगे। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है। और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति। और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है। और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देवी
1: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. सिस्टर शिवानी, वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
3: ओम शांति. थैंक यू.
2: आप कुछ कह रही थी उस दिन अबाउट थॉट्स से लेकर डेस्टिनेट तक. मुझे एक डाउट आ रहा था कि भाई थॉट्स जो हैं, थॉट्स हमारी तो जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो थॉट्स लेके तो पैदा नहीं होता है, वो संस्कार लेके पैदा होता है पिछले जन्म के. तो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करता हूँ कैसे हुआ?
3: सारा दिन सिर्फ चेक करना है कि हर थॉट जो आ रही है, आपको भूख लगी, आपने डिसाइड किया आपको ये खाना है, फिर आपने डिसाइड किया आपको इतने बजे उठना है, इससे बात करनी है, ये बात करनी है, ये काम करना है, दिस एवरीथिंग इज अ थॉट ना. फिर किसी ने कुछ कहा, आपको वो सुन के अच्छा लगा या आपको वो सुन के अच्छा नहीं लगा, इट्स अ थॉट ना. फिर हमने उसकी बात सुनने के बाद ये सोचा इसने ऐसा क्यों कहा, दिस इज अ थॉट ना. तो ये सब कौन क्रिएट करता है?
2: क्या ये पॉसिबल है इस चीज को हम एकदम कंट्रोल में ला सकते? कोई बोला बोला हट के निकल पड़े आगे और वहां उसको, मतलब जैसे छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना एक छीन के दूसरा हाथ में देते, तो
3: दिस इज द लाइन, एक छीन के दूसरा हाथ में देना होगा.
2: हाँ.
3: अगर सिर्फ एक छीनने की कोशिश की
2: होता है
3: तो इट विल नॉट हैपन. एंड जो आपने इसलिए कहा कि इज इट पॉसिबल कि ये थॉट आए और हम कहीं कट और हम आगे चले,
2: हाँ.
3: तो नॉट पॉसिबल. लेकिन उस थॉट की जगह हमें एक और थॉट देनी पड़ेगी, खिलौने की जगह एक और खिलौना देना पड़ेगा.
2: खिलौने की जरूरत है.
3: माइंड कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग. तो अगर आपको वो पर्टिकुलर थॉट लग रही है कि प्लेजेंट नहीं है, अनकंफर्टेबल है, राइट नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, दूसरे के लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो हमें मन को समझाकर फिर उस थॉट को चेंज करना पड़ेगा. मन को दबा नहीं सकते कि नहीं ये नहीं सोचो. इट्स लाइक अ चाइल्ड जो आपसे कुछ कहता है. सपोज आपका ग्रैंड चाइल्ड है, वो कहे दादा उसने ऐसा क्यों कहा, तो आप उसको बोलो चुप कर जा, क्यों पूछा?
2: तब इमीडिएटली मैं चेंज कर
3: देता. आप अगर चेंज भी करेंगे ना, वो थोड़ी देर के बाद फिर से पूछेगा.
2: अच्छा.
3: जब तक आप उसको उसके बात का आंसर नहीं देंगे, द माइंड नीड्स एन आंसर. उसने ऐसा क्यों कहा, गिव इट एन आंसर. लेकिन फिर भी ऐसा गिव इट एन आंसर. इसीलिए तो ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है. जब ज्ञान हमें नहीं था कि ये अलग अलग संस्कार है, अलग अलग नजरिया है, अलग अलग एटीट्यूड है, जब ये ज्ञान नहीं था तो हम बैठे रहते थे लंबा ये सोचकर, लेकिन ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया. अभी प्रोसेस पता है ना, दैट्स वाई नोइंग दैट इनर प्लांट इज वेरी इम्पोर्टेंट. यस्टरडे वी सॉ थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी, इनर प्रोसेस. क्या ये किसी भी दो लोगों का सेम हो सकता है? अब थॉट्स का भी इनपुट क्या था, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम. तो किसी भी दो लोगों का ये तीन फैक्टर सेम नहीं होता है.
2: लेकिन बिलीफ सिस्टम तो मेरे हिसाब से चॉइस है.
3: बिलीफ सिस्टम मीन्स व्हाट इज माय बिलीफ अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ. दिस इज माय बिलीफ. अब आपका बिलीफ और मेरा बिलीफ डिफरेंट होगा.
2: एक आदमी बोलता है गुस्से से काम होता है.
3: हाँ?
2: एक आदमी बोलता है प्यार से होता है.
3: एक कहता है कि गुस्से से होता है.

0: है, एक कहते हैं कि प्यार से हो सकता है, दोनों का रॉ मटेरियल दैट इज बिलीफ सिस्टम दोनों का डिफरेंट,
1: टोटली ऑपोजिट है,
0: टोटली ऑपोजिट, ठीक है। अब जब दोनों का रॉ मटेरियल ऑपोजिट है तो दोनों की फैक्ट्री में से बनने वाला प्रोडक्ट सेम कैसे होगा? अब हमें दोनों का बिलीफ सिस्टम तो पता नहीं है, आपको मेरा नहीं पता होगा, मुझे आपका नहीं पता होगा, लेकिन हमें दिखेगा क्या, एक दूसरे का प्रोडक्ट दिखेगा, क्या क्या बोलते हैं मुझसे, कैसा व्यवहार करते हैं, सो वी सी द अदर पर्सन आफ्टर द प्रोडक्ट कम्स आउट।
1: रॉ मटेरियल से मेरा बिहेवियर पता चलता है, यू मीन टू से
0: बिलीफ सिस्टम, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी।
1: अच्छा, तो जैसे मैं बात करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, करता हूँ, दैट उसकी उसका उसका सीड
0: उसका उधर से है ना, रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो रहा है,
1: बिलीफ सिस्टम से।
0: तो जब आपका और मेरा बिलीफ सिस्टम डिफरेंट, तो आपकी मेरी थॉट्स डिफरेंट, एटीट्यूड्स डिफरेंट, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट, कर्म एक्शन डिफरेंट, हैबिट्स डिफरेंट, पर्सनालिटी डिफरेंट, अब इस तरह से हर एक डिफरेंट। अब जब हर एक डिफरेंट, तो जब हमने दूसरे को देखा, हमने कहा ऐसा क्यों करते हैं, सो वी कुड गो ऑन एंड ऑन फॉर डेज, फॉर ईयर्स, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते।
1: उसने मुझे आज से 25 साल पहले ऐसा क्यों बोला।
0: नाउ अब इसको भी लेते हैं, हमने देखा थॉट्स के तीन फैक्टर्स है, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम।
1: अब इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस,
0: बिलीफ सिस्टम, राइट। तो अब आपने, उसने मुझे 25 साल पहले ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 25 साल पहले उसको आंसर नहीं किया था माइंड को, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में स्टोर हो गया। तो तीन रॉ मटेरियल जा रहे हैं ना थॉट्स क्रिएट करने के लिए, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में स्टोर हो गया, क्योंकि उसको आंसर नहीं किया था, डिलीट नहीं किया था। अब ये 25 साल में कई बार ये थॉट आ जाएंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। 25 साल में जब भी वो वाला व्यक्ति फिर मिलेगा या कहीं भी उसको कोई रेफरेंस कोई उससे करेगा, कोई उसके बारे में बात करेगा, कहीं आप उसके बारे में पढ़ लेंगे, वो पास्ट एक्सपीरियंस में से थॉट जरूर क्रिएट होगी फिर से। पास्ट एक्सपीरियंस, थॉट, एटीट्यूड, एक्शन, कर्म, डेस्टिनी, कितना इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट स्टेइंग एट पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज कमिंग आउट एट डेस्टिनी, बिकॉज वो पास्ट एक्सपीरियंस रिजोल्व नहीं किया, जब भी याद आई एक पेन यहां क्रिएट हुआ, मतलब चोट पे चोट पे चोट, हम कमजोर होते गए, डेस्टिनी अफेक्ट हो गई।
1: तो इसको कैसे हटाएं ये 25 साल वाली बात?
0: आज ही आंसर दे देते हैं ना, उस व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन सिस्टम अलग,
1: बिलीफ सिस्टम अलग,
0: उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग, उसका रॉ मटेरियल बिल्कुल अलग, उसका फाइनल प्रोडक्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकता। हमें लगता है लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग हमारे से ऐसे बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लोग एक्चुअली हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट बाहर फेंक रहे हैं सारा दिन,
1: वेदर यू स्पीक ऑर नॉट,
0: थ्रू माई वाइब्रेशन, थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई बिहेवियर, इट्स कमिंग आउट, वट एवर इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड हियर इज कमिंग आउट। अब मेरे सामने आप आ जाओ या कोई भी और आ जाए, माई प्रोडक्ट दैट इज कमिंग आउट इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन, इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू वॉट आई एम मैन्युफैक्चरिंग हियर। तो हम जो रेडिएट कर रहे हैं, हम जो बिहेव कर रहे हैं, वो दूसरे के अनुसार या दूसरे के हिसाब से नहीं, वो अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से रेडिएट कर रहे हैं। इसलिए जब हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, लोग नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं, दुनिया नहीं बदलती लेकिन हम बदल गए होते हैं। तो बाकी सब लोग तो सेम हैं, देन व्हाई हैव वी चेंज्ड, बिकॉज वी चेंज समथिंग हियर। अब अगर आपने कहा कि कोई नायलॉन बना रहा है, कोई कॉटन बना रहा है, कोई वुल बना रहा है, अब सपोज चार लोग हैं, अलग अलग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, हमें लगता है मुझे देखकर मेरे सामने इसने नायलॉन क्यों बनाया, मेरे को देखकर नहीं बनाया, वो उसकी फैक्ट्री का वही प्रोडक्ट है और वो बहुत सालों से या शायद बहुत जन्मों से वही प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमें पसंद आए या ना पसंद आए, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, आपका प्रोडक्ट

0: वही है, विच मीन्स अगर आपका बिलीव सिस्टम है कि गुस्से से काम होता है तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में दिन में कई बार गुस्सा आने ही वाला है. इट डजेंट मैटर कि सिचुएशन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं. अब जिस दिन आपने अपना रॉ मटेरियल बदल दिया, ठीक है, उस दिन लोग जो आसपास हैं वो तो सेम ही रहेंगे, उनकी गलतियां भी सेम ही रहेंगी, दुनिया में जो हो रहा है वो भी सेम ही रहेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया. सो योर प्रोडक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पीपल, योर प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर बिलीफ सिस्टम. एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट हेल्दी फॉर अस.
1: तो ये लोगों को मालूम कैसे पड़े कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम हेल्दी है, नहीं है? सबको लगता था आई दिस माय बिलीफ.
0: एनीथिंग व्हिच इज नॉट मेकिंग मी फील नाइस एंड मेकिंग अदर्स फील नाइस नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, सही नहीं, उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा. अब आपने कहा कैसे पता चले कि ये फैक्ट्री का प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक है? अगर वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट लोगों को कंफर्ट और हेल्थ दे रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अगर वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट लोगों की सेहत को खराब कर रहा है तो फिर तो मालिक को सोचना चाहिए ना कि इज इट राइट कि मैं ये बिजनेस करता हूँ.
1: कई लोगों को मैं बोलते सुनता हूँ कि अच्छाई का जमाना नहीं है, मैं अच्छा रहता हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम है अच्छा रहने के लिए, और उसका हमेशा नतीजा ही रॉन्ग निकलता है.
0: तो फिर वो अपने अच्छे बिलीफ सिस्टम को भी कई बार क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको आसपास की फैक्ट्रीज में सेम प्रोडक्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा.
1: तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में टेके रहिए, yes. दूसरे के उसमें नहीं जा सकते.
0: सपोज आप दवा बना रहे हैं आपकी फैक्ट्री में जो सबको सेहत देती है, आप टॉनिक बना रहे हैं जो सबको सेहत देती है, मैं सपोज सिगरेट अल्कोहल बना रही हूँ जो सबकी सेहत खराब करती है, वो मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है. तो अब आप अपने को मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेंगे.
1: ब्यूटिफुल, वेरी नाइस.
0: नहीं, आई एम मेकिंग थिंग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, यू कंटिन्यू मेकिंग थिंग्स विच आर गुड फॉर हेल्थ. ना नाउ यू माइट
1: से ऐसा क्यों किया,
0: बिकॉज उनकी फैक्ट्री में वो ही बनता है ना. हर एक सिर्फ अपनी फैक्ट्री का ही ध्यान रख सकता है ना. अब अगर आपके आसपास सिर्फ मैं नहीं लेकिन सारे आपके आसपास गलत चीज बना रहे हैं, तो भी तो हमें अपनी अच्छी वाली चीज को पकड़ के रखना चाहिए. आज क्यों समाज ऐसे होता गया, हर एक ने दूसरे का प्रोडक्ट देखा और कहा इनका ये इनका ये इनका ये, फिर मैं क्यों ये बनाऊं, मैं भी यही बनाना शुरू कर देता हूं. एंड दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड ईच अदर्स बिलीफ सिस्टम्स विच वर नॉट हेल्दी फॉर अस. फिर हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे आगे फैमिली को गए, बच्चों को गए. जिनके घर में पेरेंट्स सपोज बहुत गुस्सा करते हैं तो उनके बच्चे भी वही सीखेंगे. वो बच्चा अगर सॉफ्ट भी होगा, पीसफुल भी होगा, तो पेरेंट को ही अच्छा नहीं लगेगा. वो उसको सिखाएगा ऐसे नहीं होता, दिस इज नॉट द वे द वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज नाउ नॉट हाउ यू कैन बी. तो एक का बिलीफ सिस्टम कितनों तक पहुंचेगा.
1: इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी परंपरा से, पेरेंट से, ग्रैंडफादर से एक चीज जो चलते आ रही, कब आप उसको कट करो.
0: चेक एंड कैंसिल एनीथिंग व्हिच इज नॉट हेल्दी फॉर अस. Healthy for us means the way we feel, the way the body feels, the way our relationships feel. Feeling hai har cheez ke andar. Agar wahan achha nahi feel ho raha, yahan achha nahi feel ho raha, yahan achha nahi feel ho raha, aur rishton mein achha nahi feel ho raha, some belief system needs to be changed. Jaise aapne us din kaha, life is a competition. It's a belief system. Ab ye ek belief system ne aaj humme se majority ki destiny badal di hai. क्योंकि हमारा जीवन जीने का तरीका बदल गया. एक लाइन से लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन. फिर हम आगे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, तुम्हें फर्स्ट ही आना है. तुम फर्स्ट आए तभी तुम सक्सेसफुल हो, तुम फर्स्ट आए तभी तुम अच्छे हो, तुम फर्स्ट आए. लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन.
1: आई मेट अ मैन, उसका बिलीफ सिस्टम था कि दुनिया झूठ बोलती है. तो वो मैं कुछ भी बात करूं तो वो 10% राइट लेता था 90. आई वॉज फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल. आई सेड कि एम आई हियर टू प्रूव हिम समथिंग? नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं. आई वॉज सो टायर्ड ऑफ इट.
0: क्योंकि ये उनका बिलीफ सिस्टम है. किस आधार से बना, कुड बी सम पास्ट एक्सपीरियंस,
1: बड़ों ने बोला होगा देखो भाई 10% मानो,
0: पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है कई बार, पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है। अब वो बिलीफ सिस्टम उस व्यक्ति की डेस्टिनी पर आज असर डाल रहा है। क्यों? एक, वो व्यक्ति सारा दिन डाउट में जिएगा, कोई भी उससे बात करेगा कुछ भी कहेगा उसको डाउट ही रहेगा हमेशा, ये सच बोल रहा है, ये बात पूरी राइट है, इसने मुझे पूरा बताया। ये एक एक थॉट यहां भी दर्द क्रिएट करेगी क्योंकि डाउट है, वो एक एक डाउट की थॉट शरीर पे भी असर देगी। अब जैसे आपने कहा मुझे उससे बात करके कंफर्टेबल नहीं लगा,
1: अनकंफर्टेबल
0: लगा, तो उसका ये बिलीफ सिस्टम उसके रिश्तों पर भी असर डालने वाला है। आप तो फिर भी पहचान के थे वाइफ के साथ क्या होता होगा, बच्चों के साथ क्या होता होगा, तो रिश्तों पे असर डालेगा। सो एक बिलीफ सिस्टम, दैट्स व्हाई एवरी बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड, एवरी बिलीफ सिस्टम इज अफेक्टिंग आवर डेस्टिनी।
1: अजीब अजीब बिलीफ सिस्टम्स है, आपसे बात करते करते याद आ रहा है किसी का बिलीफ सिस्टम है कि लेट आने से रिस्पेक्ट होता है।
0: सी,
1: आप पार्टी में जल्दी क्यों पहुंच रहे हो, यू शुड बी लिटल लेट, सबसे पहले पहुंच जाओगे। आई मीन एनी वेयर इवन इन शूटिंग, इन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों का बिलीफ सिस्टम था आई एम अ स्टार आई शुड बी लेट।
0: एक एक बिलीफ सिस्टम
1: नेवर एंडिंग है।
0: Yeah, but that's the journey of life.
1: Yeah, but that makes life so complicated to have so many belief system. Why can't we live simple?
0: That is why we find our life complicated today.
1: तो उसको ठीक कैसे करें?
0: Most important, जो सबसे important belief system है जिसके आधार से बहुत सारे belief system create होते हैं।
1: Who am I?
0: Yes. क्योंकि वो मेन है ना, उसके आधार के हिसाब से बहुत सारे और बिलीफ सिस्टम क्रिएट होंगे। जैसे आपने उस दिन शेयर किया आई एम एन एक्टर, ठीक है, आई एम अ फिल्म स्टार, तो अब वो एक बिलीफ सिस्टम और कितने सारे, उसी से ये बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट होगा कि कहीं भी पहुंचना है अगर हम स्टार हैं तो थोड़ा लेट पहुंचना चाहिए, अगर हमें कोई इन्वाइट कर रहा है हम एकदम से कह देंगे हाँ हम फ्री हैं हम आ जाते हैं तो वैल्यू नहीं है।
1: डायरी देख के बोलता हूँ, डायरी देख के बोलता पूछ के बताता हूँ।
0: ये एक एक बिलीफ सिस्टम उस एक बिलीफ सिस्टम से आया।
1: मुझे ये सिखाया जाता था कि फोन आप क्यों उठाते हो, लोग क्या समझेंगे यार फोन उठाते आप एक्टर हो, मैंने कमाल है यार।
0: सो द बिलीफ सिस्टम अबाउट हु एम आई वो हमारे भाग्य तक असर डालेगी, और अगर उसमें हमने राइट आंसर डाल दिया तो बहुत सारे ये जो कॉम्प्लिकेशंस आप कह रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेस प्लांट है हमारा वो बहुत सिंपल, स्ट्रीमलाइंड, इजी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैप्पी एंड हेल्दी बन जाएगा। इस जीवन की यात्रा में इतना कुछ हमने अक्वायर किया है, एंड आप देखें ज्यादातर हम आज देखते हैं कि जितना हम अक्वायर करते जाते हैं उसके साथ हम कहते हैं इनकी अहंकार बहुत बढ़ता जा रहा है।
1: एक्वायर व्हाट?
0: See what all you have acquired in your life? क्या acquire किया है इस जीवन के अंदर?
1: मैंने तो innocence खो दिया।
0: See now this line, मैंने innocence खो दिया, तो खो क्यों दिया? उसकी जगह क्या replace किया? क्या acquire किया जिसकी वजह से innocence खो दिया?
1: नाम किया, पैसा किया, relationships
0: किए, relationships किए और
1: बस
0: पोजिशन अक्वायर किया, प्रॉपर्टी अक्वायर किया, हम बहुत कुछ अक्वायर करते हैं इस जीवन की यात्रा में, लंबी लिस्ट,
1: ढंग किया, मैनिपुलेशन अक्वायर किया।
0: अब ये सारा कुछ जब हमने अक्वायर किया, ये हम यहाँ हैं, एक बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, एक दो महीने का है, उसने अभी कुछ बहुत ज्यादा अक्वायर नहीं किया है, वो तो अभी अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है, ही हैज टू येट स्टार्ट डेवलपिंग दैट कनेक्शन, दैट बॉन्डिंग, तो अभी उसने कुछ बहुत ज्यादा अक्वायर नहीं किया है। उस बच्चे ने क्या अक्वायर किया इस जीवन की यात्रा में? अब धीरे धीरे पेरेंट्स, धीरे धीरे एक्सटेंडेड फैमिली, फिर वो स्कूल जाएगा, फ्रेंड्स, फिर वो धीरे धीरे पढ़ता जाएगा, टीचर्स, सोशल सर्कल, फिर डिग्री अक्वायर की। जैसे हमें डिग्री मिलती है हमारा परिचय बदल जाता है, हु एम आई आंसर बदल जाएगा, उससे पहले हु वॉज आई, आई वॉज समबडीज चाइल्ड, उसके बाद हु एम आई, आई बिकम अ डिग्री, उसके बाद हमें एक डेजिग्नेशन मिलता है, तो अब उसके बाद कोई पूछे परिचय, तो हु एम आई वो मेरी डेजिग्नेशन, मेरा परिचय बन जाती है। अब वो डेजिग्नेशन भी हर एक दो

0: तीन साल के बाद चेंज होती रहती है, हमारा परिचय चेंज होता रहता है। उस प्रोसेस में हमें और लोग मिलते जाते हैं, रिश्ते मिलते हैं। नाउ आई एम समवंस हस्बैंड, समवंस वाइफ, देन आई एम समवंस फादर, समवंस मदर, देन आई एम समवंस ग्रैंडफादर। ये बढ़ता जाता है, लंबी लिस्ट है, वी कीप अक्वायरिंग। लेकिन सब कुछ जो अक्वायर किया इट वॉज ब्यूटिफुल, लेकिन जो जो अक्वायर किया उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया।
1: कई लोगों को कहते हुए ये सुना एयरपोर्ट्स पे, ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कई जगह, आप जानते हो मैं कौन हूँ।
0: तो जैसे ही उन्होंने कहा आप जानते हो मैं कौन हूँ, विच मीन्स योर बिहेवियर शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट आई हैव अक्वायर्ड। मैं कौन हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो ये सारी चीजें जो हमने अक्वायर की, हमने इन चीजों को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। जैसे आपने पिछली बार कहा हु एम आई, अ फिल्म स्टार, तो फिल्म स्टार तो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन हमने अपने प्रोफेशन को क्या बना लिया, आई एम सो एंड सो।
1: दुनिया भी तो यही कहती है, एक्टर जा रहा है।
0: हाँ, दुनिया भी तो यही कहती है, यस।
1: हाँ,
0: तो दुनिया भी तो अक्वायर्ड लेबल्स को ही तो अपनी आइडेंटिटी बना के चल रही है ना।
1: हाँ, तो ये नेचुरल नॉर्मल हो गया है ना।
0: नेचुरल नॉर्मल तो बहुत कुछ हो गया है जो सच्चे नहीं है, वो नेचुरल नॉर्मल हो गया, तभी तो डेस्टिनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी चीजें, फिर हम कहते ईगो। ईगो की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ।
1: ब्यूटीफुल।
0: आई कौन, वो मुझे याद नहीं, कोई और इमेज जो मेरी अपने बारे में बनी उसके साथ मैं अटैच हो गई और उसको ही मैं समझ लिया, वो ईगो है। क्योंकि जब भी उस इमेज को फिर कोई टच करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई उस पर कोई अपना ओपिनियन देगा जो मुझे पसंद नहीं आता, वी विल से उनकी ईगो हर्ट हो गई। क्योंकि वो इमेज जिससे हम अटैच हो गए थे, किसी ने आकर उसको प्रिक किया।
1: इमेज को,
0: इमेज को, मुझे नहीं, इमेज को। आज इस डेफिनेशन को लेते हैं और पूरा दिन इस डेफिनेशन के साथ वर्क करते हैं, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। कितनी इमेजेस हमने अपने बारे में बनाई हुई हैं। मैं कौन, आई एम समबडीज हस्बैंड, सो वाइफ कैसी होनी चाहिए। आई एम समवंस फादर, तो बच्चे कैसे होने चाहिए। सामने वाला कौन, ये बेटा, तो बेटा कैसा होना चाहिए। अगर बेटा वैसा नहीं है, मैं फादर हूं, मेरे से ऐसे बात की, बिकॉज आई एम अटैच टू एन इमेज ऑफ बीइंग अ फादर। देर इज सो मच डिफरेंस, वी आर नॉट कनेक्टिंग पर्सन टू पर्सन, वी आर कनेक्टिंग इमेज टू इमेज। जब हम बात करते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम इमेज दूसरी इमेज से बात कर रहे हैं। सो वी वॉन्ट दैट इमेज टू बी अकॉर्डिंग टू माई इमेज। और जैसे ही वो ऐसा नहीं करेंगे, हम कहेंगे इतना भी नहीं पता कि फादर से कैसे बात करनी चाहिए।
1: बट ये तो नेचुरल है, अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा तो वो वैसे ही मिलेगा जैसे एक प्राइम मिनिस्टर टू अनदर प्राइम मिनिस्टर, नॉट टू हिज प्यून।
0: रिगार्ड, रिगार्ड and protocol for the role. ठीक है, चलो सपोज आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाते हैं आज। आप जाते हैं, ठीक है, सो यू हैव एन अपॉइंटमेंट, आज 10 बजे आपको उनसे मिलना है, राइट? आप अपने घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, द फर्स्ट पर्सन दैट यू मीट इज योर ड्राइवर। ठीक है, आप उससे कैसे बात करते हैं चेक करना, जस्ट एक सीन क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते चाहिए। ठीक है, फिर वो रास्ते में गाड़ी चला रहा है, कहीं उससे कुछ गलती भी हो गई, आप उससे कैसे बात कर रहे हैं। आधे घंटे की ड्राइव के बाद आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, उस बिल्डिंग पर एक सिक्योरिटी गार्ड एंट्रेंस पर गेट पे खड़ा है, वॉचमैन है। वो बहुत प्यार से देखकर स्माइल करके आपको सैल्यूट भी करता है, आप उससे कैसे बात करते हैं। फिर हम आगे जाते हैं, कोई एक रिसेप्शन है या कोई एक ऑफिसर है जो मिलेगा एंट्रेंस पे, हम उससे कैसे बात करते हैं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107

भारत में आज 29 प्रदेश हैं, जिनकी अपनी अपनी भाषा और संस्कृति है। पर अब हम जहां की बात करने जा रहे हैं, वो जगह हर बोली हर त्योहार को दिल से अपना बनाने वाली यानी देश की राजधानी दिल्ली।

दिल्ली एक महानगरीय क्षेत्र है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है, जो कि ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली के बाद बसी थी। ऐतिहासिक महत्व वाला यह महानगरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण व्यापारिक, परिवहन एवं सांस्कृतिक हलचलों से भरा है। दिल्ली देश के उत्तरी मध्य भाग में गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना के दोनों तरफ बसी है। दिल्ली भारत का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ के ऐतिहासिक तथा रमणीक स्थल अपने आप में विशेष हैं। पर्यटन एवं विकास के उद्देश्य से यह आगरा और जयपुर से जुड़ा है। दिल वालों का शहर कहे जाने वाली दिल्ली के इतिहास में संपूर्ण भारत की झलक सदैव मौजूद रही है।

अमीर खुसरो और गालिब की रचनाओं को गुनगुनाती हुई दिल्ली नादिर शाह की लूट की चीखों से सहम भी जाती थी। चांदनी चौक, जामा मस्जिद की संकरी गलियों से गुजरकर चौड़े राजपथ पर 26 जनवरी की परेड को निहारती हुई दिल्ली तीस जनवरी को उन तीन गोलियों की आवाज को नहीं भुला पाती जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में धंस गई थी।

दिल्ली ने दौलताबाद जाने के तुगलकी फरमानों को भी सुना और लाल किले से प्रधानमंत्री के अभिभाषणों पर तालियां भी बजाई। कभी रघुराय ने दिल्ली की रायसीना पहाड़ी को अपने कैमरे में कैद कर लिया तो कभी हुसैन के रंगों ने दिल्ली को रंग दिया। दिल्ली कभी कुतुब मीनार की मंजिलों को चढ़ाने में पसीना बहाती रही तो कभी हुमायूं के मकबरे में पत्थरों को तराशती रही। 9 बार लूटे जाने से भी दिल्ली के श्रृंगार में कोई कमी नहीं आई। आज भी दिल्ली विश्व के सुंदरतम नगरों में गिनी जाती है। अनुश्रुति है कि इसका नाम राजा ढीलू के नाम पर पड़ा, जिसका अधिपत्य ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस क्षेत्र पर था। बिजोला अभिलेखों में उल्लेखित ढिल्ली या ढिल्ल का सबसे पहला लिखित उदाहरण है। महाभारत काल में पांडवों द्वारा बसाया गया इंद्रप्रस्थ नगर आज हमारे देश का हृदय माना जाता है। एक मत के अनुसार दिल्ली का नामकरण फारसी शब्द दहलीज पर पड़ा है, जिसका अर्थ है प्रवेश द्वार। कुछ अन्य लोगों के मतानुसार 8वीं सदी में कन्नौज के राजा दिल्लू के नाम पर इसका नामांकन हुआ है। कई अवसरों पर दिल्ली ने कई साम्राज्यों के पतन में अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे बहुरूपदर्शी भूतकाल में न केवल दिल्ली बल्कि विश्व के महानतम लोकतंत्र की खोज की जा सकती है। महाभारत काल से ही दिल्ली का विशेष उल्लेख रहा है। दिल्ली का शासन एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित होता गया। यहाँ यह मौर्यों से आरंभ होकर पल्लवों तथा मध्य भारत के गुप्तों से होता हुआ 13वीं से 15वीं सदी तक तुर्क और अफगान और अंत में 16वीं सदी में मुगलों के हाथ में पहुंचा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं कुछ और इतिहास की तरफ।

1911 में ब्रिटिशर्स द्वारा कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर दिल्ली सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। दिल्ली के इतिहास में 69वां संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में लागू हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। दिल्ली का पुरातात्विक परिदृश्य अत्यंत दिलचस्प है। सहस्राब्दियों पुराने स्मारक कदम कदम पर खड़े नजर आते हैं। नए या पुराने किलेबंद स्थान पर निर्मित 13 शहरों ने दिल्ली अरावली त्रिकोण के लगभग 180 वर्ग किलोमीटर के एक सीमित क्षेत्र में अपनी मौजूदगी के निशान छोड़े हैं। दिल्ली के बारे में यह किंवदंती प्रचलित है कि जिसने भी यहाँ नया शहर बनाया उसे इसे खोना पड़ा। सबसे पुराना नगर इंद्रप्रस्थ करीब 1400 ईस्वी पूर्व निर्मित किया गया माना जाता है और वेद व्यास रचित महाकाव्य महाभारत में भी इसका वर्णन पांडवों की राजधानी के रूप में मिलता है। इस त्रिकोण में निर्मित दिल्ली का दूसरा शहर है अनंगपुर या आनंदपुर, जिसकी स्थापना लगभग 1020 ईस्वी में तोमर राजपूत नरेश अनंगपाल ने राज निवास के रूप में की थी। यह शहर अर्धवृत्ताकार निर्मित तालाब सूरज कुंड के आसपास बना था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली एक वन जल संभर पर स्थित है, जो गंगा तथा सिंधु नदी प्रणालियों को विभाजित करता है। दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति विशेषता पर्वत स्खंड रिज है, जो राजस्थान प्रांत की प्राचीन अरावली पर्वत श्रेणियों का चरम बिंदु है। अरावली संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, लेकिन अब यह पूरी तरह वृक्ष विहीन हो चुकी है। उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में फैला और तिकोने परकोट की दो भुजाओं जैसा लगने वाला यह स्कंद क्षेत्र 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कछारी मिट्टी के मैदान को आकृति की विविधता देता है तथा दिल्ली को कुछ उत्कृष्ट जीव व वनस्पतियां उपलब्ध कराता है। यमुना नदी त्रिभुजाकार परकोटे का तीसरा किनारा बनाती है। इसी त्रिकोण के भीतर दिल्ली के प्रसिद्ध 7 शहरों की उत्पत्ति ईसा पूर्व 1000 से 17वीं शताब्दी के बीच हुई थी। किसी भी ऐतिहासिक राजधानी की तरह दिल्ली भी वैविध्यपूर्ण केंद्र है, जिसमें प्रशासन, सेवाएं और निर्माण अच्छी तरह मिले जुले हैं।

दिल्ली कला एवं हस्त कौशल की प्रचुर विविधता का केंद्र रहा है। मुगल काल में दिल्ली रत्न और आभूषण, धातु पच्चीकारी, कसीदाकारी, सोने की पच्चीकारी, रेशम और जरी का काम, मीनाकारी और शिल्प मूर्तिकला और चित्रकला के लिए विख्यात थी। दिल्ली का वर्तमान प्रशासकीय महत्व उस समय से है जब भारत का शासन न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी वाणिज्यिक और सेवा केंद्र के रूप में विकसित हो गई। दिल्ली में गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना और मक्का आदि की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन अब किसान अनाज वाली फसलों के बजाय फलों और सब्जियों, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये गतिविधियां खाद्यान्नों फसलों के मुकाबले अधिक लाभदायक साबित हुई हैं।

यदि शिक्षा की बात करें तो दिल्ली भारत को एक उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। यहाँ के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी भारत के सभी भागों से आते हैं। दिल्ली में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान के अनेक केंद्र हैं, लगभग 11 विश्वविद्यालय, अनेक महाविद्यालय, अनगिनत प्राथमिक शिक्षा केंद्र पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। यहाँ कई सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान हैं, जो कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, विधि और प्रबंधन में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत कई कॉलेज एवं शोध संस्थान हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, टेरी ऊर्जा और संसाधन संस्थान एवं जामिया मिलिया इस्लामिया उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं।

0: अलिफ से बोलो क्या होता है?
1: उल्लू।

0: बोलो बाँस से क्या होता है?
1: बंदर
2: बहादुर।
3: बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निजे बाहर।

0: माँ से बोलो क्या होता है।
1: मुर्गा
0: अजूर मस्जिद के

कला के क्षेत्र में भी दिल्ली आगे रहा है। शुरुआत से देखें तो 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली की कला और वहां के रहन सहन पर मुगल सल्तनत का प्रभाव रहा। मुगलों के समय में तुर्की, फारसी और भारतीय कलाओं के मिश्रण ने एक नई कला को जन्म दिया। जामा मस्जिद और लाल किला इसी वक्त में बनाए गए थे। दिल्ली दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है, लेकिन 1911 में नई दिल्ली की स्थापना हुई और ब्रिटिश वास्तुकला ने दिल्ली के किलों और महलों के बीच अपनी जगह बना ली। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन सहित नई दिल्ली को एक आधुनिक रूप दिया। दिल्ली के वैविध्यपूर्ण इतिहास ने विरासत में इसे समृद्ध वास्तुकला दी है। शहर के सबसे प्राचीन भवन सल्तनत काल के हैं और अपनी संरचना व अलंकरण में भिन्नता लिए हुए हैं।

प्राकृतिक रूपांकनों, सर्पाकार बेलों और कुरान केन के अक्षरों के घुमाव में हिंद राजपूत काल के कारीगरों का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। मध्य एशिया से आए कुछ कारीगर कवि और वास्तुकला की सेल्जुक शैली की विशेषताएं, मेहराब की निचली कोर पर कमल कलियों की पंक्ति, उत्कीर्ण अलंकरण और बारी बारी से आड़ी और खड़ी ईंटों की चिनाई है। जब खिलजी का शासनकाल आया तब तक इस्लामी वास्तुकला में प्रयोग तथा सुधार का दौर समाप्त हो चुका था और इस्लामी वास्तुकला में एक विशेष पद्धति और उपशैली स्थापित हो चुकी थी जिसे पख्तून शैली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली एक आकर्षण का पर्यटन स्थल भी है। दिल्ली में मंदिरों से लेकर मॉल तक, किलों से लेकर उद्यान तक और अनेक ऐतिहासिक इमारतें और किले हैं जो इतिहास की जीवंत निशानियां हैं। प्रतिवर्ष लाखों सैलानी दिल्ली आते हैं और यहां की मिश्रित संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली राज्य पर्यटन और परिवहन विकास निगम पर्यटकों को यहां के विभिन्न स्थानों की सैर कराने के लिए विशेष बस सेवाएं चलाता है। निगम ने पैरासेलिंग, पर्वतारोहण और नौकायन जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं

विकसित की हैं। निगम ने दिल्ली हाट का विकास किया है, जहां काफी और विभिन्न राज्यों की खाद्य वस्तुएं एक जगह उपलब्ध हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में ऐसी ही हाट बनाने की योजना है।

मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, झंडे वाला देवी मंदिर, आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च, बंगला साहिब गुरुद्वारा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार, जामा मस्जिद आदि। इसके अलावा दिल्ली घूमने आने वालों के लिए यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख, गांधी स्मृति, हौज खास, पुराना सचिवालय, संसद भवन, बेगम सामरू का महल, कोतवाली, इंडिया गेट, तुगलकाबाद, प्रगति मैदान, दिल्ली हाट आदि। प्रगति मैदान 149 एकड़ क्षेत्र में फैला यह मैदान नए एशिया के सर्वोत्तम प्रदर्शनी स्थलों में से एक है। मथुरा रोड पर पुराने किले से आगे स्थित देश के इस सर्वोत्तम मैदान में 54,685 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले 15 विशाल प्रदर्शनी स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ 10,000 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्र है, जहाँ समय समय पर व्यापारिक प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। दिल्ली हाट, लिटिल इंडिया के दर्शन कराने वाला यह साप्ताहिक बाजार हस्तशिल्प है, व्यंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हस्तशिल्पी एवं भाग लेने वाले बदलते रहते हैं। प्रत्येक हस्तशिल्पी को 2 सप्ताह तक के लिए दी जाने वाली यहाँ कुल 62 स्टॉल हैं, जो क्रमिक रूप से बदलती रहती हैं, ताकि देश विदेश के अधिकतम हस्तशिल्पियों को यहाँ भागीदारी और अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। देश के लगभग सभी प्रांतों के हस्तशिल्पियों को यहाँ पर एक साथ देखा जा सकता है। दिल्ली के स्वाद में पूरा भारत कहीं न कहीं दिखाई देता है। दिल्ली में खाने पीने की बहुत सी दुकानें और भोजनालय हैं। अगर आप दिल्ली जाने वाले हैं तो देश के विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आप दिल्ली हाट का रुख कर सकते हैं। यहाँ देश के लगभग हर राज्य का भोजन मिलता है। कुल मिलाकर दिल्ली में हर तरह के भोजन का जायका लिया जा सकता है। दिल्ली में चांदनी चौक एक जगह है जो फ्रूट चाट, गोलगप्पों, पकौड़ों और बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है। दिल्ली की संस्कृति, यहाँ के लंबे इतिहास और भारत की राजधानी के रूप में ऐतिहासिक स्थिति से पूर्ण प्रभावित रही है। यह शहर में बने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों से ज्ञात है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने दिल्ली शहर में लगभग 1200 धरोहर स्थल घोषित किए हैं, जो कि विश्व में किसी भी शहर से कहीं अधिक हैं। महानगर होने की वजह से दिल्ली में भारत के सभी प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम कुछ वार्षिक उत्सवों का आयोजन भी करते हैं। ये रोशन आरा उत्सव, शालीमार उत्सव, कुतुब उत्सव, शीतकालीन मेला, उद्यान और पर्यटन मेला, जहाने हुसरो उत्सव तथा आम महोत्सव हैं। दिल्ली में बच्चों के मनोरंजन एवं शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क, विज्ञान केंद्र, प्लेनेटेरियम, संग्रहालय और चिड़ियाघर हैं। यहाँ बाल भवन कोटला रोड पर स्थित बाल भवन में बच्चों के लिए नियमित रूप से नाटक, संगीत, चित्रकारी आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल संग्रहालय एवं विज्ञान सेंटर आदि भी यहीं पर स्थित हैं। बच्चों के लिए पुस्तकालय, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, बीसी राय मेमोरियल वाचनालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालय इत्यादि यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली राजधानी होने के कारण कई महत्वपूर्ण खेल कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता आ रहा है।

यहाँ अनेक स्टेडियम भी मौजूद हैं, जैसे कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स, तालकटोरा स्टेडियम आदि। सन 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन भी दिल्ली में किया गया था, जिसे पूरे विश्व में जाना गया। विभिन्न खेलों के लिए आयोजित किए जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन रहा। भारत पूरे 3 दशकों बाद ऐसे किसी आयोजन का मेजबान बना। इससे पहले भारत ने 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी।

दिल्ली का सफर यहीं पूरा हुआ। हमारे साथ यूं ही बने रहिए और चलते रहिए इसी तरह पूरे भारत को जानने, 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में। जय हिंद।

टूटे टिक्कड़ जैसे क्लेवर, कच्ची मूली के स्वाद की सी धूप, तुगलकाबाद के खंडहरों में घास और पत्थरों का संबंध, परछाइयों में कमान, कमान में परछाइयां, खिड़की मस्जिद आंखों को बेधकर सुई की मानन आर पार निकलती जामा मस्जिद की सीढ़ियों की कदाकारी।

पेड़ की जड़ों से अन्न नली तक उठ खड़ा होता कुतुब। चारों ओर महक अनाज की, मांस की, खून की, जेल की, महल की, बीते हुए कल की, सदियों की, सदियों की सांस इस क्षण की आंख, आज की उड़ती है इतिहास में, उतरती है दरार में गालिब की मजार की, भटकती है खान खानान की अधखाई हड्डी की खोज में, और जहां आरा की बदनसीबी को निकल पड़ती है मकबरा दर मकबरा। अभी भी धूल, अभी भी कोहरा, अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया कोई फर्क मांस और पत्थर में। लाल किले की पश्चिम कमान में सोई फाख्ता की योनि की छत से होती हुई घुपती है मेरी आंख में किरण एक सूर्य की।

0: अहो ऐकलंस का? हो आमचा रेडिओ पुणे रे, हो आमचा रेडिओ पुणे रे।
1: नमस्कार, मी मोनाली सावगत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। जैसा कि

0: ही जानते हैं, रामायण को पढ़ने से कुंभकर्ण का जो परिचय मिलता है वह बड़ा ही विचित्र सा है। उसमें लिखा है कि कुंभकर्ण जो है वो रावण का एक भाई था जो 6 महीने सोया करता था और जगाए जाने पर 1 दिन के लिए उठता था और फिर सो जाता था। वास्तव में कुंभकर्ण कोई संज्ञावाचक नाम नहीं है बल्कि एक लक्षणिक नाम है। जिस मनुष्य के कर्ण कुंभ यानी कि घड़े के समान हो वह व्यक्ति कुंभकर्ण है। कुंभ की विशेषता यह है कि उसके मुख के पास यदि आप बोले तो उसमें आवाज जाएगी। हाँ, आवाज तो जाएगी तो सही और थोड़ी गूंजेगी भी, परंतु कुंभ वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। उसमें आपका कहना है कि फलीभूत नहीं होगा। मान लीजिए आप कहते हैं जागो जागो आत्माओं, भगवान अवतरित हो चुके हैं, उनके आत्मी नाता, हाँ उनसे क्या करना है, उनके साथ जो हमारा आत्मिक नाता है उसे जोड़कर सुख शांति के भागी बनो। तो यह कथन कुंभ में जाकर थोड़ा प्रतिध्वनित तो होगा परंतु उसमें धारण नहीं होगी, घड़ा तो वहीं पड़ा रहेगा, उसके लिए जागने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वभाव का है कि कोई अच्छी और लाभदायक बात अथवा ज्ञान का कोई अनमोल रहस्य सुनने पर भी नहीं सुनता, उसे क्रियान्वित अगर हम देखें नहीं करता तो मानो कि वह कुंभकर्ण ही है। एक देखते हैं यहाँ पर, ये भी देखते हैं, चेष्टाहीन बुद्धिहीन आलसी निद्रा प्रिय ही कुंभकर्ण है। अगर किसी मनुष्य की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती तो प्रायः कहा जाता है कि यह मनुष्य पत्थर बुद्धि है। अगर कोई मनुष्य बात को सुनने और समझने पर भी उसे क्रियान्वित नहीं करता है, अपने आचार और व्यवहार में नहीं लाता है तो कहा जाता है कि यह तो जड़ है। अगर कोई मनुष्य बात को सुनकर और समझकर जीवन में गंभीरता पूर्वक व्यवहार करता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि यह तो सागर की तरह गंभीर है। अतः जैसे बुद्धि है, हाँ जैसे बुद्धि की जो शिथिलता होती है उसकी तेज शिथिलता को पत्थर के से उपमा दी जाती है। क्रियाहीनता की तुलना जड़ से की जाती है और गंभीरता की तुलना सागर से की जाती है। वैसे ही मनुष्य बहरा तो न हो परंतु बात को सुनकर भी उस पर निर्णय ले सके, अनसुनी कर दे तो उसके कानों की उपमा कुंभ से की जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: नयन वरदानी हस्त वरदानी, नयन वरदानी हस्त वरदानी, दिव्य मुस्कान सजाए हैं, ममता की मूरत है, स्नेह की सूरत है, पल भर में सबको अपना बनाए हैं, पल भर में सबको अपना बनाए हैं। तेरे साथ हमने ईश्वर का साथ चख लिया, तेरे साथ हमने ईश्वर का साथ चख लिया, तुम्हें नहीं दी विदाई हमने, अपने दिल में है रख लिया, अपने दिल में है रख लिया।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंशुमन अगर जो बात को कर दिया जाता है तो वहाँ पर एक ही शब्द होता है कि कुंभकर्ण है। ऐसा कहकर से हाँ उसकी उपमा हम कुंभ से की जाती है, यानी कि पत्थर के तो देखते हैं कि कान ही नहीं होते हैं, उसमें तो आवाज प्राय जाती ही नहीं, इसलिए कानों की उपमा पत्थर से नहीं की जा सकती। अर्थात किसी व्यक्ति को पत्थर कर्ण नहीं कहा जा सकता। कुंभ की यह विशेषता है कि उसके ऊपर का जो मुख है और उसकी गर्दन की शक्ल यानी कि उसकी आकृति बहुत कुछ मनुष्य के कान से मिलती है, बस शक्ल ही मिलती है, अकल नहीं मिलती। जिसके कान के पर्दे के साथ लगकर अनमोल रहस्य वापस लौट आता है, जैसे कि घड़े के तेंदे के साथ आवाज टकराकर वापस लौट आती है, वह चेष्टाहीन बुद्धिहीन आलसी निद्रा प्रिय जड़ जैसा जो मनुष्य कुंभकर्ण ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देह का अभिमान कई कठिनाई से जगाए जाने पर अगर कुंभकर्ण फिर जाग भी जाता है, जो मनुष्य राम से प्रिय मिलन नहीं मनाना चाहता, नहीं मनाता, बल्कि उसका विरोध करने को उतारू हो जाता है और राम के मिलन को खुमारी में रंग कर मदिरा की मस्ती में चूर रहता है, तमो गुणी नशों में ही लगा रहता है। मन नर भी कुंभकर्ण ही है, वह जागा भी तो क्या जागा, वह सचमुच असुर अथवा राक्षस भी ठहरा। राम का पक्ष लेने की बजाय जो रावण अर्थात असुराई की ओर से लड़ा, वह ईश्वर विमुख मनुष्य सचमुच कुंभकर्ण तो है ही, परंतु असुरी बुद्धि वाला होने के कारण असुर भी कहलाता है। उसे रावण का भाई माना जाता है, क्योंकि रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला और रावण के 10 मुख पुरुष में और स्त्री में 5 विकार जो है काम क्रोध लोभ मोह।

अहंकार की व्याप्ति के प्रतीक है, पांच विकारों का पिता है, देह अभिमान, सुस्ती, निद्रा अथवा आलस्य का पिता है भी देह अभिमान ही है। अतः हम देखते हैं कि एक ही देह देह अभिमान रूपी पिता की संतान होने के कारण कुंभकर्ण को रावण का भाई कहा गया है। यहाँ पर एक चीज हम और देखते हैं कि सुस्ती के शिकार कई महावीर भी हुए हैं। इसी आलस्य निद्रा अथवा तमोगुण के ने कई ऋषियों को, अप्सराओं को तथा कई वानरों को भी खा लिया था। भाव यहाँ पर यह है कि भगवान की खोज करने वाले कई ऋषि भी इससे प्रभावित होकर इस आलस्य के गर्भ में चले गए थे। जो माताएं बहने ज्ञान और योग रूपी वरों द्वारा सूक्ष्म देवताओं के लोक की ओर भी ध्यान में उड़कर चली जाती थी, उसमें से भी कई ऐसे थे जो इस सुस्ती अथवा अति निद्रा रूपी कुंभकर्ण का शिकार हुई थी और राम की सेवा में लगे कई नर भी इस आलस्य रूपी कुंभकर्ण द्वारा हताहत हुए थे। इसलिए आलस्य और निद्रा रूपी यह कुंभकर्ण बहुत ही बलशाली असुर माना गया है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र पद की बजाय निद्रा पद, भला जो मनुष्य ब्रह्मा जी से भी इंद्र पद अर्थात क्या होता है, देवताओं के भी राजा का पद लेने की बजाय निद्रा पद ले गए, आप उसे कुंभकर्ण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी तो सर्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ माने गए हैं, उनका मत उत्तम माना गया है, वे जगत के पिता हैं, अतः अपने प्रजा पिता से तो मनुष्य ज्ञान रूपी वरदान प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है, परंतु उनसे भी कोई निद्रा की प्राप्ति की चेष्टा करे तो वह सचमुच ही असुर ठहरा। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना कि सुग्रीव कौन है। यह जो कहा गया है कि कुंभकर्ण ने सुग्रीव को बंदी बना दिया, भला हा? इसका भला क्या भाव है? ग्रीव का अर्थ है कंठ अथवा गला का, जिसका गला सुंदर हो अर्थात जिसकी वाणी मधुर हो, सुकोमल और हितकर हो, वही सुग्रीव है। जो राम के पक्ष की बात कहने वाला हो, ईश्वरवादी हो, जो अपने कंठ से प्रभु की महिमा गाए, वास्तव में उसी का गला तो सुंदर है। ऐसा नर ही वास्तव में राम के सेवकों का सेनापति है, क्योंकि वह ईश्वर का परिचय देता है, ईश्वर का सहयोगी होकर वर्तता और अपने वाक बल तथा प्रभु प्रीति से असुराई का कुशलता से सामना करता है। ऐसा मनुष्य भी कभी कुंभकर्ण द्वारा बंदी बन जाता है, अर्थात सुस्ती या निद्रा ऐसी चीज है कि इसके सुहावने जाल में ऐसे लोग ही फंस जाते हैं। सुस्ती मनुष्य की मधुर कल्याणकारी को भी बंद कर देती है। तो भाव यह हुआ कि हमें रावण के साथ साथ उसके सहोदर अथवा भाई कुंभकर्ण को भी जलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी कुंभकर्ण जिंदा है। कैसे? हम देखते हैं कि आज भी कुंभकर्ण जिंदा है। हर एक मनुष्य पर आलस्य निद्रा और ईश्वर विमुखता का कुछ न कुछ प्रभाव है, मानो कुंभकर्ण का उनके मन में प्रवेशता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। जैसा कि आज हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार मनुष्यों को जब यह संदेश देते हैं कि जागो जागो, तब परमपिता परमात्मा अवतरित होकर सुख शांति का वरदान दे रहे हैं, तो भी वे जागते नहीं है। उनके कानों में यह आवाज पड़ने पर भी उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भगवान से इंद्रपद का वरदान लेने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि सोए रहते हैं, मानो उन्होंने पित्रा पद का अभिशाप पाया है। वे मधुर कल्याणकारी तथा ईश्वर प्रेम के वचन भी नहीं बोलते, अर्थात उन्होंने सुग्रीव को भी बंदी बना रखा है। वे राम के मिलन का आनंद नहीं मनाते, बल्कि धन की मदिरा अथवा मान शान की मदिरा के 200 घड़े पीने में मस्त रहते हैं। और तो क्या, वे राम का अथवा भगवान का विरोध करते हैं, अर्थात विपरीत बुद्धि की न्यायी बरतते हैं। और जो लोग भगवान के ज्ञान ध्यान में तत्पर हुए राज ऋषि हैं अथवा भगवान के कार्य में लगे हुए वानर सेना है, उन्हें भी मारने को अथवा कष्ट देने को दौड़ते हैं। फिर ऐसे भी तो लोग हैं जो ज्ञान का घोष सुनने पर जागते हैं, परंतु एक दिन जाकर फिर 6 महीने सो जाते हैं, अर्थात 6 महीने तक ज्ञान लेने का अथवा ज्ञान जागृति का नाम भी नहीं लेते। तो क्या यह कहना सत्य नहीं है कि कुंभकर्ण आज भी जिंदा है? यहाँ पर अपने मन को हम टटोल कर देखिए, ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार जो है परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण का स्पष्ट संदेश दे के अतिरिक्त आने वाली जो भी यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की, गृह युद्धों की तथा विश्व युद्ध की भी सूचना देते हैं, परंतु इन सब कुछ सुनकर भी वो अनसुनी कर देते हैं। वे कहते हैं, बहन जी इसमें हमारी रुचि नहीं है, अर्थात अभी हमारे पास समय नहीं है, अर्थात हमें अज्ञान निद्रा में सोए रहने दीजिए। इतना ही नहीं, बल्कि वे तो काम रूपी विष के 200 घड़े भी पीना चाहते हैं। क्या ऐसे नर साक्षात एक एवं साकार रूपी कुंभकर्ण नहीं है? वह समय दूर नहीं है जब ऐसे नर भी विनाश के धमाके सुनकर जागेंगे अवश्य, परंतु उस समय देर हो चुकी होगी और उनके मुख से ये शब्द निकलेंगे, ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रकट भी हुए परंतु हम उतनी देर तक निद्रा में सोए रहे, हमने उनसे इंद्र पद का वरदान न पाया। हाय, हमें जगाया गया परंतु समय पर न जागे। अब हर एक जो भी यहाँ पर श्रोतागण है, उनको चाहिए कि अपने मन को टटोल कर देखें कि कहीं उनके मन भवन की किसी कोने में कुंभकर्ण कहीं सुस्ती निद्रा अज्ञानता अहंकार रूप मद ईश्वर विमुक्ता आदि आदि के रूप में छिपा तो नहीं है, हाँ कहीं बैठा तो नहीं है? यदि छिपा बैठा है तो आज ही रावण की इस भाई का योगाग्नि द्वारा अंतिम संस्कार करके, इसका दाह संस्कार करके

इसे राख कर डाले। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज़।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबों के सफर में। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, और आज के इस कार्यक्रम को बनाएंगे बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत और पी अक्षर वाले गाने ही आपको सुनाने वाले हैं। और आज के कलेक्शन लेकर आई हैं विभा जी, हमारे साथ हैं हमेशा की तरह, तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सनी, आपको भी नमस्कार और खाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार।
0: जी विभा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब की बार मैं बहुत ही प्यार भरे गाने लेके आई हूँ आपके लिए और हमारे श्रोता बड़े आराम से इसको टेक लगा के बैठ जाए और प्यार के साथ इन गानों को सुने, आपको बहुत ही मजा आने वाला है।
0: अच्छा चलिए, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही अच्छे गीत होंगे तभी तो आप बोल रहे हैं। तो आइए अब बहुत ही खूबसूरत गानों का लुत्फ उठाते हैं और आनंद लेते हैं। खुशी होती है जब भी हम लोग अच्छे अच्छे गाना सुनते हैं। कहते हैं कि बात वो कहिए कि जिस बात के 100 पहलू हो, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए।
1: जी, ये पहला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सरस्वती चंद्र का ये गाना है। ये मेरी फेवरेट मूवी है और इसके सभी गाने बेहद बहुत बहुत खूबसूरत गाने हैं। ये सबसे पहला गाना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझ क्या ये तुम्हारे काबिल है। ये इसको नूतन पे पिक्चराइज किया गया है और नूतन फूल के जरिए अपने मंगेतर से जवाब स्वागत कर रही हैं और अपने प्यार का इजहार कर रही हैं और आगे से वो भी ऐसे रिस्पांस दे रहे हैं और कह रहे हैं, प्यार छुपा है खत्म में इतना जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा पास जो तुम मेरे होते।
0: जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा फील हो रहा होगा गाने का नाम सुन के ही। तो चलिए सीधे गाने को सुनते हैं, उसके बाद फिर इस विषय पर बात करते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बात सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, फूल तुम्हें भेजा है खत में। इंदिवर साहब का लिखा, लता मंगेशकर और मुकेश जी का गाया ये खूबसूरत गाना कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा था, सरस्वती चंद्र इस एल्बम से है। कहानी बहुत ही क्लाइमेक्स वाली है, यहाँ पर नूतन पर पिक्चराइज किया गया है और ये गोविंद जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर, इस तरह के जो अवार्ड है इस फिल्म को मिले हैं। और इस फिल्म की कहानी ये है, जो नूतन है उनकी शादी किसी से हीरो से करने के लिए पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन लास्ट में ये होता है कि वो कुछ ऐसी बात आ जाती है कि उनकी शादी तोड़ दी जाती है। और जैसे ही शादी तोड़ दी जाती है तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि फिर उस लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा, तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। और फिर उसके बाद उसकी शादी जो है इमरजेंसी में रातों रात जो है किसी शराबी से वो लोग तय करते हैं और नूतन उसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और फिर कुछ सालों बाद जो हीरो है वापस नूतन के सामने आ जाते हैं। तो इस तरह की ये कहानी इसमें बताई गई है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खाबों के सफर में। विभा जी, अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए?
2: अगला गाना भी सनी बिल्कुल बहुत ही प्यार भरा ये गाना है, फूलों के रंग से दिल की कलम से उसको लिखी रोज पाती। बहुत ही खूबसूरत गाना और किशोर कुमार ने इतनी सरलता से इस गाने को गाया है कि जैसे पानी में भाग, सूदिंग, इतना सूदिंग गाना है ये। गाने में मधुरता है, अपनापन है, मिठास है और साथ रहने की कल्पना भी है इस गाने के लफ्जों में। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
1: बहुत ही सूदिंग गाना आपने याद कराया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आइए इस गाने को सुनते हैं। अभी नीरज साहब का लिखा हुआ है, किशोर दा का गाया हुआ है और सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा प्रेम पुजारी इस एल्बम का ये गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना प्रेम पुजारी का। और यहाँ पर इस फिल्म के कलाकार जो है देवानंद वैदारेमन, शत्रुघ्न सिन्हा और जाहिदा इस फिल्म में काम। फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग बताई गई है। रामदेव नाम का एक किरदार है जो आर्मी में भर्ती हो जाता है और फिर बाद में आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को तोड़ने के या रूल को फॉलो नहीं करने की वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। तो ये कहानी इसमें बताई गई है प्रेम पुजारी में। तो बहुत ही खूबसूरत गाना आपने इस फिल्म का सुना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। जी हाँ, कहते हैं दुनिया खरीद लेगी हर मोड़ पर तुझे, दुनिया खरीद लेगी हर मोड़ पर तुझे, तूने जमीर बेच कर अच्छा नहीं किया। आप सुनाए हैं देवी पुणे आवाज 107.8 FM। अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
1: अगला गाना ये वाला गाना जो नेचर में रहते हैं, जो नेचर को पसंद करते हैं, उनको ये गाना बहुत ही पसंद आएगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार

0: स्वागत है खाबो के सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही सूदिंग गाना आपने सुना। आइए कहते हैं, हम कब तक गैरों की तरह, हम कब तक गैरों की तरह तेरी महफिल में रहे। अपना तो कहो झूठा ही सही, हर बात गवारा हो जाए। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आइए विभा जी, अगला गाना कौन सा आप सुना रहे हैं?
1: अगला गाना भी ऐसे ही बहुत प्रेम में डूबा हुआ गाना है और इसको भी आप ऐसे एंजॉय करेंगे जैसे पिछले गाने को किया था।
0: अच्छा।
1: मीना कुमारी का अपने पति के लिए प्रेम इस गाने में दर्शाया है। पिया ऐसो जियो में समाये गयो रे, कि मैं तन मन के सुध बुध गवाए बैठी। इसमें असीम प्यार है और मीना कुमारी बेहद खूबसूरत लग रही है। अगर उसको आप YouTube पे देखते हुए सुनेंगे, उसमें भी आप ऐसे एंजॉय करते हैं। वो अपने को है और हर आहट पे दिया कि जो उसके पति आ गए हैं। और वो कह रही है, मैंने सिंदूर से मांग अपनी भरी, लोग पसैया के कारण सजाया, इस डर के पी के नजर ना लगे, के पी की नजर ना लगे, झट नैनन में कजरा बिठा लगा बैठी।
0: जी जी जी, चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। और अब बढ़ते हैं गाने की तरफ। और ये गाना जो है साहेब बीबी और गुलाम, जो 1962 में रिलीज हुई थी, इसका है। तो सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही सूदिंग गाना आपने सुना और गाना सुनकर कहीं न कहीं एक अलग फील आता है, जैसे कि खिंचाव है गाने में, एक पकड़ है और बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुनाया विभा जी, एंड थैंक यू सो मच। जी, अगला गाना कौन सा है आपके पिता?
2: अगला गाना मेरे पास है, बहुत ही फेमस फिल्म का ये गाना है, मेहतर मैम पे फिल्माया गया, पिया तो से नैना लागे दे, जाने क्या हो अब आगे दे। और इस फिल्म के सारे गाने बड़े अच्छे थे जैसा मुझे याद आता है। ये सेट के ऊपर गाया गया है गाना, डांस करते हुए, बेहद प्यार भरा गाना है और इसमें भी प्रीतम के प्यार में मस्त नाचती हुई नर्तकी है ये, और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं, उनके हावा बहुत खूबसूरत है इसमें। तुझपे नजर जब आए, जाने क्यों बज उठे कंगना, खनक खन खन खनक खन।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये फिल्म आई थी एक गाइड, और ये फिल्म भी देवानंद और वैदा रेमन पर पिक्चराइज किया गया था। उस जमाने में ये फिल्म जो है बहुत चली और बहुत ही हिट रहा, लोगों ने इसे काफी पसंद किया क्योंकि इस टाइप का जो फिल्म है शायद फर्स्ट टाइम ही आया था और इसको बहुत ही अलग ढंग से पिक्चराइज किया गया था और बहुत ही अच्छा एक्टिंग देवानंद का भी रहा इसमें। देवानंद, वैदा रेमन, लीला चिटनीस, किशोर शाहू पर पिक्चराइज किया गया था। सारे ही गाने हिट है, लेकिन इसमें का जो अभी गाना आप सुनने वाले हैं वो शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो के सफर में। और बहुत ही सूदिंग गाने आप सुन रहे हैं और आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे आज के इस प्रोग्राम को, क्योंकि एक के बाद एक गाना जो है अपने आप में खास था। रिवा जी, आपका कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत है आज का, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी
2: थैंक यू सनी, मैंने कोशिश करी है कि इसमें मिक्स गाने हो, प्रेम हो, प्यार हो, प्रीतम का प्यार है, मंगेतर का प्यार है और पति का प्यार है, सो ये मिक्सर वाले गाने हैं, पर है प्यार ही प्यार है इन गानों में। और अब मैं लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल सॉन्ग।
1: जी जी।
2: पहुँच कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। ये जितेंद्र और आशा पारिक पर फिल्माया गया गाना है, मोटिवेशनल सॉन्ग है। अपनी आंखों के आंसू पहुँच कर मुस्कुराओ, जिंदगी जियो, इसी का इसमें वर्णन है। नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया। ये एक एल्बम आई थी 1970 में, नया रास्ता इसका नाम था। और इस फिल्म में जो कलाकार थे वो सुजीत कुमार, फरीदा जलाल, बलराज सहानी और वीना ने काम किया था। और फिल्म की कहानी थोड़ी सी यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें एक वकील जो है उनकी कहानी पूरी तरह से बताई गई है, वकील पर पिक्चराइज किया गया है। तो आइए नया रास्ता इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना जिसे अभी रिवा जी ने याद कराया है, साहिल दनवी साहब ने लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है और एम दत्ता ने इसे संगीत से सवारा है। तो आइए सुनते हैं इस गाने को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों के सफर को सुन रहे हैं और बहुत ही सूदिंग गाने चल रहे हैं, एक से बढ़कर एक गाने आप तक पहुंच रहे हैं। खुदा तो एक तरफ, खुद से भी खौसो दूर होता है। इंसान जिस वक्त ताकत के नशे में चूर होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: मेरे पास है पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुझे नींद न आई। ये बहुत ही दुख भरा गाना है। अशोक कुमार का एक डिफरेंट तरह का रोल है इसमें। वो सिंगर है, बहुत ही अच्छे सिंगर है, लेकिन इसमें काले और गोरे का भेद बताया गया है। उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है बहुत ही डार्क है, सांवला नहीं पर डार्क है। तो वो उनकी आवाज अच्छी होने के बाद भी सोसाइटी में उनको वो चीजें मिलती जो मिलनी चाहिए, तो उनके अंदर एक दुख है। और इस गाने में एक अलग तरह की पीड़ा का अनुभव है
1: जी जी।
2: और ये सितार बजाते हुए गाना गा रहे हैं। उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तरपत तरसत उम्र गवाई।
1: जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये फिल्म आई थी मेरी सूरत तेरी आंखें, 1960 का ये फिल्म था। कहानी जैसे आपने कहा उसी तरह का है। राजकुमार नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको एक लड़का पैदा होता है और लड़का पैदा होते ही बदसूरत पैदा हो जाता है और उसका नौकर उसे बता देता है। तो वो जैसे ही बता देता है तो ये बड़ा परेशान हो जाता है और कुछ समय के बाद नौकर को कहता है कि ये बच्चे को तुम पाल लेना। तो इस तरह से वो नौकर जो है उस बच्चे को पालता है और कई सालों के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे ये पता चल जाता है कि मेरे पिताजी ने बचपन में ही मुझे किसी और को सौंप दिया था। तो इस तरह की ये कहानी है, इसलिए नाम भी ऐसा लिखा है, मेरी सूरत तेरी आंखें। तो इस फिल्म के कलाकार हैं आशा पारेख, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और कन्हैया लाल। तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो के सफर में। और बहुत ही सूदिंग गाना आप सुन रहे थे, दर्द भरा गाना था और शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ था, मन्ना डे का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, मेरी सूरत तेरी आंखें का आप सुन रहे थे गाना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभा जी, लास्ट मेरे ख्याल से गाना है आपके पास इस एपिसोड का, क्योंकि वक्त हो गया है इजाजत लेने का, तो मैं चाहूंगा कि आखिरी गाना कौन सा है आपके पास।
2: जी सनी, अब मेरे पास आखिरी गाना जो है ये भक्ति गीत है। प्रभु तेरो नाम जो ध्याय फल पाए, सुखलाए तेरो नाम। ये नंदा पे फिल्माया गया है। नंदा पूरी भक्ति में डूबी हुई है, प्रभु का गुणगान कर रही है।
1: अच्छा,
2: तो ये गीत मन को बिल्कुल शांत करने वाला गाना है और इसमें विनती भी वो कर रही है। बस जाए मोरा सुना अंगना, खिल जाए मुरझाया कंगना, जीवन में रसाए जीवन धन मिल जाए। बहुत ही खूबसूरत विनती है, इसमें भक्ति है और प्यार है और बिल्कुल सादगी से गाया गया है, भक्ति गीत है।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने, आखिरी वाला भी भक्ति गीत है लेकिन बहुत ही अच्छा है। और साहिल जानवी साहब का लिखा हुआ है, लता मंगेशकर का गाया हुआ, जयदेव साहब का संगीत से सजा, हम दोनों फिल्म का है जो 1961 में रिलीज हुई थी। ये भी एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है और इसमें डबल रोल है। दो सैनिकों की कहानी है, दोनों भी एक जैसे दिखते हैं, तो इसमें ये क्लाइमैक्स है। तो इस फिल्म के कलाकार है देवानंद, नंदा, साधना और ललिता पवार। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और इसी के साथ हम लोग चाहेंगे आपसे इजाजत। एंड विभा जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारे गाने आपने सुनाए आज के इस एपिसोड में।
2: थैंक यू आपका भी सनी और हमारे श्रोताओं का भी, और जो ने मिक्स गाने इसीलिए लेके आते हैं ताकि सभी इसमें इसका आनंद लें। इसमें खुशियां भी हैं, मोटिवेशनल भी हैं गाने और भक्ति वाले भी गाने हैं। मिक्सर इसलिए लेके आते हैं ताकि आप सभी इसको एंजॉय कर पाएं।

0: और हम भी आपके साथ बैठ के इसको एंजॉय करते हैं और सबका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। और जाते जाते चार लाइनें आपके लिए खास। मेरा हर लम्हा चुराया आपने, मेरा हर लम्हा चुराया आपने, आंखों को एक ख्वाब दिखाया आपने, हमें जिंदगी दी किसी और ने, पर प्यार से जीना सिखाया आपने। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज। चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इस वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो,
0: खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी ये
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।
6: नमस्कार श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आणि तुम्ही आरजे कैलास सोबत आहात। हा खेळ शब्दांचा या कविता व चारोळ्यांच्या शो मध्ये आपण समजूत या विषयाच्या अनुषंगानं मागील शो मध्ये बोललेलो होतो। आज सुद्धा आपण त्याच शब्दाच्या अनुषंगानं बोलणार आहोत। खूप आपल्याला माहित आहे की समजूत हा शब्द जो आहे तो हळवा आहे, कठोर आहे आणि त्याला वेगवेगळे भाव आहेत, नाही का? तो शब्द नेमका कशा कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मान्यवरांनी

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: शादी है मोती चूर के लड्डू,

रोज क्लब में उसका मिलना, देकर हाथ हाथ में चलना। रोज समुंदर में

फर्श से सुलाऊं, फर्श पहुंचा हाय उसे उठाऊं, आतरी चड्डी उतारूं, किसे नहलाऊं हाय और किसे खिलाऊं, बोलो कहां

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद घ्या.
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद.

विवेकानंद के बचपन की कथाओं में उनका साहस, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्रनाथ के संबंध में ये बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर देह थी, दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्जवल थे, गौर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुख मंडल पर प्रतिभा की दीप्ति, देखते ही प्यार करने की इच्छा होती।

बचपन में नरेंद्र को अपने साथियों के साथ शिव का ध्यान करने का खेल बहुत पसंद था। उनके साथी भी उनके साथ बदन पर राख मलकर आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन सब बच्चे ऐसा ही खेल रहे थे, अचानक एक बच्चे ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए है। उस बच्चे के मुंह से चीख निकल गई।

0: पर नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा, वो वहीं बैठा रहा। बच्चों की चीख पुकार सुन बड़े बुजुर्ग दौड़े आए। उन लोगों ने आकर अत्यंत भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है और उसके सामने विषैला सांप भयंकर फन फैलाए डोल रहा है। देखकर प्राण सूख गए, सांसें थम गईं। आवाज करने पर सांप बालक को डस सकता था। इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो सांप स्वयं ही कहीं चला गया। ढूंढने पर भी वो सांप नहीं मिला। माता बेटे से लिपट गई और कहने लगी,
1: बेटा बेटा बिले, तू ठीक तो है ना? तेरे दोस्तों ने तुझे इतना जगाया, तू उनके साथ भागा क्यों नहीं? बोल बोल, तू भागा क्यों नहीं?
2: क्या हुआ माँ, तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? तुम लोग रो क्यों रहे हो? ए ए ए निताई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ?
1: बिले, तुझे क्या सचमुच होश नहीं था? अरे इतना बड़ा सांप तेरे सामने फुफकार रहा था और तू आंखें मूंद कर बैठा था। बोल,
2: सांप कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
1: हे भगवान, हे शिव शंकर, आज तुमने मेरी बेटे की रक्षा की है। भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखना देव।

0: नरेंद्र बचपन से ही अपने हम उम्र साथियों के साथ नई नई जगह जाने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वो मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे जाकर दीप जलाकर पानी में बहा देने की बात हो या कोई मेला देखने जाना हो। दूसरों की मदद के लिए बालक नरेंद्र हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे, अपने दल बल के साथ चैत्र संक्रांति में होने वाले शिवजी का मेला, जिसे गाजन का मेला कहते हैं, देखने गए थे। लौटने में शाम हो गई थी। नरेंद्र मेले से खरीदी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे थे। कुछ साथी पीछे रह गए थे। अचानक पीछे शोरगुल सुनकर नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। उसका एक दोस्त हक्का बक्का सा सड़क के बीचों बीच खड़ा है और एक बग्घी तेजी से उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। कोचवान घोड़े का रास पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, पर घोड़ा है कि बड़ा ही चला आ रहा है।
1: ए बच्चा, हट जा रे, हट जा, हट जा, हट जा, देख नहीं रहा, घोड़ा बेकाबू हो गया है, हटो, हटो सब, हट जाओ यहाँ से।
2: अरे गया, ये तो गया, अरे गया,
0: सब चिल्ला रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर उस बच्चे को बचाने नहीं आ रहा था। नरेंद्र ने देखा, झट हाथ में धरी मूर्ति को किनारे पर रखा और बीच सड़क पर कूदकर अपने साथी को एक झटके से किनारे खींच लिया। बग्घी तेजी से निकल गई। भीड़ अवाक होकर देखती रही।
3: क्या कर रहा था बीच सड़क में? मरना था क्या? अब रो क्यों रहा है? वो घोड़ा तो गया। चल अब घर चल। ले ले मेरा हाथ पकड़। अरे अरे रुक तो जरा, मेरी मूर्ति तो उठा लूं। अब चल।
4: शाबाश बेटे, तुमने तो उसकी जान बचा ली, ना जाने क्या हो जाता आज।
5: वाह, बहुत बहादुर हो, किसके बेटे हो भाई?
3: विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ, अब खड़ा क्यों है, चल ना।
0: घर आकर नरेंद्र ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ सांस रोककर सारी घटना सुनती रही, फिर बार बार भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती रही।
6: हे भगवान, हे शिव शंकर, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया भगवान। बिले, आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था तुझे अंदाजा भी है? तुम दोनों को वो घोड़ा कुचल भी सकता था बेटा।
3: माँ, मैंने अपने दोस्त को बचाकर क्या कोई गलती की?
6: ओह मेरे वीर पुत्र, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, पर माँ का दिल है ना, हमेशा डर लगा रहता है। बेटा, तुमने तो सच्चे इंसान का काम किया है, हमेशा ऐसे ही इंसान बने रहना। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, उस बच्चे की माँ आज तुम्हें कितना आशीर्वाद दे रही होंगी। कितना आशीर्वाद आज मिला है तुझे। ओह बेटा, बेटा मेरा, राजा बेटा, राजा बेटा मेरा।

0: नरेंद्र के साहस और तत्परता के कई किस्से हैं। एक बार जब वे 7-8 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ नाव से चांदपाल घाट से मटिया बुर्ज स्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का चिड़ियाघर देखने गए। लौटते समय एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने नाव में उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर मल्लाहों ने उस लड़के को नाव साफ करने को कहा। लड़के ने किसी दूसरे से नाव साफ करवा लेने की बात कही, दुगना भाड़ा देने का वादा भी किया, पर मल्लाहों ने जिद नहीं छोड़ी, गाली गलौज करने लगे और किनारे पर आकर कहा,
1: ए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले नाव साफ करो फिर किनारे लगाएंगे, किसी को उतरने भी नहीं दूंगा।
2: बात झगड़ा और मारपीट में बदलने की नौबत आ गई। घाट के दूसरे मल्लाहों को भी इन मल्लाहों का साथ देते देख लड़के घबरा गए। नरेन उन सभी से उम्र में छोटा था, पर वो छलांग लगाकर किनारे पर आ गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने दो गोरे अफसरों को उधर आते देखा। नरेन बिना घबराए उनकी तरफ दौड़ा और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा,
3: कम, सेव बोट, फ्रेंड्स, सेव।
2: गोरों ने परिस्थिति भांप ली और इस सुदर्शन बालक को स्नेह पूर्वक अंग्रेजी में कहा,
1: ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर।
2: गोरों का हाथ पकड़कर नाव की ओर ले चले। गोरों को देखकर ही मल्लाह डर गए और बिना कुछ कहे नाव किनारे लगा दी। बच्चे उतर गए। गोरों ने प्रसन्न होकर नरेन को प्यार से कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाना चाहा, पर नरेन उसने मना कर दिया और कहा,
1: ओके किड, नाइस टू मीट यू, यू आर सच अ ब्रेव बॉय।
3: थैंक यू, लेट मदर, वेट, गोइंग,
4: बाय बाय,
3: थैंक यू।
2: और साथियों के साथ घर लौट आए।
0: एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगी। नरेंद्र जब 12 साल के थे, तब इंग्लैंड के भावी राजा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में सम्राट सप्तम एडवर्ड कहलाए, भारत दर्शन के लिए आए थे। उसी समय सेरापिस नाम का एक विराट जंगी जहाज कलकत्ते के बंदरगाह में आ रुका। नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे उस जहाज को देखने जाएंगे, पर उसे तो यूं ही नहीं देखा जा सकता। चौरंगी क्षेत्र में एक साहब अफसर के दफ्तर से अनुमति पत्र निकलवाना होगा, तभी जहाज में चढ़ा जा सकेगा।
2: नरेंद्र दलबल समेत चौरंगी पहुँचे, दफ्तर ढूंढ निकाला। सामने ही एक विशाल काय मूंछ वाला दरबान बैठा था। उसने बच्चों की टोली से पूछा,

बचपन से ही नरेंद्र अपने हम उम्र साथियों के साथ तरह तरह के खेल और दूसरे बाल सुलभ क्रियाकलापों में जुटे रहते। हमेशा वे ही इन सभी आयोजनों के

0: नेता होते। उनका नेतृत्व गुण बचपन से ही देखा गया था। उनसे उम्र में बड़े बच्चे भी उन्हें निर्विवाद नेता मान लेते थे। वे अपने दल के साथ कभी घूमने जाते, कभी खाना पकाने का खेल खेलते, कभी घर के आंगन में ही नाटकों का मंचन करते। ज्यादातर रामायण या महाभारत के प्रसंगों का खुद ही नाट्य रूपांतर करते और साथियों के साथ मिलकर मंचन करते।
1: हनुमान जी के प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। वे अक्सर लंका दहन, गंधमार्दन पर्वत कंधे पर ले आना, अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात आदि प्रसंगों का मंचन किया करते थे। और शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि वे खुद हनुमान की भूमिका में होते थे। एक लंबी सी पूंछ लगाकर हनुमान जी की नकल करते हुए वे उछलते कूदते रहते थे।
2: अरे दुष्ट रावण, तेरी ये हिम्मत, तूने श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण किया। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे अपनी सोने की लंका पर बहुत गर्व है ना? ले, अब बचा ले इसे। आज मैं तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। देखूं कौन रोकता है मुझे।
3: अरे अरे इसने तो
4: ऊपर बच्चे जाएगा कहाँ?
3: वो देखो कूद कर उधर चला गया।
5: हाय हाय, सबको जला दिया उसने।
2: आओ पकड़ो मुझे। क्यों रावण महाराज, कैसा लग रहा है?
3: मेघनाथ कहाँ है? कुंभकर्ण को बुलाओ। सब वीर योद्धा गण क्या सो रहे हैं? अरे कोई तो मेरी लंका को बचाओ, बचाओ, बचाओ।
2: ये रही तेरी जलती हुई पूंछ, रख ले इसे। मैं तो अपनी पूंछ लेके ये चला।
1: और भी कई प्रकार के खेल थे। उन दिनों कलकत्ते में गैस बत्ती आई थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। अंग्रेजों ने सोडा लेमोनेट बनाना भी शुरू किया था। नरेन को लेमोनेट पीना बहुत अच्छा लगता था, सो उन्होंने घर के आंगन में ही गैस और सोडा लेमन का कारखाना बनाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। कलपुर्जे नुमा कबाड़ इकट्ठा करके कारखाना खुल गया। पुराने जस्ते के नल, मिट्टी की हांडी और घास फूस के साथ गैस घर का निर्माण हुआ। घास फूस के जलते ही धुआं होता और नल से होकर ऊपर उठता। नरेन कमर पर हाथ रखकर कुछ दूर खड़े होकर गंभीर दृष्टि से सब कुछ देखते और अपने आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते। दूसरे बच्चे भी ताली बजा बजा कर आनंदित होते और नरेंद्र को शाबाशी देते।
6: अरे नरेन, ये तो सचमुच का कारखाना बन गया रे, पर सोडा लेमोनेट कैसे बनेगा?
2: जरा चुप तो रहो, मुझे सोचने दो। इस हांडी में पानी लाओ, इसे गैस के पाइप से बांधो।
6: क्यों नरेन, ये बाजार वाले लेमोनेट जैसा ही होगा ना, मीठा मीठा।
2: होगा तो वैसे ही। अरे अरे, गैस कम क्यों निकल रही है? और आग दो, आग दो, घास डालो और अब फूको, फूंक लगाओ। अरे जोर से लगाओ, जोर से, और जोर से लगाओ।
1: वाह रे नरेन, धन्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति।
0: एक बार नरेंद्र ने सर्कस देखने के बाद घर पर ही ट्रेपेज बनाने की ठानी। ट्रेपेज का खेल उन्हें बहुत पसंद आया था। कैसे खिलाड़ी हवा में झूलते हैं, छलांग लगाकर दूसरे झूले को पकड़ लेते हैं। बस सोचने भर की देर थी। साथियों को बुलाकर कहीं से रस्सी ले आए और बगीचे के पेड़ पर ट्रेपेज का झूला बांधने लगे। जितना काम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा हंगामा मच रहा था। देखते देखते बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की हरकतें देख लोग मजा ले रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था। बच्चे परेशान

0: हो रहे थे। वे ट्रैपेज बांध नहीं पा रहे थे। इतने में नरेंद्र की नजर एक अंग्रेज पर पड़ी। वह हट्टा कट्टा जवान था, शायद किसी जहाज में नाविक का काम करता होगा, क्योंकि वह वैसे ही पोशाक पहने हुए था। नरेंद्र उनके पास जाकर बोला,
1: सेलर।
2: यस सर।
1: हेल्प।
2: ओके।
3: वो अंग्रेज ऊपर चढ़कर झूला टांगने में मदद करने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जमीन पे आ गिरा।
2: ओह माय गॉड।
3: वो बेहोश हो गया था। उसके सिर से खून बह रहा था। सब लोग थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए। फिर सब ने एक साथ बोलना शुरू किया।
4: अरे इसका तो सिर फट गया।
5: मर तो नहीं गया?
4: क्या पता, हिलडुल भी तो नहीं रहा।
5: तो अब क्या होगा?
4: होगा क्या, पुलिस आएगी और इन बच्चों को पकड़कर ले जाएगी।
5: ए पुलिस, अरे भागो भैया, पुलिस की झंझट में कौन पड़ेगा।
4: हाँ हाँ, तुम सच बोलते हो, चलो चलो भागते हैं।
5: भागो, भागो, भागो, भागो।
0: देखते ही देखते सब भाग गए। बच्चे रोने लगे। नरेन आगे आया।
6: ए ए, कोई पानी लाओ, तुम मेरी मदद करो। मैं अपनी धोती फाड़कर पट्टी बना देता हूँ। जरा इनका सर पकड़ तो लो, मैं पट्टी बांध लेता हूँ।
7: बच्चों ने मिलकर उनका घाव धोकर पट्टी बांधी, मुंह पर पानी का छींटा दिया। थोड़ी देर में उस अंग्रेज को होश आ गया। कुछ देर तक आराम करके वह उठ बैठा। नरेन उसे पास वाले कमरे में ले गए, घर के बड़ों को बुलाया और डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की। नरेंद्र ने परिवार वालों से मांग कर उसे कुछ पैसे भी दिए। वह धन्यवाद देकर चला गया।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज अर्थात 107.8 FM, आणि तुम्ही आहात आरजे जगदीश सोबत रंगतदार आणि बहारदार कार्यक्रमात अलगची झलक मध्ये। अलग तुमची

जान है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब है।

पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो, मेरे खेत की मट्टी ने सोने

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। स्वागत है आप सभी का हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 8वें अध्याय में। हम जानेंगे अलंकार माधुरी, वह कला जिसमें श्री कृष्ण के अलंकार, उनके आभूषण और श्रृंगार

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अलंकार माधुरी का परिचय होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। कृष्ण का श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं था, बल्कि उनकी दिव्यता का प्रतीक था। उनके मुकुट में मोर पंख, गले में वनमाला और हाथों में कंगन, ये सब उनके प्रेम और करुणा की झलक दिखाते थे। उनके अलंकारों की मधुरता ने वृंदावन को सौंदर्य और भक्ति से भर दिया था। तो दोस्तों, सुनते हैं इसी के साथ एक भक्ति।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब कृष्ण गोपियों के बीच आते तो उनके अलंकारों की चमक से वातावरण आलोकित हो जाता। गोपियाँ उनके वनमाला और मोर पंख को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। राधा के लिए तो कृष्ण का हर अलंकार प्रेम का प्रतीक था। मोर पंख उनके हृदय की शोभा, वनमाला उनके प्रेम की गहराई थी। तो दोस्तों, इस गहराई के साथ सुनते हैं हम एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, अलंकार माधुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन के अलंकार केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब है। जब हम अपने जीवन को प्रेम, करुणा और भक्ति से सजाते हैं तो वही सच्चा अलंकार बन जाता है। कृष्ण के अलंकार हमें ये संदेश देते हैं कि सौंदर्य का मूल स्रोत ईश्वर का प्रेम है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, माल्य नुपुर हरे न लस दान माले हरी, अर्थात हरी वनमाला हर और नुपुर से अलंकृत होकर अद्भुत शोभा बाते है। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर के अलंकार केवल आभूषण नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा संगीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यह थी आठवीं कला अलंकार माधुरी। यह कला में सिखाती है कि जीवन का सच्चा अलंकार प्रेम और भक्ति है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की नवी कला चित्र माधुरी, यानी उनके चित्रों और रूप की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टेकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टेकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती है। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत से हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है, क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? लोगों
1: का एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल बिकॉज जहां जहां भी आप जितने भी लोगों से मिलते तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि परिवार वो ही होता है जहां हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहने, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहाँ, कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहां परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। यू नो, बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है, एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी, तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज करना शुरू किया तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो। यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट टुमारो, एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहां इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो, अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स। सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है, वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय अपने को देख, बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है।
0: और सबसे बड़ी बात वो आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा मैं अपने आप को देख सकता हूँ, यू नो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अच्छा जरूर लगता है लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है। तो ये इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपको हम यही कहना चाहेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं आप, नहीं जानते थे, तो इस पूरे बातचीत के दौरान आप तक वो बात जरूर पहुंचेगी। बात हम यही करते हैं शिवानी, यहीं से शुरू करते हैं कि
1: सिचुएशंस
0: समझ में आ गई थी, जिंदगी समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं जिम्मेदार हूं अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम

0: सिचुएशंस को देख रहे होते हैं और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आने वाला दौर चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें तो बहुत तेजी से बदल रहा है। हम तैयार ही नहीं होते हैं और मतलब हमने अपनी आपको बड़े मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है या कैसे तैयारी करनी है?
1: वी कैन नॉट डिनाई कि चैलेंजेस आर गेटिंग बिगर डे बाय डे। कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना बड़ी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। लेट्स टेक अ लिटिल थिंग के व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है। सिचुएशन जो हो चुकी है, परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूं जो मुझे लगता है हो जाएंगी,
0: हाँ, होने वाली है,
1: ये शायद मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है तो अभी जॉब है, तो जॉब इज वेरी नाइसली देयर एवरी डे, बट द थॉट, सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिचुएशन इवन दो द सिचुएशन इज नॉट देयर। तो knowing how to face the situation, लेकिन what are the situations we are talking about? Because हमारे जीवन के दो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हैं, एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है, इट्स दैट लाइफ। तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, नाउ यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू, अगर हम अपनी वर्क लाइफ कर्म उस क्षेत्र को देखें जहां हम रोज कार्य करने जाते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस फॉर यू?
0: The top challenges or the situations?
1: Situations, challenge, उसको challenge बोले, problem बोले, situation बोले, whatever. Because situation तो वही है, आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो depend करता है।
0: See, अगर आप मुझसे personally पूछते, मतलब like you're asking me,
1: in general,
0: मतलब generally, जो अगर एक media person के रूप में भी, तो ये क्या, मैं freelancer. So recession का ये दौर, जहाँ already जिनकी fixed jobs हैं, उनको problem आने वाली है, तो I have this continuous thing that it's okay. Right now I have work, but what will happen next? Because how recession is going to hit, recession kaise hit karega media ko, hum nahi jante.
1: Hume nahi pata. And it's not necessary media, it's for everybody. Like, if you look at it even globally, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे hit नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा level है society में जो इससे hit नहीं हुआ है, चाहे आप you're talking about the top level of society or you're talking absolutely the simple labor, even the labor going for construction work today is stuck, you know? तो आप एक पूरे spectrum को cover कर रहे हैं जिसमें job, recession, for आर्थिक परिस्थिति,
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर लिया,
1: दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी
0: अच्छा,
1: हो गई,
0: और फिर मेरा जॉब जहां है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पर डिपेंड कर रहा है।
1: तो माय बॉस, माय कोलीग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस। देन ट्रांसफरेबल जॉब, चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं, सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क। चैलेंजेस एट होम,
0: ओह, यू आस्किंग मी,
1: एवरीवन,
0: बेसिकली बहुत ज्यादा सिचुएशन। अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे
1: पाए, बिग थिंग,
0: मेजर
1: इन मेनी प्रोग्राम्स, वेर एवर आई आस्क्ड पीपल व्हाट्स योर टॉप कंसर्न, कहते हैं पेरेंटिंग। ऐसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका
0: लगा लिया हमने ऊपर, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का, आजकल का जनरल जो ये है, मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने। देन रिलेशनशिप्स, सिंगल पेरेंट, इफ यू आर, यू नो, इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में
1: डिवोर्स केस भी बहुत बढ़ रहा
0: है, मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही
1: है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
0: और उसका पेन,
1: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है, लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड किसी पेरेंट के लिए, या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक जिसमें हमें लगता है कि ये

0: स्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रह गया, यू नो. सो दैट सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग.
1: यस,
0: क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी, यू नो आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैं खुश हो ही कैसे सकता हूं, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आपको आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
1: यू हैव टू गो,
0: पीपल आर नॉट एबल टू टेक.
1: और वो एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन सीप इन करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है.
0: तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
1: लंबा, हाँ
0: लंबा प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर, इन सभी परिस्थितियों में अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है. इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है?
1: मैं
0: तो कॉमन है. क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में जो कॉमन है, हर परिस्थिति में है?
1: चेंज.
0: सी दैट्स ऑल परिवर्तन. एंड लाइक यू सेड, वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा
1: कम्फर्ट जोन
0: हर परिस्थिति एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चेंज है. यू नो द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज, चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज चाहे फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से अब तो आप वैसे रहे हैं, तो चेंज. या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं हैं, चेंज. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज. सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज. एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी आर Somehow, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा था,
1: तभी हमें
0: लेकिन हम एडजस्ट कर चुके थे, यू नो हम एडजस्ट कर चुके थे और हमें उसके साथ जीने की एक आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, लेट्स लुक एट योर सेल्फ, यूर स्टैंडिंग दैट साइड.
1: लेकिन चेंज के लिए एक और चीज, जो अगर आप चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड, यू नो लाइक इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड.
0: चेंज इज चेंज, हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट.
1: या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: जो यहां से चेंज आया, सी चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना, चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी पोजिशन, चेंज बाहर से आ रहा है. गुड और बैड किस पे डिपेंड करता है?
1: मुझ पे.
0: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट वन मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग. माई कंट्रोल
1: नहीं.
0: वॉट इज इन माई कंट्रोल? चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं,
1: उसको हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है.
0: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, है ना. आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने, जब तक बने तब तक वी आर स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल? Not in your control. What is in my control in every case? क्या control में है और क्या control में नहीं है?
1: Even my thought process, see, I would have said,
0: yes.
1: लेकिन वो भी तो control में

0: था हाँ। क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा, आई नो समबडी जिसको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा। उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था। वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है।
1: एग्जैक्टली वही हुआ ना, ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया। सपोज मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया, लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ,
0: कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन,
1: बिकॉज फाइनली। लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि वॉट इज इन माई कंट्रोल, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे, टॉक अबाउट सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए, कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा?
0: हमारा।
1: ये किसने क्रिएट किया था?
0: हमने खुद।
1: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन, लेकिन ये जो लॉस किया ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इंटू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो इंटू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या यू नो हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया। अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहूं और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता?
0: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ही चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है, मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी
1: फर्स्ट, आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। इफ आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मी, एंड मे बी यू आर इन योर ओन पेन। You see, so for me to expect कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही। तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी yes the situation is very big, question is कि अभी भी मेरे control में क्या है, मैं सारी अपनी attention उस पर focus कर दूं। It's like मेरी एक चीज तो चली गई लेकिन तीन चीजें तो बची है ना। लेकिन क्योंकि मैं वो तीन चीजों का ध्यान न रख कर,
0: कि वो तो है ही,
1: हाँ, फॉर ग्रांटेड उनको लगती हूँ, आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया गया, साथ में कितना और नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर, सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर, क्यों हुआ, नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम। सोल्यूशन हर परिस्थिति में है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है। यस इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में, और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? जब माइंड थोड़ा सा नहीं तो मैं अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई देगा? दर्द में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, और जितना दर्द बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी उतना हम सोल्यूशन से दूर होते जाएंगे। परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पज ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माई स्टेट ऑफ बींग, उस पर जैसे ही जाता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन? लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूं, इतनी दर्द में चली जाती हूं, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ।
0: इनफैक्ट यहाँ तो मुझे भी लगने लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए। द वे यू सेड इट्स ओनली अ चेंज,
1: इट्स ओनली अ चेंज, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ चैलेंज, उसको चैलेंज आप बोलो, बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप

0: मैं भी तो चेंज होनी चाहिए.
1: रिस्पॉन्स एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स फ्रॉम यू, रिएक्शन.
0: अच्छा एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड. क्वेश्चन था आपके लोगों के लिए, सो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना चाहेंगे.
1: चेंज व्हेन विल इट बी फॉर गुड, जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो. कि इस, क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा. अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ. नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, आई से ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी, मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं. लेकिन जहां ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है, यू गो एनीवेयर इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड. लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा?
0: कोई नहीं कर पा रहा है.
1: इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा. तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय, जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम न लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है. वी अग्री, एब्सोल्यूटली अग्री कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है. लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माय लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस?
0: पेन एंड फियर आल्सो, कंटिन्यूस डर. सुधा शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं न कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है. आगे हम जरूर अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है. सुधा शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: बिल्कुल, आज जहां शुरुआत हमने की थी, सचिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर करें. आज ही से, कल का भी क्यों इंतजार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहां ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले. गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड्स जो हैं उसमें हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पांस क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे. लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें. उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं. अगर आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है. इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

के कुछ दिन पूर्व जब सरकार ने ये घोषणा की थी कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी राज्य भारत के बंटवारे के साथ समाप्त हो जाएगा और भारत आजादी प्राप्त करेगा। इस घोषणा को सुनकर महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह बेहद गंभीर हो गए। 2-3 दिन के चिंतन के बाद एक वाक्य उनका मुहावरा हो गया, जिस आजादी के लिए मैं जिंदगी भर जूझता रहा उसे बिना देखे मैं कैसे जा सकता हूं। 14 अगस्त 1947 की शाम आई, सरदार अजीत सिंह पाकिस्तान की आजादी के समाचार वहां के रेडियो पर सुनते रहे। 15 अगस्त 1947 को रात्रि के 12 बजते ही भारत को आजादी मिलने की रस्म अदायगी होने लगी। वे भारत की आजादी के समारोह का आंखों देखा हाल सुनते रहे। लॉर्ड माउंटबेटन का भाषण उन्होंने बेहद ध्यान से सुना। भारत अब आजाद था। खुशी खुशी वे सो गए। अभी 4 भी नहीं बजे थे कि वे जाग गए और उन्होंने सबको जगाया। बोले, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। लो मेरा आखिरी बयान लिख लो। दुनिया भर में मेरे दोस्त फैले हुए हैं। वे शिकायत करेंगे कि बिना हमसे कुछ कहे चला गया। सुनकर वातावरण गंभीर हो गया। उनके डॉक्टर को बुलाया गया। देखकर उन्होंने कहा कि सरदार जी एकदम ठीक हैं। अलग बुलाकर उन्होंने कहा कि सरदार जी बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर भी काफी हैं। जीवन भर इन्होंने बहुत मुसीबतें झेली हैं। ऐसी हालत में किसी वहम का हो जाना स्वाभाविक है। बयान मत लिखना, इनके मन में मरने की बात जम गई तो हार्ट फेल हो सकता है। डॉक्टर साहब ये कहकर चले गए। टालम टोल की गई, बयान नहीं लिखा गया। वे बोले, तुम लोगों की नजर में मेरी राय गलत है और डॉक्टर की राय ठीक, तो मत लिखो। दुनिया के लोग तुम्हारी ही शिकायत करेंगे। उन्होंने सरदारनी को बुलाया। वे सोफे पर पैर लटकाए बैठे थे। सरदारनी सामने आकर खड़ी हुई। हाथ जोड़कर सहज स्वर में वे बोले, मैंने तुमसे शादी की थी, पर मैं भारत माता की सेवा में लगा रहा। कुछ भी हो, कसूर तो हुआ है। उनका स्वर गंभीर हो गया। बोले, सरदारनी मुझे माफ कर देना। और उन्होंने झुककर दोनों हाथों से श्रीमती हरनाम कौर के पैर छू लिए। वे चौंक कर पीछे हटी। सरदार जी ने अपने दोनों पैर ऊपर किए और एक तकिए से लग गए। पैर फैलाए, जोर से पुकारा, जय हिंद, और वे जीवन से मुक्त हो गए। डलहौजी के वे सब लोग जो आजाद भारत में सरदार जी का भाषण सुनने के लिए एकत्र होने वाले थे, दुख के आंसुओं में डूबे, उनकी अर्थी के पीछे चल दिए। ऐसी स्वेच्छा मृत्यु पौराणिक वीर भीष्म के बाद क्या इतिहास में कभी कहीं और किसी को प्राप्त हुई है? सरदार अजीत सिंह हमारे राष्ट्र की क्रांति के

सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के सगे चाचा थे। महानता में दोनों ही एक दूसरे से कम न थे। 21 साल की आयु में यदि भगत सिंह ने असेंबली में बम धड़ाका किया था तो 21 साल का युवक अजीत सिंह दिल्ली में एकत्र राजा महाराजाओं को भड़काता था। देश में चाफेकर बंधुओं के द्वारा पूना में 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेंड और लेफ्टिनेंट मिस्टर आर्यस की हत्या करके सशस्त्र विद्रोह की नई नींव रखी गई थी। सरदार अजीत सिंह ने उस धारा से स्वतंत्र देशव्यापी जनक्रांति की नींव रखी कि दिल्ली में होने वाले दरबार का बहिष्कार करो और खुशामद करने के बजाय भारत को आजाद करने की कोशिश करो। पंजाब के किसान सरदार अजीत सिंह की मुट्ठी में थे, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत उनकी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव को देखकर कांप उठी। ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में अजीत सिंह एक बेहद खतरनाक बागी थे जो बंगाल के क्रांतिकारियों और महाराष्ट्र केसरी बाल गंगाधर तिलक से भी सांठ गांठ किए हुए थे। यदि सरकार जल कर बढ़ा रही थी तो ये लोग किसानों को भड़का रहे थे कि जल कर देना बंद कर दें। यदि सरकार न्यू कॉलोनाइजेशन एक्ट पास कर रही थी तो ये लोग किसानों को, यहां तक कि फौजियों को भी बागी बना रहे थे और खुलेआम राजद्रोह और अंग्रेजों का वध करने की बात कर रहे थे। पंजाब के गवर्नर मिस्टर एबर्टसन ने भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को रिपोर्ट भेजते हुए लिखा कि पंजाब में गदर होने वाला है और उसका नेतृत्व सरदार अजीत सिंह और उसकी पार्टी करेगी। अंग्रेजी हुकूमत ने गदर को रोकने के लिए सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी और उन्हें मांडले जेल में रखने के विरोध में भारतवासियों ने तूफान खड़ा कर दिया। कुछ दिन के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। जेल से छूटने पर सरदार अजीत सिंह और अधिक उग्र हो उठे, सरकार के विरुद्ध साहित्य छापने लगे और भाषणों द्वारा आग उगलने लगे। बहुत दूर दूर से लोग उनके भाषण सुनने के लिए पहुंचते थे और सरकार के खिलाफ बगावत का संकल्प करके लौटते थे। इन्हीं दिनों भारत के महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां आजाद हिंद सरकार बनाकर अंग्रेजी हुकूमत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। सरदार अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद ने सोचा कि राजा महेंद्र प्रताप को सहयोग देना चाहिए। सरदार अजीत सिंह ने अपना नाम मिर्जा हसन

रख लिया। ब्रिटिश जासूसों को पहाड़ पर जाने का चकमा दिया गया और किसी अन्य रास्ते से कराची पहुंचकर शब्द नाम से पासपोर्ट बनवाकर जहाज द्वारा ईरान पहुंच गए। ईरान के क्रांतिकारियों ने भारत के इन दोनों क्रांतिकारियों का खूब स्वागत किया। रस्तोव और बाखू होते हुए सरदार अजीत सिंह तुर्की और जर्मनी से फ्रांस पहुंचे और फ्रांस में अध्यापन का कार्य करने लगे। यहां उनकी अन्य भारतीय क्रांतिकारियों से भेंट हुई। कुछ दिनों के पश्चात वे पेरिस से स्विट्जरलैंड गए और वहां मुसोलिनी से उनकी भेंट हुई, जो उस समय विद्यार्थी था। एक बार फिर वे जर्मनी गए और कैसर को प्रभावित करके भारत की आजादी के पक्ष में उन्हें राजी कर लिया।

प्रथम विश्व युद्ध के समय सरदार अजीत सिंह ब्राजील में थे। वे वहां 16 वर्षों तक रहे। कभी वे वहां प्रोफेसर रहे और कभी किसी फर्म के मैनेजर। कुछ और देशों में घूमते हुए वे फिर जर्मनी पहुंचे। उन दिनों ऑस्ट्रिया में सुभाष चंद्र बोस अपने इलाज के लिए रुके हुए थे। इन दोनों क्रांतिकारियों की वहां भेंट हुई और कुछ भावी योजनाएं बनी। सरदार अजीत सिंह यूरोप में बहुत लंबे समय तक रहे। उस समय तक दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी का सितारा चमक रहा था। सरदार जी इटली पहुंचे और वहां आजाद हिंद रेडियो चालू किया। इटली में भारत के एक अन्य क्रांतिकारी श्री इकबाल शैदाई और सरदार अजीत सिंह ने मिलकर आजाद हिंद लश्कर का निर्माण किया। इसमें वे सैनिक भर्ती किए गए जो लीबिया के मोर्चे पर अंग्रेजों की ओर से लड़कर जर्मनी सेना से हारे थे और बंदी बनाए गए थे। युद्ध के दिनों में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे और उन्होंने जर्मनी में आजाद हिंद फौज बनाई, तो इटली में सरदार अजीत सिंह से उनकी फिर भेंट हुई। दोनों नेता भारत की आजादी के लिए कार्य कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी और इटली की पराजय हुई और 2 मई 1945 को सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। यातना गृहों में रखकर उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाने लगी। आजादी का दीवाना आजादी की कीमत चुका रहा था। इधर भारत में कई राजनीतिक परिवर्तन हुए। 1947 तक पहुंचते पहुंचते सत्ता परिवर्तन लगभग निश्चित हो गया। ब्रिटेन के यातना गृहों में सरदार अजीत सिंह की स्थिति मरणासन्न हो गई। भारत की जनता पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जोर डाल रही थी कि सरदार अजीत सिंह को भारत बुलाया जाए। ब्रिटिश हुकूमत भारत विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को मना ही रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन उनकी बात मान गए और मार्च 1947 में सरदार अजीत सिंह 38 वर्षों का लंबा समय विदेशों में गुजारते हुए फिर मातृभूमि की गोद में पहुंच गए। मार्च 1947 में वे कराची पहुंचे। कराची में उनकी तबीयत खराब हो गई। वे कुछ दिन वहीं रहकर दिल्ली आए। उन दिनों वहां एशियाटिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सरदार जी प्रतिनिधि के रूप में उसमें शामिल हुए। उन्होंने 1 अप्रैल 1947 को देश के नवयुवकों के नाम अपना संदेश प्रसारित किया। सरदार अजीत सिंह जब 1909 में देश से गए थे तो एक योद्धा थे और 1947 में जब वे लौटे तो भी एक योद्धा ही थे। 15 अगस्त 1947 का पावन दिन आया। कुछ क्षति उठाकर ही सही, भारत में स्वाधीनता सूर्य का उदय हुआ। अपने देशवासियों को स्वाधीन भारत की बधाइयां देकर लगभग 50 सालों तक निरंतर आजादी की लड़ाई लड़ने वाला महान योद्धा सरदार अजीत सिंह ठीक 15 अगस्त 1947 को जय हिंद के अंतिम घोष के साथ भारत के शहीदों को ये शुभ संदेश देने इस दुनिया से कूच कर गया। जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे पेश किया सुधानुपम ने।
1: ये वतन का
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: हमारा भोजन हमारा व्यक्तित्व, लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय, उन्नति, दृष्टि, यश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य, सैंडी, आकाश।
3: मजा आ गया, ये तरबूज तो बहुत ही मीठा है।
4: आह, मेरे खरबूजे का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
2: ने क्या बात करते हो, फलों के राजा के सामने किसी और फल की तारीफ। लाहौल बिलाकवत।
5: वो क्या होता है?
2: मुझे भी पता नहीं, पर ऐसा ही कहते हैं ना जब कोई कुछ गलत करता है।
5: ये फलाहारी पिकनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ, ये मेरी ही दादाजी का आइडिया था।
5: हाँ, मैं तो उन्हें बाबूजी कहकर पुकारता हूँ।
6: और मैं बाबा।
3: वो मेरे सब दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं बचपन में बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए, बचपन की दोस्ती हमेशा प्यारी लगती है।
7: मेरे पापा भी यही कहते हैं।
4: मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हर एक दोस्त जरूरी होता है।
2: जैसे किसी के साथ हम कोई खास खेल खेल सकते हैं,
5: कोई पढ़ाई में मदद करता है चाहे वो खेलने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हो,
3: और कोई हमारा मजेदार चटपटा खाना खाने में हमारे साथ होता हो।
7: जैसे इस समय हम सभी मिलकर गर्मियों के मजेदार फल खा रहे हैं।
3: ये ठीक है।
6: ये फलों का आइडिया अच्छा है, कितने ही पेड़ भरे क्यों न, कभी सुस्ती ही नहीं आती,
7: बल्कि इन्हें खाकर हम ताज़ा ही महसूस करते हैं।
8: तुम्हें पता भी है फल हमारे शरीर की किस प्रकार मदद करते हैं?
3: मजे करने में।
8: वो तो है ही, पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।
7: तो रोटी, पूरी, आलू दाल, ये सब?
4: हाँ, और दूध।
8: वो सब भी जरूरी है, पर अलग अलग भोजन हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं।
9: अभी हम पर पहुँचे ही हैं विज्ञान में।
8: हाँ, तुम सब इन अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, कुछ एनर्जी देने के लिए, तो कुछ बीमारियों से रक्षा के लिए।
2: सब भोजनों में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं ना?
8: जैसे दालों में प्रोटीन, जो बढ़ने में और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है। अनाज में कार्बोहाइड्रेट, जो काम करने की शक्ति देता है। मक्खन और घी में वसा, ये भी हमें शक्ति देता है। और कई विटामिनों को शरीर में ग्रहण करने की भी क्षमता है। फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं।
5: और दीदी, संपूर्ण आहार पता है किसे कहते हैं?
3: मुझे पता है, दूध को।
8: और संतुलित आहार?
6: ऐसा भोजन जिसमें सब पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो।
7: पर ऐसा तो किसी व्यक्ति की उम्र, अवस्था, लिंग, वो क्या कार्य करता है?
3: इस सब पर भी तो निर्भर होगा ना कि उसके लिए हम किसे संतुलित आहार कहेंगे।
8: हाँ, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
4: और किसी मजदूर को शक्ति देने वाले भोजन की जरूरत होगी।
8: बिल्कुल ठीक,
2: पर मुख्य बात तो यह है ना कि हमें जीने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत है।
5: क्यों, बीमारियों से रक्षा भी तो।
3: और ताकतवर बनने की भी।
7: कहते हैं सबसे पौष्टिक भोजन वह होता है जो सबसे कम पका हो।
8: हाँ, उसके पौष्टिक तत्व आग से और पकने से नष्ट नहीं होते।
6: पर कच्चा भोजन तो बस फली हुए ना, जैसे अमरूद, केला, खरबूजा,
3: अनार, सीताफल, खुरमानी, आलू बुखारा, नाशपाती।
8: केला भूल गए, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी।
4: मुझे तो जामुन बहुत अच्छा लगता है।
2: मेरे दादाजी इन्हें बहुत खुश होकर खाते हैं।
8: ये मधुमेह की बीमारी वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है।
2: उन्हें तो पपीता भी बहुत पसंद है।
5: मुझे तो बेर बहुत पसंद है।
3: मुझे शहतूत।
7: मुझे फालसे।
6: क्यों, कुछ सब्जियां भी तो है जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर
3: और ककड़ी, खीरा।
8: टमाटर को हम सब्जी कहते हैं पर असल में ये एक फल होता है।
2: अच्छा,
4: फिर नट्स भी तो, जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट,
2: किशमिश और चिलगोजे भी।
5: पता है अब चिलगोजे बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
3: कहीं मौसम में बदलाव तो इनके कम उगने का कारण तो नहीं।
7: तुम भी ना हर बात को प्रदूषण तक ले जाते हो।
8: तो गलत क्या है, जब पशुओं की इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही है मानव के प्रदूषण फैलाने से, तो पेड़ भी तो हो रहे हैं।
6: जरा सोचो, ऐसा हो कहीं एक दिन हमें भोजन देने वाले पेड़ पौधे कहीं विलुप्त ना हो जाए, जैसे मक्का, बाजरा।
3: क्यों, गेहूं भी तो है।
4: और दालें, फल, मटर, राजमा, चना,
2: सब्जियां जैसे पालक, गोभी।
5: पर अगर पौधे प्रदूषण से प्रभावित हुए तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि तेल और घी भी तो इन्हीं से आता है, कुछ सीधे सीधे और कुछ
3: पता है इनडायरेक्ट तरीके से।
7: गाय घास या पौधा खाती है, दूध देती है, मक्खन निकलता है और घी।
6: पर बात सुनो, अगर पौधों पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा तो पशुओं पर भी पड़ेगा, तो दूध पर भी, दही, शहद, पनीर, अंडे या मांस।
3: मैं तो शाकाहारी हूँ।
4: मैं भी
2: मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ।
8: चलो कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम सब हो ना। जब जानते हो क्या समस्या है तो समाधान भी तुम ही निकालोगे। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम सब खाने से पहले हाथ धोते हो?
3: मैं तो धोती हूँ।
4: मैं भी, अच्छी तरह साबुन से।
2: मैं भी।
5: सबको हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए और खाने को खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए।
3: दादाजी कहते थे हमारे 32 दांत होते हैं, तो हर एक दांत को एक एक बार तो भोजन

बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोला मुझको खा लो मैं तो तुमको ताकत दूंगा। गोभी मटर टमाटर बोले गाजर भिंडी बैंगन बोले अगर हमें भी तुम खाओगे रोज रोज बढ़ते जाओ।

0: शिव जी का ये रूप नया है।
1: आंख को पड़ी पलके भारी, समझा पुरुष जो देखी नारी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, इस एपिसोड में हम संत कबीर जी के दोहों की चर्चा करेंगे। संत कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े

संत कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। संत कबीर जी कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। अर्थात जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। संत कबीर जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइये, जो मन जोगी होए। अर्थात लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। संत कबीर जी कहते हैं, पांचे दिन पांचे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात सब कबीर जी कहते हैं, बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया, अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार का मैपन था, तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो मैपन का अहंकार नहीं है। जब से मैंने सद्गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी अपने दोहों में कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली से बदबू आती है। संत कबीर जी कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। अर्थात जिसको ईश्वर प्रेम पाना है उसे अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा तो त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोई पी रहे जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर।

अर्थात संत कबीर जी कहते हैं, जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। संत कबीर जी कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। अर्थात शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीतलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। संत कबीर जी कहते हैं, कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होत न चार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है। कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान है। संत कबीर जी कहते हैं, रात गवाई सोय के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, रात को सोते हुए गवा दिया और दिन खाते खाते गवा दिया। आपका जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियों में बदला जा रहा है। जो जीवन प्रभु प्रेम के बिना हो वो जीवन निरर्थक है, कौड़ियों के बराबर है। संत कबीर जी कहते हैं, कागा काको धन हरे कोयल काको देय, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। अर्थात कौवा किसी का धन नहीं चुराता लेकिन फिर भी कौवे की आवाज लोगों को पसंद नहीं आती। वही कोयल किसी को धन नहीं देती लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। संत कबीर जी कहते हैं, तिनका कबहू ना निंदये जो पांव तले होए, कबहू उड़ आंखों पड़े पीर घनेरी होए। अर्थात तिनके को पांव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि अगर हवा से उड़ के तिनका आंखों में चला गया तो बहुत दर्द करता है। वैसे ही किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात माया धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा, इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। संत कबीर जी कहते हैं।

मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। अर्थात मांगना तो मृत्यु के समान है, कभी किसी से भीख मत मांगो, मांगने से मरना भला, यही सद्गुरु की शिक्षा है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब हम पैदा हुए तो उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। अर्थात हंसते हंसते इस दुनिया से विदा हो जाए और ऐसा कर्म करे जो दुनिया हमें हमेशा याद रखे। संत कबीर जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ न कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ न कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। संत कबीर जी कहते हैं, दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थात इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर नहीं जाती, जिसका ना कोई आदि है न अंत। संत कबीर जी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ना ही ज्यादा चुप रहना भी अच्छा है। जैसे ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। संत कबीर जी कहते हैं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। अर्थात जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है, वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है। इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोलकर ही मुख से बाहर आने दे। संत कबीर जी कहते हैं, संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। अर्थात सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों न घिरे हो। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ते। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजी शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जिसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। संत कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए, वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जाने हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थात कबीर जी कहते हैं, समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका भावार्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। संत कबीर जी कहते हैं, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। अर्थात जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखिया कोए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए, सर पर धन की गठड़ी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा है। संत कबीर जी कहते हैं, यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, डबका लागा फुटिगा कछु न आया हाथ। अर्थात यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता रहता है, जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया माटे की घड़े की तरह और कुछ भी हाथ नहीं आया। संत कबीर जी कहते हैं, करता था क्यों रह या

करी क्यों पचिताए, बोए पेड़ बबूल का अंब कहाँ ते खाए। अर्थात यदि तो अपने को कर्ता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबुल का लगाया है, फिर आम खाने को कहां से मिलेगा। अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। संत कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की परतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया, तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। श्रोतियों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, आज फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। जिंदगी को जीते हुए कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिन्हें हम सच माने बैठे थे और कहीं न कहीं दर्द में थे, पेन में थे, पीड़ा में थे, खुश नहीं थे। जब हमने ये बातें समझी, उन्हें जीवन में उतारा और मेडिटेशन का साथ लेके, वो ताकत लेकर जब नई तरह से जिंदगी को देखना शुरू किया, एक नया नजरिया लिया, तो सारी पीड़ा फुर हो गई, दूर हो गई, एक नई जिंदगी सामने थी। इस जिंदगी पर चलते हुए या जिंदगी में चलते हुए कई बार आपके हमारे साथ ऐसा होता है, हमें लगता है कि कोई एक सिचुएशन, कोई एक व्यक्ति या मेरा ही कोई ऐसा संस्कार ऑब्स्टिकल बन रहा है, रोड़ा अटक रहा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या करें? आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, इतने सारे लोगों के हमारे पास मेल्स आप तक भी पहुंच रहे हैं, कॉल्स आते हैं और हर बार यही बात होती है कि सब कुछ अब बेटर हो गया है। अवेयरनेस आई, देखने का तरीका बदला, देखने का तरीका बदलते ही पूरा सिनेरियो बदल गया। अब क्योंकि दिख रहा है सब कुछ, तो ये भी देखने लगा कि रास्ते में चलते हुए बहुत से ऐसी चीजें हैं जो रोक देती हैं, उस रास्ते पर चलने नहीं देती, और फिर हम कई बार या तो रोक के बैठ जाते हैं या फिर हम रास्ता मोड़ लेते हैं या फिर हम उसी से लड़ते हुए अपना वक्त गुजार लेते हैं। सो हाउ टू एक्चुअली यू नो, सबसे पहली बात कैसे पहचाने कि ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल है, कहीं हम रुक गए हैं।
1: उसके लिए ऑब्स्टिकल है ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि ये मेरे रास्ते में ऑब्स्टिकल है, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को

0: कई बार वो दूसरे लोग होते हैं, कई बार कोई परिस्थिति, कई बार जैसे आपने कहा अपना ही कोई संस्कार, कभी अपनी कोई फिजिकल हेल्थ, यू नो कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ. यू नो व्हेन डू वी से कि दिस इज एन ऑब्स्टिकल, जब हमें लगता है मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक मैं हर चीज कर सकती हूँ, आई एम केपेबल, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वो नहीं अचीव कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स विच इज इन द वे, राइट. तो हमें लगता है कि वो निमित्त है मेरे आगे नहीं बढ़ पाने का, तो हम किसी न किसी को वो ऑब्स्टिकल समझ लेते हैं कि जिसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए. कई बार वो ऑब्स्टिकल कारण है जिसकी वजह से मेरे को सेटिस्फेक्शन जो होनी चाहिए अपने कार्य में या अपने जीवन में वो नहीं हो पा रही. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम इस पुरुषार्थ में चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम हर एस्पेक्ट पे कर लेते हैं सारा कुछ, यू नो इट्स लाइक आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई एम गेटिंग अलोंग विद एवरीबडी, लेकिन कोई ना कोई एक इंसान ऐसा मिल जाता है कि आई जस्ट मतलब सबके सामने आई विन ओवर माई सेल्फ, लेकिन उनके सामने जाके मैं हार जाती हूँ. तो जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जो मुझे पहुंचना है जहां तक, कहीं ना कहीं मैं समझने लगती हूँ कि ये व्यक्ति उस लक्ष्य में मेरा बाधा बन जाती है. तो और ये एक बहुत जो फीलिंग आ जाती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन अब ये मेरे रास्ते के बीच में आकर खड़े हो गए, ये या ये बात. तो उस समय जो हमारी हालत होती है हम बहुत पावरलेस फील करते हैं, क्योंकि
1: हेल्पलेसनेस
0: बड़ी उमंग उत्साह खत्म हो जाता है. होपलेसनेस की जो फीलिंग है ना कि अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है जब तक ये पत्थर हिलेगा नहीं. तो ये जो ऑब्स्टिकल देखने की हमारी आदत पड़ जाती है, तो उसके हम जैसे आपने बताया कि अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज हैं, एक है कि हम रुक जाते हैं कि मैं तो अब रुक गया, अब ये पत्थर हटे तो मैं हटू, तो हम पत्थर के सामने आकर ऐसे रुक जाते हैं कि ये हटेगा और चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए हम वेट करेंगे कि पत्थर हटेगा. दूसरा है कि हम उसके अगेंस्ट सबके सामने right, बोलना, सबके उसके बारे में बताना, एक यू नो हर जगह वही विक्टिम वाली फीलिंग कि उनकी वजह से मेरा नहीं हो रहा. एक है कि मैं उस ऑब्स्टिकल के साथ लड़ना शुरू कर देती हूँ कि ये है क्या चीज, इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा. यू नो आई स्टार्ट फाइटिंग विद द ऑब्स्टिकल, इट्स लाइक पत्थर के साथ
1: सर फोड़ना
0: शुरू हो जाता है. और हम ये नहीं रियलाइज करते कि वो फाइटिंग के प्रोसेस में हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और हमारा संस्कार बनता जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा ऑब्स्टिकल हमारे रास्ते में आएगा आई विल फाइट विद इट. व्हाट वी डोंट रियलाइज इज ये पत्थर क्रॉस करने के बाद
1: बाकी पत्थर आएंगे
0: और है.
1: तो ऑब्स्टिकल क्या आता है, कौन से ऑब्स्टिकल क्यों हम यहाँ?
0: ऑब्स्टिकल छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे मैं समझूं कि अगर मेरे ऑफिस में कोई है जो जान पूछ कर मेरी तरक्की के रास्ते में, अ लॉट ऑफ पीपल फील कि कोई ना कोई मेरे प्रोग्रेस
1: अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं,
0: चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली भी, लेकिन ये मेरे तरक्की के रास्ते में, तो मैं हमेशा उनको क्या समझती रहूंगी, ये मेरे रास्ते में है, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट इज नॉट अंडरस्टूड, ये मेरे रास्ते में जब तक ये यहां से नहीं हटेंगे नथिंग कैन हैपन. सो परमात्मा जो हमें सबसे सिंपल और इजी बात इस केस में बताते कि समस्या के साथ नहीं टक्कर मारो, समस्या का चिंतन, समस्या की चर्चा, इट्स ऑलवेज समस्या समस्या समस्या, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम. तो परमात्मा हमेशा सिखाते कि समस्या स्वरूप नहीं बनो, वी बिकम एन एम्बोडीमेंट ऑफ प्रॉब्लम
1: बिकॉज वी टॉक सो मच वी लिव विद इट. यस,
0: सो शिव बाबा सेज डोंट बिकम एन एम्बोडीमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकम एन एम्बोडीमेंट ऑफ द सोल्यूशन. तो समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो, लेकिन हमारी सारी एनर्जी समस्या पे हिच करते हुए चली जाती है. तो ऑब्स्टिकल अगर हम किसी चीज को समझते हैं रास्ते में, तो सिर्फ क्या चाहिए, परसेप्शन में एक थोड़ा सा शिफ्ट. अभी हम समझते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वी नीड टू गो थ्रू फोर स्टेजेस कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई लग रही है, हमें अपने आप को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है उसके लिए, और जैसे ही हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे तो एक नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगी साथ में डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी. व्हाट विल हैपन, राइट नाउ माय परसेप्शन इज

0: ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। अगर हम रेस वो स्मूथ वाली समझते हैं जिसमें कोई हर्डल्स नहीं है, तो वो जो स्ट्रेट ट्रैक रेस होती है उस पर अगर रास्ते में कुछ भी पड़ा होगा तो हम कहेंगे दिस इज इन द वे, इसको रास्ते से हटाओ। लेकिन जब हर्डल रेस है तो हमें पता है कि हर थोड़ी दूर के बाद जो ये डंडा लगा हुआ है ये इस रेस का ही हिस्सा है।
1: तो
0: दोनों चीज में कितना फर्क हो जाएगा। अब उस डंडे के सामने जब हम जाकर खड़े हो जाएंगे, हम कोई ऐसे खड़े थोड़ी हो जाएंगे, everyone else is going to move, forget everyone else, what about me? तो हम दो ऑप्शन है ना, या तो खड़े हो जाए, डंडा हिले तो मैं हिलूं,
1: तो वो डंडा तो हिलने वाला है नहीं, पार्ट ऑफ द गेम,
0: या फिर डंडे के साथ फाइट करते रहे, बट अदरवाइज दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। सो सिमिलरली आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ, दिस जर्नी इज अ हर्डल रेस। मैं ये समझू हर्डल्स नहीं होने वाले हैं, ये होने नहीं वाले।
1: ये तो हम हर बार मानते ही आ रहे हैं कि जिंदगी में सिचुएशंस प्रॉब्लम्स आएंगे हैं,
0: आने वाले हैं, बट आई हैव टू जस्ट लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस। तब ये समझ में आता, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस टू रिमेम्बर, कि इट्स नॉट इन द वे, दिस इज द वे। उस हर्डल को देखें, दिस इज द वे, दिस इज कम टू टीच मी हाउ टू जम्प। तो जैसे ये नया इंस्ट्रक्शन माइंड को दिया कि ये समस्या नहीं है, ये मुझे एक नया रास्ता, ये एक नया पाठ पढ़ाने के लिए ये समस्या आई है, तो जैसे ये नया इंस्ट्रक्शन दिया तो एक नए परसेप्शन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, बिकॉज मैं उसी व्यक्ति को, उसी सिचुएशन को एक बिल्कुल डिफरेंट स्वरूप में देखूंगी। तो नया परसेप्शन जैसे ही क्रिएट होना शुरू हो गया, पुराना वाला परसेप्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि दो एक टाइम पर दोनों में से
1: एक ही
0: हो सकता है। तो जैसे एक पौधा है, अगर हम उसको कुछ समय तक पानी नहीं देते, हमें उखेड़ के फेंकने की भी जरूरत नहीं है, बस उसकी तरफ कुछ समय तक ध्यान नहीं देना। सिमिलरली दिस परसेप्शन, ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, इंस्टेड ये मुझे क्या सिखाने के लिए आई है, तो वो परसेप्शन बिल्डअप हो जाएगा और पुराना वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये बहुत इजी है, ये अगर सुनने में भी लगे कि नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल, आई जस्ट हैव टू लुक एट द सिचुएशन ओनली विद दिस थॉट, ये मुझे क्या सिखाना है।
1: आई थिंक वी शुड बी मोर क्लियर, मतलब मेरे लिए और क्लैरिटी हो जाएगी कि परसेप्शन खत्म होगा, हर्डल खत्म नहीं होगा।
0: हर्डल तो खत्म ही नहीं होने वाला, लेकिन हर्डल है क्या चीज?
1: हर्डल मेरे रास्ते की एक
0: हर्डल है क्या चीज?
1: मेरा रास्ता,
0: हर्डल तो यहाँ है ना, हर्डल तो सारा यहाँ है, क्रॉस तो मैंने करना है, लेकिन जैसे ही परसेप्शन चेंज हो जाएगा, क्रॉस करने का तरीका
1: बदल जाएगा,
0: चेंज हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगेन द सेम एग्जांपल, कि ऑफिस में कोई मेरे अगेंस्ट कुछ चल रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो हाथ धोकर पीछे पड़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, इनकी प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए। वन, फाइट अगेंस्ट हिम इंटरनली, एक्सटर्नली तो शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते, इंटरनली फाइट। दूसरा, गिव अप, मेरी तो हो ही नहीं सकती, एंड टेल द वर्ल्ड कि मेरी प्रमोशन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये रास्ते में खड़े हुए हैं। तीसरा, नाउ लुक एट द शिफ्ट, कि ये मुझे क्या सिखाने के लिए आ सकती है परिस्थिति, बिकॉज जब तक मैं उसको हर्डल देखती हूँ, आई एम सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी कि ये ऑब्स्टिकल है। जनरली अगर मेरे रास्ते में ऐसा कुछ आए, तो द काइंड ऑफ थॉट आई वुड बी एबल टू गिव माई सेल्फ वुड बी कि ये व्यक्ति और इसका ड्रामा में वर्तमान समय का रोल मेरी एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए आया है। आई जस्ट हैव टू ट्राई कि क्या मैं इस व्यक्ति को, ये जो है, जैसा है और जो अभी कर रहा है,
1: उस रूप में स्वीकार लूं,
0: उस रूप में स्वीकार कर सकती। लेट मी ट्राई, बिकॉज एनी वेज आई कांट चेंज हिम। तो जैसे ही उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, क्या होगा, जब रेजिस्टेंस होती है तो वो और भी हार्ड होता जाता है। जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, वो व्यक्ति सॉफ्ट होना शुरू कर देता है। जैसे पत्थर है, लेट से वो व्यक्ति पत्थर है अगर मेरे रास्ते में, और मैं भी पत्थर बन जाऊं, लेकिन अगर वो पत्थर है और मैं पानी बन जाऊं, और पानी हिट भी करता रहेगा पत्थर को, अगर पत्थर रास्ते में लेट से एंड द वॉटर इज नॉट फाइंडिंग द वे, व्हाट्स द अदर थिंग द वॉटर विल डू, वो पानी अगर पत्थर के साथ हिट भी करता रहा, तो धीरे धीरे पत्थर, पानी को कुछ नहीं होगा, पत्थर धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा। लेकिन मुझे वो पानी वाली एनर्जी बनना है, एंड दैट एनर्जी इज टू फ्लो, नॉट द

0: resistance energy. Now this may sound annoying. Why should I accept? मैं क्यों accept करूँ जब वो मेरे रास्ते में है? लेकिन I have to understand कि वैसे भी वो promotion थोड़े समय के लिए अभी नहीं हो रहा है.
1: और हो सकता है, अगेन एक और बात जो समझ में आएगी वो ये कि हो सकता है वो अपने परिपेक्ष में सही हो, you know, we've always.
0: वो तो है वैसे भी. वो तो जैसे ही हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो हमें वो पर्सपेक्टिव दिखाई भी देना लग जाएगा. लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है प्रोफेशनल लाइफ में भी या कई बार रिलेटिव्स में भी, कि कई बार लोग इंटेंशनली भी हमारा करियर डैमेज करने के लिए या कुछ ऐसे. वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ पीपल. सो व्हाट डू आई डू? आई विल ओनली हैव टू लर्न. ये शब्द कि वो मेरे ऑब्स्टिकल है, वो मेरी दुश्मन है या वो भड़का देती है, व्हाट इज हैपनिंग? तो वो जो टकराव है वो बढ़ता ही जाएगा. एंड इफ जस्ट फॉर अ फ्यू डेज आई कैन प्रैक्टिस दिस कि वो जो है जैसे है, मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये लेसन आया है. क्योंकि जब हम इस लेसन को, एक्सेप्टेंस पावर, इस लेसन को अगर एक व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस कर ले,
1: वी लर्न इट.
0: It's my lesson for a lifetime. Now I will be able to accept almost everyone very easily. I will not have to do work very hard. It's like ek chapter ko, ek science ke law ko agar humne achhi tarah se samajh liya, uske baad jitni bhi laws us foundation law ke upar based hongi, mujhe sare samajh mein aa jayenge.
1: Very true.
0: But I have to understand that law. अब मैं वो law को अगर नहीं understand करूँ तो मुझे आगे की बहुत सारी science समझ में नहीं आने वाली है. इसी तरह acceptance एक बार करना है सिर्फ, and only once हमें थोड़ा सा वो भी शुरू में करना मुश्किल लगेगा कि नहीं कैसे accept करूँ, ये तो इतना बुरा कर रहे हैं मेरे साथ. Try. क्योंकि again try करने से फायदा किसका, resist करने से नुकसान.
1: अच्छा, इसमें हमारा वो फॉरगिवनेस वाला फैक्टर भी खत्म हो जाता है.
0: फॉरगिवनेस वाला,
1: वी डोंट हैव टू फॉरगिव, यू नो, लाइक पीपल से दैट आई विल एक्सेप्ट एंड आई विल फॉरगिव एंड एक्सेप्ट. सो अगेन व्हेन वी से कि ये मुझे कुछ टीच करने आया है, तो वो एक माध्यम ही बना है. यू नो, इन दिस होल ड्रामा दैट पर्सन और दैट सिचुएशन इज जस्ट वन मीडियम.
0: परमात्मा शिव बाबा हमेशा कहते जो विघ्न आता वो भी तो एक शिक्षक बनकर आता है. वो कोई ना कोई पाठ पढ़ाकर जाएगा, कोई ना कोई आप उससे शिक्षा लेंगे. बट प्रोवाइडेड इफ यू लुक एट इट लाइक दैट,
1: इफ यू रेडी फॉर दैट,
0: द मिनट यू लुक एट द सिचुएशन एंड ट्राई लुकिंग फॉर द लेसन, क्या सिखाने आया है, मुझे क्या सीखना है इसमें, यू विल फाइंड द लेसन. एंड दैट्स व्हेन द ऑब्स्टिकल वाली परसेप्शन वो खत्म हो जाती है. और हम जब ये एनर्जी दूसरे तक ट्रांसमिट करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ हमें डिफरेंट टाइम लगेगा. कोई बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, किसी को थोड़ा टाइम भी लगे. जितना ज्यादा टाइम लगे उतनी मेरी पावर तो
1: बढ़ती मेरी जर्नी जो है.
0: समटाइम्स इट हैपन्स कि किसी टीम के अंदर या किसी परिवार के अंदर एक सदस्य होता है जो बहुत, यू नो, उसका स्वभाव संस्कार बहुत चैलेंजिंग लगता है. ऐसे लगता है मेरी सबके साथ बन जाती है, लेकिन इधर आके मैं हार जाती हूँ. तो मेरे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में ये व्यक्ति ऑब्स्टिकल है, या मेरी कंपनी में मेरी टीम की प्रोग्रेस में ये व्यक्ति ऑब्स्टिकल है. अब क्या करें? आई हैव टू लर्न दैट दिस पर्सन हैज कम टू इंक्रीज माई टॉलरेंस पावर, कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है. वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, जितना मैं एक्सेप्ट कर लूंगी उतनी मेरी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी. जितना मैं उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखूंगी, अंडरस्टैंडिंग जो हम दोनों के बीच में होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आई एम नॉट रेजिस्टिंग दैट पर्सन. वेरी ऑफन वी से दिस पर्सन इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विथ. थोड़ा सा परसेप्शन, दिस पर्सन इज नॉट डिफिकल्ट, दिस पर्सन इज जस्ट डिफरेंट. जैसे ही मैंने डिफिकल्ट कहा कि बहुत डिफिकल्ट है, यू नो, ये व्यक्ति
1: इतना,
0: मैं कहूँ हाँ ये व्यक्ति थोड़ी सी डिफरेंट है,
1: एक चैलेंज है इनको हैंडल करना.
0: तो चैलेंज मतलब कि इनके साथ अगर मैंने डील कर लिया,
1: मैं सबके साथ कर सकती.
0: एक मैच के अंदर भी क्या होगा, जो सबसे मुश्किल टीम है उसको अगर हरा दिया तो फिर आपके चांसेस ऑफ विनिंग एवरी अदर मैच ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. बट नाउ आई हैव टू जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, इट कीप्स चेंजिंग. ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मेरी इनर पावर को बढ़ाने के लिए आई है. है ना, तो इसको बढ़ाने का साधन इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता. जब तक हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी, हमारी शक्तियां
1: हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि हम कहां पर हैं,
0: और पता भी नहीं चल

0: इस प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा हो, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मास्टर ऑफ दिस बॉडी एंड मास्टर ऑफ ऑल सिचुएशंस। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मेरी स्थिति से मैं हर परिस्थिति को पार कर सकती हूं। मैं आत्मा इस नाटक रंगमंच से परे जाकर चांद सितारों की भी दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आकर पहुंच जाते हो। परम धाम मुझ आत्मा का घर, जहां मेरे पिता सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा भी कहते, शिव बाबा के समीप मैं आत्मा आकर बैठी हूं। सारी दुनिया जिसको याद करती, वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। शक्तियों की किरणें उनसे चारों तरफ जैसे फैल रहे हैं, तो मुझ आत्मा में भी समाते जाते। शक्तियों से भरपूर होती हुई मैं आत्मा पुनः इस कर्म क्षेत्र पर आ जाती हूं। और ये याद रखूं, सर्वशक्तिवान पिता की मैं संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और इस स्थिति से मैं हर परिस्थिति को पार कर सकती हूं। ओम शांति।
1: ओम शांति। कहीं ना कहीं देखा ये है शिवानी की मेडिटेशन, जब भी हम बैठते हैं यूं बैठ के पल भर के लिए भी, चाहे परमात्मा के पास जाते हैं, वो इतना एक मिनट का जो लम्हा है, एक मिनट का जो वक्त है, वक्फा है, कहीं ना कहीं इतना एम्पावर कर देता है कि फिर सचमुच में वो ताकत जो है वो हमें मिल जाती है। तो आज उन सभी ऑब्स्टिकल्स के बारे में, एक तो हमें अवेयर कराने के लिए कि यस दे आर ऑब्स्टिकल्स, एट टाइम्स वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वो ऑब्स्टिकल्स और उनसे पार पाने का एक तरीका है वो हम कर सकते हैं, ताकि ये जर्नी हमारी कहीं रुके ना। आज इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ऑब्स्टिकल्स जिंदगी में आते हैं, लेकिन हर बार हमारा जब मन था कि हम हर्डल रेस जीतेंगे, हर्डल रेस से गुजरेंगे, तो आज सिर्फ इस तरह के अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जब भी लगे कि कहीं मैं रुक गया हूं, कहीं कुछ है जहां मैं हेल्पलेसनेस की फीलिंग हो रही है, तो उस हेल्पलेसनेस को कन्वर्ट करके एक चैलेंज के रूप में एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक छोटा सा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है और उसी से गुजरना है। ना उसको उसके सामने थककर हारना है, ना उससे लड़ना है, बल्कि उससे होकर गुजरना है। अगर ये हम अपने साथ एक माइंडसेट रखेंगे, तो फिर कोई भी परेशानी, कोई भी हर्डल, कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती, हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999334555, 9999334666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। हमने आपसे पहले भी बात की थी कि सेंटर पर जब हम जाते हैं, रोज हम वहां होते हैं, तो मुरली या परमात्मा के वो जो महावाक्य हैं, कहीं न कहीं जो

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। स्वागत है आप सभी का हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 8वें अध्याय में। हम जानेंगे अलंकार माधुरी, वह कला जिसमें श्री कृष्ण के अलंकार उनके आभूषण और श्रृंगार भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम बन जाते हैं। तो दोस्तों सुनते हैं एक श्री कृष्ण का प्यारा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अलंकार माधुरी का परिचय होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। कृष्ण का श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं था, बल्कि उनकी दिव्यता का प्रतीक था। उनके मुकुट में मोर पंख, गले में वनमाला और हाथों में कंगन, ये सब उनके प्रेम और करुणा की झलक दिखाते थे। उनके अलंकारों की मधुरता ने वृंदावन को सौंदर्य और भक्ति से भर दिया था। तो दोस्तों, सुनते हैं इसी के साथ एक भक्ति।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब कृष्ण गोपियों के बीच आते तो उनके अलंकारों की चमक से वातावरण आलोकित हो जाता। गोपियां उनके वनमाला और मोर पंखों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। राधा के लिए तो कृष्ण का हर अलंकार प्रेम का प्रतीक था। मोर पंख उनके हृदय की शोभा, वनमाला उनके प्रेम की गहराई थी। तो दोस्तों, इस गहराई के साथ सुनते हैं हम एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, अलंकार माधुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन के अलंकार केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब है। जब हम अपने जीवन को प्रेम, करुणा और भक्ति से सजाते हैं तो वही सच्चा अलंकार बन जाता है। कृष्ण के अलंकार हमें ये संदेश देते हैं कि सौंदर्य का मूल स्रोत ईश्वर का प्रेम है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, माल्य नुपुर हरे न लस दान माले हरी, अर्थात हरी वनमाला हर और नुपुर से अलंकृत होकर अद्भुत शोभा पाते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर के अलंकार केवल आभूषण नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा संगीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यह थी आठवीं कला अलंकार माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा अलंकार प्रेम और भक्ति है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की नवी कला चित्र माधुरी, यानी उनके चित्रों और रूप की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, welcome.
2: Om Shanti.
1: Om Shanti and welcome to Being Divine.
2: Thank you.
1: Aapne bada difficult homework de diya mujhe.
2: Difficult?
1: Aapne bol da, me as a kapda.
2: The shirt that I'm wearing is I.
1: I, haan, toh main apne aapko sochu ki main ye hoon.
2: Haan.
1: Toh maine socha, jab main ye hoon, toh phir main ye nahi hoon.
2: Haan, toh body nahi hoon. Wo nahi hoon, theek hai. But ye main hoon.
1: Hmm.
2: और अब मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा?
1: तो ध्यान उधर ही रहेगा, मेरे भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे.
2: एक फर्स्ट चीज ये होगी कि ध्यान किस पर रहेगा, सिर्फ
1: कपड़ों
2: मेरे
1: पे?
2: भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे. ठीक है, एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन अगर हम करने लगेंगे कि कौन बेटर, यू नो हाउ वी टेंड टू डू, कौन बेटर, कौन हायर, कौन मोर ब्यूटिफुल, तो किस बेसिस पे करने लगेंगे?
1: मेरी शर्ट शर्ट ज्यादा सफेद है.
2: वेरी ट्रू, क्योंकि हमने सोचा मैं शर्ट हूँ. अब अगर चलते चलते, खाना खाते हुए, कुछ करते हुए इस कपड़े पे कुछ गिर गया,
1: मैं मैला हो गया,
2: मैं मैला हो गया, फिर अगर किसी दरवाजे से कीले से लटके ये फट गया, तो कौन फट गया?
1: मुझे चोट लग गई,
2: मैं फट गया. इज इट ट्रू?
1: इज इट ट्रू? मेरे कपड़े को लगी,
2: मेरे कपड़े को लगी और मैं फट गया, दोनों में फर्क? दोनों में फर्क. ये लगती कितनी छोटी बात है, लेकिन अगर इस तरह से हम जीवन जीने लगे तो सारा दिन हमारा ध्यान सिर्फ किस पर होगा? ये ड्रेस उस ड्रेस से बेटर होनी चाहिए. अगर ये ड्रेस पर दाग लग गया तो ये ड्रेस परफेक्ट कैसे हो जाए, और अगर ये ड्रेस फट गई तो हाय मैं फट गया, मेरा क्या होगा, ये जीवन कैसी जीवन होगी. अब इस ड्रेस के नीचे हमने एक और ड्रेस पहनी हुई है, वो है ये ड्रेस. जितना हमें ये डिफिकल्ट लग रहा था एक घंटे के लिए करना कि इस ड्रेस को मैं समझूं, उतना ही इजी और नेचुरल हमने इसको बना दिया है. इस ड्रेस को हमने मैं समझना शुरू कर दिया है. वो भी किसी दिन शुरू हुआ होगा.
1: हम शीशे में नहीं देख के कपड़े पहन के नहीं पूछते अपने वाइफ से, फ्रेंड से, मैं कैसे लग रहा हूँ.
2: हाउ एम आई लुकिंग टूडे इज बेस्ड ऑन हाउ दिस बॉडी इज लुकिंग. क्योंकि आई थॉट बॉडी इज आई.
1: क्या
2: अब अगर आपने मैं ड्रेस को समझ लिया होता, तो ड्रेस अगर ब्यूटीफुल होती तो मैं ब्यूटीफुल. शरीर को मैं समझ लिया तो शरीर अगर ब्यूटीफुल तो मैं ब्यूटीफुल. जब आपने कहा मैं ड्रेस हूं अगर, तो अपने को भी ड्रेस देखा तो दूसरे को भी ड्रेस देखा. तो मैं शरीर समझ लिया अगर, तो अपने को भी शरीर देखा, दूसरे को भी क्या देखा?
1: शरीर
2: ही देखा. कंपेयर किया तो किस बेसिस पर किया? शरीर के बेसिस पर ही किया. इस शरीर को कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ तो हमने कहा मुझे हो गया, मेरा नाक परफेक्ट नहीं, मेरा दांत परफेक्ट नहीं, मैं समझने लग गया. क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी परफेक्ट, सो आई स्टार्टेड मेकिंग माई बॉडी परफेक्ट.
1: तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा नाक, आई से मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
2: मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
1: मैं कितना खराब हूँ,
2: यस, मैं,
1: मैं कितना गोरा हूँ.
2: फिर चलते चलते शरीर को अगर कोई बीमारी हो गई, तो हमने ये नहीं कहा मेरे शरीर को ये बीमारी हुई है, हमने कहा मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे है डायबिटीज, मुझे है कैंसर, मुझे है ये सब, मुझे नहीं था. ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है. मुझे जो बीमारियां हैं वो अलग है, और मेरे शरीर को जो बीमारियां वो अलग है. लेकिन मेरे शरीर को जो बीमारियां हुई, मैंने कहा मुझे ये हो गया. जो मैं नहीं है उसको मैं नहीं कहना, जो मेरा है उसको मेरा कहकर ही चलाना, उसको मैं नहीं समझना, क्योंकि उससे बहुत सारी कंफ्यूजन होती है. अब देखो इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. आज एक फुल इंडस्ट्री है जो सिर्फ शरीर को परफेक्ट बनाने में लगी हुई है. फुल इंडस्ट्री है जो शरीर को ब्यूटिफाई करने में लगी हुई है.
1: सबसे ज्यादा बिजनेस वही कर रहे हैं,
2: शरीर को सुंदर.

0: 이 관계.
1: 그게 जो मैं हूं मेरा संस्कार है ब्यूटी मेरा संस्कार है परफेक्शन लेकिन मैंने समझा मैं कौन हूं ये शरीर तो मैंने ब्यूटी और परफेक्शन किस में ढूंढनी शुरू कर दी शरीर को ब्यूटीफुल और परफेक्ट बनाने में मेरी सारी अटेंशन चली गई दोनों चीजों में फर्क था तो मैंने ब्यूटी भी शरीर में ढूंढी परफेक्शन भी शरीर में ढूंढी बीमारी हुई तो मैंने कहा मैं बीमार हो गई कंपैरिजन किया तो भी शरीर के बेसिस पे किया इतना स्ट्रेस सारा दिन इस बात का है कि आई नीड टू लुक गुड इट्स ट्रू आई नीड टू लुक गुड बट हु इज द आई हु नीड्स टू लुक गुड आई नीड टू लुक गुड वी स्टार्टेड सेइंग आई नीड टू लुक गुड दोनों बातों में फर्क एंड ये नहीं है कि शरीर ठीक नहीं चाहिए हेल्दी नहीं चाहिए चाहिए लेकिन आई नीड टू लुक गुड जब इधर फोकस हो गया तो यहां आई जो था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई उसमें ईर्ष्या भी आने लग गई उसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आने लग गया उसमें रिजेक्शन की फीलिंग भी आने लग गई इस आई में ये सब होने लगा जब दिस वॉज नॉट लुकिंग गुड If my intention is that I need to look good, तो मेरा attention कहाँ पे होना चाहिए? I need to look good.
0: My behavior should look good.
1: I need to look good. I want to be beautiful. So where do I want to be beautiful? I want to be beautiful. I.
0: What is this I?
1: ये I वो है जो इसको my कहता है, ये मेरा शरीर है. वो कौन है? जो सबको कह रहा है मेरा है लेकिन खुद को भूलने के कारण अपनी परफेक्शन अपनी ब्यूटी को हम अपने अंदर नहीं अपनी जो चीजें हैं उनके अंदर ढूंढना शुरू कर दिया बॉडी शुड बी परफेक्ट माय रोल शुड बी परफेक्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव टू डू परफेक्टली इम्पोर्टेंट बट फर्स्ट आई हैव टू बी परफेक्ट देन एवरीथिंग एल्स परफेक्ट बट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एवरीथिंग एल्स परफेक्ट I went because मैंने I पर ध्यान नहीं दिया तो ये सब कुछ जो मेरा है जिसको हम चलाते हैं जिनको हम निभाते हैं ये सबको चलाने वाली जो शक्ति है जो एनर्जी है उसको हम I कहेंगे वो एनर्जी कह रही है दिस इज माइन दैट एनर्जी आपने कहा ये आंखें हम इन आंखों के द्वारा देखते हैं आंखें दो लोगों की सेम हो सकती हैं लेकिन उन आंखों के द्वारा देखना क्या है वो कौन डिसाइड करेगा
0: आई
1: आपकी और मेरी आंखें दिखने में सेम है लेकिन इस पूरे गार्डन में आप अपनी आंखों के द्वारा क्या देखते हैं और मैं अपनी आंखों के द्वारा क्या देखना चूज करती हूँ डिफरेंट
0: अपना परसेप्शन अलग अलग है
1: तो वही आंखों को यूज करते हुए हम क्या देखेंगे तो ये आंखें मेरा इंस्ट्रूमेंट है
0: थ्रू दीज आईज आई सी जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठ के यहां से वहां तक ट्रेवल करता हूँ
1: सो थ्रू दीज आईज आई सी थ्रू दिस माउथ आई स्पीक मुख नहीं बोल रहा मुख के द्वारा बुलवाने वाली वो शक्ति कौन है जो चूज करती है मीठा बोलना है प्यारा बोलना है कड़वा बोलना है वो कौन है ये मुख अपने आप तो नहीं बोलता कान सुन रहे हैं लेकिन कान के द्वारा सुनना क्या है किसी की महिमा सुननी है या किसी की ग्लानि सुननी है ये हाथ है आपका मेरा हाथ दिखने में एक जैसा है लेकिन इस हाथ के द्वारा किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को थप्पड़ मारना है वो कौन डिसाइड करेगा
0: आई
1: हु इज यूजिंग दिस बॉडी I who is operating through this body, I who is playing all my roles and responsibilities through this body. इस हाथ में एक चाकू लिया ठीक है उस चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं उस चाकू से हम किसी को मार भी सकते हैं चाकू की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट द नाइफ विच विल डिसाइड
0: नो, इट्स माय चॉइस
1: इज इट द हैंड विच विल डिसाइड
0: नो,
1: देन हु विल डिसाइड
0: आई विल डिसाइड
1: आई वे वेरी क्लियर कि चाकू इंस्ट्रूमेंट है हाथ क्या है
0: हाथ भी मेरा इंस्ट्रूमेंट ही समझ सकता हूँ
1: मेरा इंस्ट्रूमेंट भी समझ सकता हूँ नहीं है ही इंस्ट्रूमेंट है ही इंस्ट्रूमेंट

0: जैसे वो चाकू इंस्ट्रूमेंट था, उसके पास डिसीशन मेकिंग पावर नहीं थी कि क्या करना है। ये हाथ के पास भी डिसीशन मेकिंग पावर नहीं है क्या करना है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। इस हाथ के द्वारा मुझे क्या करना है, आई। तो सिमिलरली ये पूरा शरीर भी मेरा क्या है।
1: फिर वो गलती से हाथ उठ गया, गलती से मुंह खुल गया, गलती से टंग जबान फिसल गई, ये सब बातें क्या रॉन्ग है सब?
0: आए, गलती से यहां हुई, हाथ के द्वारा किया।
1: तो मेरी गलती है,
0: मेरी हाथ की थोड़ी है। तो ये पूरा शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना। अगर ये हाथ इंस्ट्रूमेंट है, आपने कहा भी लुक थ्रू आया,
1: ये है अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज।
0: दिस इज द अटैचमेंट टू द फर्स्ट रॉन्ग इमेज,
1: बॉडी।
0: बॉडी
1: एंड व्हाट इज द,
0: क्योंकि ये फर्स्ट चीज थी जो हमने अक्वायर की।
1: व्हाट इज द सेकंड रॉन्ग?
0: सेकंड विल बी रिलेशनशिप, क्योंकि वो सेकंड चीज थी जो हमने अक्वायर की। थर्ड थी हमारी पोजिशंस, डेजिग्नेशंस, नॉलेज, क्योंकि वो थर्ड चीज थी।
1: सेकंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड, सेकंड तो आप माँ के पेट से निकले, पैदा हुए, माँ
0: तो रिश्ता अक्वायर किया ना। आप अपने जीवन की यात्रा में कितने सारे रिश्ते अक्वायर करते हैं?
1: इट इज बाय बर्थ ना।
0: सबसे पहली चीज आपको क्या मिली? ये शरीर मिला,
1: फिर माँ, फिर बाप,
0: फिर पेरेंट्स मिले, फिर भाई बहन मिले,
1: दोस्त, टीचर्स,
0: फिर फ्रेंड्स, फिर टीचर्स, फिर स्पाउस, फिर चिल्ड्रन। ये सब रिश्ते अक्वायर किए ना इस पूरी जीवन की यात्रा में।
1: अक्वायर भी किए, फिर छूट भी जाने।
0: दिस रियलाइजेशन, अक्वायर भी किया, छूट भी जाना है।
1: वो जॉब जो है, जो जनरल था आर्मी का, वो भी छूटेगा, प्राइम मिनिस्टर का भी छूटेगा, एक्टर का भी टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब बॉडी का भी, इस बॉडी का भी।
0: दिस इज इट। इसका मतलब सब कुछ जो अक्वायर किया,
1: जो सब कुछ जो है वो मतलब टेम्पररी है।
0: सब कुछ जो अक्वायर किया वो टेम्पररी है।
1: हाँ, अक्वायर किया
0: सब कुछ।
1: बॉडी को हम अक्वायर किया कह सकते हैं?
0: बॉडी को ही सबसे पहले अक्वायर किया। सब कुछ जो मेरा है,
1: जो मिली, समझो, जो मिली,
0: मिली
1: और मेरा है,
0: मिली है, जो मिली है, जो
1: ब्यूटीफुल लाइन थी सिस्टर, आज मेरे समझ में आ रही है। मेरे गुरु के गुरु कहते थे, मेरे तब समझ में नहीं आई थी। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, एवरीथिंग इज फॉर मी, नथिंग इज माइन। सब कुछ मेरे लिए है, मेरा नहीं।
0: मेरे लिए है मतलब,
1: उसको ऐसे समझो कि आज ये कुर्सी जो भी है, आज इस गद्दी पे प्राइम मिनिस्टर बन के मैं बैठा हूं, आज ये मेरे लिए। इवन दिस चेयर,
0: इवन दिस,
1: इवन दिस शर्ट टूडे,
0: मेरे लिए, बट इवन दिस, ये मेरे लिए।
1: इसके बाद यहाँ आ रहा हूँ मैं, कुर्सी, फिर शर्ट, फिर ये बॉडी, मेरे लिए है,
0: मेरे लिए,
1: मेरे
0: अब
1: नहीं,
0: मेरे लिए। अब ये लाइन
1: यहाँ अटैचमेंट हटाने के लिए,
0: ये मेरी नहीं, ये मेरे लिए है। तो फॉर मी करके जब हम उसको यूज करें, डिटैच हो गया, और डिटैच होके बहुत अच्छे से यूज करेंगे। डिटैच होंगे तो इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे।
1: देखिए आपकी बातों से
0: माइंड कहकर
1: शास्त्र क्लियर हो रहे हैं। जब हाँ, मुझे समझ में नहीं आया था, जब अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था अपने राजा जनक को, उनको इतना ज्ञान मिला तो बोले मैं तो जा रहा हूँ जंगल, अब क्या मैं राजा की गद्दी पे बैठा? नहीं, बोले अब मैं, अब ज्ञान रख के, मेरे लिए समझ के, अब तुम गद्दी पे बैठो।
0: मीन्स ट्रस्टी होकर,
1: ट्रस्टी होकर,
0: ट्रस्टी होकर उस सब चीज को यूज करना है। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से हम एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि डिटैचमेंट मतलब जैसे कि हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, हम एक
1: वैराग।
0: डिटैचमेंट मीन्स हम उन चीजों से डिटैच होंगे, जब ट्रस्टी होकर उनको यूज करेंगे, तब हम उन चीजों को, वो चीज मतलब शरीर हो सकती है, वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हम उसको बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्यार से निभाएंगे। लेकिन मेरा है तो कैसे भी यूज करते हैं उसको।
1: तो यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, ये तो मुक्ति भी होगी।
0: हाँ देखो,
1: एक जैसे अब डिटैच हो गए तो मुक्त हो गए,
0: डिटैच हो गए तो अटैचमेंट से सबसे पहले मुक्त हो गए।
1: बस
0: हम क्या कहते हैं परमात्मा को, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। गाते हैं ना सुबह खड़े होकर, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। अब ये सुबह हमने कह दिया कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, क्या सारा

0: एक दिन ये सारी चीजें जानी है, इवन दिस बॉडी, ये भी जाना है, पर ये 80 इयर्स के बाद जाना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 80 इयर्स बाद जाना है। मैंने अपने जीवन का हर दिन ये सारी चीजें, चाहे वो शरीर, चाहे वो रिश्ते, चाहे वो रोल, चाहे वो कुर्सी पोजीशन, सबको ऐसे पकड़ा कि ये ना चला जाए। तो वो जो पूरा जीवन था उसको एंजॉय करने की बजाय, उसको ट्रस्टी होकर यूज करके निभाने की बजाय, मैंने फियर, वरी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में क्रिएट कर दिया, बिकॉज आई थॉट ये सब कुछ आए है, ये ना चला जाए। ये आए है। आपने कहा डेजिग्नेशन मिलती है। आज डेजिग्नेशन छूटने के बाद भी हम अपनी डेजिग्नेशन को पकड़ के रखते हैं।
1: सही बात है, लोग करते हैं।
0: विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है छोटा सा
1: एक्सलेंस,
0: नेम प्लेट जो घर की होती है उस पर लिखा होता है छोटा सा रिटायर्ड सो एंड सो। पोजीशन थी चली गई, क्यों पकड़ के रखा हुआ है उसको? बिकॉज दैट वॉज आई। इफ दैट इज नॉट आई देन हु एम आई? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस।
1: मैं फलाने बैंक में एक बार उसके बोर्ड पे था, एक्स मेंबर ऑफ दिस एक्स,
0: क्योंकि वो पोजीशंस जो अक्वायर की उसको ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया।
1: मुझे मेरे अंकल बोलते थे, अरे आप आए नहीं, मेरा देखा नहीं रुआ आप। क्या जब सुबह बैंड बजा के मुझे सिपाही उठाते थे सैल्यूट, उसकी वाइफ भी लग जाती थी साथ में, अरे आंटी भी, अरे ये तो अनु की पता सुरेश जी, चाय के कप क्या स्टाइल में आती थी, क्या झंडे क्या लोग।
0: तो हम उसी दर्द में हैं हम अभी तक, क्योंकि वो पोजीशन वो आइडेंटिटी चली गई है। तो ये जो सारी चीजें हमने अक्वायर की, हमें मालूम थी छूट जाएंगी, शरीर भी जाना ये भी मालूम है, लेकिन सब चीजों को ऐसे पकड़ा, स्ट्रेस में जी रहे हैं, फियर में जी रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सबको यूज करने वाली शक्ति मैं हूं, वो मैं को भूल गए हैं, और ये सब जो मेरा है उसको मैं समझ लिया, और इन सारी चीजों में ही मैं अपनी ब्यूटी, मैं अपनी परफेक्शन, इन सब खुशी सुख इन सब चीजों में ढूंढने लग गई, क्योंकि मैं जो हूं वो मैं भूल गई कि मैं कौन हूं। ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। ये ईगो से जीने से वन कॉन्शियसनेस बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, डेस्टिनी बदल जाएगी। हु एम आई? कॉन्शियसनेस शिफ्ट। अब वो जो आई जो है वो अंदर है, और ये लेयर लेयर लेयर लेयर लेयर, इतनी लेयर्स जब बन जाती हैं तो वो आई भूल जाता है। जैसे अगर किसी को याददाश्त चली जाए, उसको भूल जाए मैं कौन हूं, जीवन कैसे हो जाएगी? लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, पेन, इन फियर। इसको भी हम कहेंगे स्पिरिचुअल एमनेशिया। आई हैव फॉरगॉटन हु आई एम, आई हैव फॉरगॉटन हु यू आर, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, आई हैव फॉरगॉटन व्हाई आई एम हियर, आई हैव फॉरगॉटन। एंड दैट्स वाई आज सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन हम फिर भी कहते हैं पता नहीं क्यों मैं खाली खाली क्यों हूं। तो इज आई फॉरगॉटन कि वो मैं ही कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं सारा दिन। एक एक जो अपने ऊपर लगा लेबल है,
1: वो बारी नाम बारी का लेबल करते
0: हैं। नाम का लेबल सबसे पहले लगा था, शरीर के बाद सबसे पहले नाम मिला, फिर रिश्ते मिले, पोजीशन। एक एक लेबल को हटाएं। लेबल छूट नहीं रहा, जा नहीं रहा कहीं, लेकिन डिस आइडेंटिफाई करें उसके साथ, ये मैं नहीं, ये मेरा लेबल है। एक एक लेबल को, जैसे परत होती है ना, एक एक परत को, एक एक परत को, एक एक परत को हटाते जाएं, टिल वी रीच आई, एंड देन वी विल यूज ऑल दीज लेबल्स। वो सब कुछ हम यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट विद द अंडरस्टैंडिंग, ये आए, ये सारे मेरे लेबल्स, अब इनको मुझे निभाना है, करना है, लेकिन अटेंशन फिर आए पर आ जाएगा। तो जस्ट सिट बैक 2 मिनट्स एंड ट्राई राइट नाउ। अभी देखते हैं अपने आप को कि एक एक चीज, क्योंकि हर एक ने अलग अलग चीजें अक्वायर की है जीवन में, लेकिन एक एक चीज को देखते हुए अपने आप को चेक करते हैं।

0: इस जीवन की यात्रा में एक एक चीज जो अक्वायर की है उसको देखते हैं। सबसे पहले शरीर मिला, जस्ट सिट बैक एंड लुक एट योर बॉडी, फील दिस बॉडी इज माइन, मेरा शरीर, मैं इसको चलाने वाली शक्ति, मैं इसको यूज करने वाली एनर्जी, ये शरीर मैंने पहना हुआ है, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, आई द बींग, आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी। फील द डिफरेंस, इस हाथ को, आंखों को मैं यूज करते हूं। रिश्ते मेरे हैं, परिवार मेरा है, पोजीशन मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं, ये सब कुछ जो मेरा है आज है, कल नहीं, मैं कौन हूं इनको यूज करने वाला। लेट मी फील द आई, लेट मी लुक एट द आई, लेट मी अंडरस्टैंड दैट आई। ओम शांति,
1: ओम शांति, थैंक यू सो मच,
0: ओम शांति।
2: This body is mine, but we are living with the consciousness that this body is I. We like beauty and perfection, which is our true nature. So, we started looking for beauty and perfection in the body. This sometimes caused I, the soul, to feel inferior, imperfect, rejected, and I, the soul, shifted from true beauty and perfection. When the body gets diseased, we believe that I have this disease. I, the soul, do not have the illness, and neither does I, the soul, ever die. The body dies. I, the soul, am eternal and imperishable. Believing that we are this body made us live in the fear of death. The body is our instrument which we use. We see through the eyes, speak through the mouth. Eyes and mouth are the instrument through which I, the soul, choose what to do. We get attached to everything we acquire. Where there is attachment, there will be fear of losing. Even though we know that eventually we will lose all that we have, including our body, we spend our life holding on to it with stress, hoping we never lose our body, family, position, or property.
0: If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ अक्सर कोई लड़की

0: से
1: कहता है कि पूरे पश्चिम के मिलन से इतिहास के पन्ने सुनहरे हो जाएंगे।
0: इज दैट सो? देन लेट हिम कंटिन्यू।

दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर

تو کیا عشق تیماروں کا ہوگا. متوالے نین ہے ایسے تالاب میں یار.

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा, रुकना
1: अच्छा लगा ना।
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।